मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। सवेरे के 5:56 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन अंकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हज़ारों ऐब हैं मुझ में, न ही कोई हुनर बेशक। मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना।

मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा ही है नाम मुरली वाले।

खुदा की ज़ात को देखा नहीं किसी ने मगर, खुदा के नूर को आँखों ने देख लिया है वहाँ। वो मुस्तफ़ा है कि जो सारे जहाँ के रहबर, उन्हीं के नक्शे कदम पर है सारा जहाँ।

मैं कागज़ दी बेंदी रब्बा, तू मैनू पार लगाया। शुक्र कर तेरा हर दम में, जो मंगया सो पाया।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कलाकार थे राजेंद्र जैन व हेमंती शुक्ला, सखावत हुसैन, युगराज सिंह और अनूप चलोटा। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय है स्वामी करपात्री जी के विचार।
1: लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। रूप का ज्ञान हमको नेत्र से होता है, नेत्र है प्रमाण। रूप के ज्ञान में नेत्र प्रमाण है, गंध के ज्ञान में घ्राण प्रमाण है, ऐसे शब्द के ज्ञान में श्रोत्र प्रमाण है। इसी तरह से जो सूक्ष्म वस्तु हैं उनके लिए भी प्रमाण की अपेक्षा है। आत्मा का ज्ञान में वेद वेदांत प्रमाण है, वेद वेदांत के बिना आत्मा का परिज्ञान नहीं होता। तो जैसे रूपक ज्ञान में चक्षु प्रमाण है, गंधक ज्ञान में घ्राण प्रमाण है और शब्द ज्ञान में श्रोत्र प्रमाण है, इसी तरह से धर्म और ब्रह्म के जानने में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के द्वारा हम धर्म और ब्रह्म को जान सकते हैं। तो ये सब धर्म है। धर्म है माने गंगा स्नान करना, यमुना स्नान करना, प्रयाग का स्नान करना। गंगा का पृथक पृथक भी महत्व है, लेकिन गंगा यमुना दोनों मिल जाए, गंगा यमुना दोनों मिल जाए तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव माना जाता है। जैसे ब्रह्म ही निराकार निर्विकार अद्वैत अनंत अखंड ब्रह्म ही, और जो क्या द्रवीभूत हो करके गंगा जल बन जाता है, इसी प्रकार से जो प्रेम द्रव है, प्रेम तत्व ही द्रवीभूत हो करके यमुना के रूप में बन जाता है। इसलिए प्रेम द्रव है यमुना और ब्रह्म द्रव है गंगा, और दोनों का सम्मिलन हो जाए तो और ज्यादा महिमा बढ़ जाती है। इसलिए गंगा यमुना का संगम है प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना दोनों का संगम है। तो इसलिए अमुक अमुक स्थान विशेष में, जैसे आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का स्थान विशेष में महिमा होती है। राजस वस्तुओं के संबंध से, तामस वस्तुओं के संबंध से, सात्विक वस्तुओं के संबंध से भिन्न भिन्न स्थानों के का उत्कर्ष अपकर्ष हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा महत्व है कि गंगा यमुना दोनों एकत्रित हो जाएं, तो वहाँ पर जो स्नान करने का महत्व है वो बड़ा लोकोत्तर महत्व है। इसीलिए प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों का संगम है, उसका शास्त्रों में बड़ा महत्व वर्णन है। तो इस दृष्टि से विशेष करके फिर काल भी माघ मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति में तुलसीदास आदि को बहुत लिखा है कि मकर संक्रांति में बड़े बड़े महात्मा जोगींद्र मुनींद्र अमरात्मा परमहंसगण प्रयागराज में पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं। इस दृष्टि से जितना अधिकाधिक ऐसे स्थानों में यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है, दान किया जाता है, व्रत किया

0: रहता है, उसका अनेक गुणित फल होता है। तो इस तरह से निष्कर्ष यह है कि शास्त्र प्रमाण के आधार पर गंगा जमुना का संगम जो है वहां प्रयागराज है। उस प्रयागराज में मकर संक्रांति में और विशेष स्नान करके फिर अमावस्या के दिन उसमें भी आगे इसी तरह से अर्धकुंभी कुंभ का महिमा, अर्धकुंभ का महिमा, तो कुंभ तो 12 वर्ष में आता है, अर्धकुंभ 6 वर्ष में आता है। इस तरह से अर्धकुंभ के प्रसंग में भी बहुत योग है। इस योग से अर्धकुंभ स्नान और प्रयागराज का स्नान, गंगा जमुना के संगम का स्नान, वहाँ नाना प्रकार का दान पुण्य सत्कर्म करना, परोपकार करना, इससे प्राणी की अंतरात्मा पवित्र होती है, अंतरात्मा शुद्ध होती है और उसी से अंतर्गत ब्रह्मात्म साक्षात्कार की भी सुविधा हो जाती है।
1: अभी आपने सुना आज का चिंतन, विषय था स्वामी करपात्री जी के विचार। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, जानकारी का विषय है अंगदान का महत्व।
2: श्रोताओं, हिंदी फिल्मों का एक जाना पहचाना सा गीत है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। लेकिन अंगदान ने इन पंक्तियों को कुछ हद तक गलत साबित किया है, क्योंकि अंगदान के माध्यम से दुनिया से विदा लेने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी के भी सीने में दिल बनकर धड़क सकता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आंखों से दुनिया उसके जाने के बाद भी देख सकता है। देश में यूं तो अंगदान के प्रति अभी जागरूकता का बहुत अभाव है, लेकिन अंगदान का बहुत महत्व भी है। ये एक महादान है। इसके माध्यम से आप दूसरे व्यक्तियों की जिंदगी बचा सकते हैं। अंगदान में 8 अंग शामिल हैं जिन्हें दान किया जाता है। मृत व्यक्ति की किडनी, लीवर, फेफड़ा, हृदय, पैंक्रियास और आंतें, ये दान में दी जा सकती हैं। वर्ष 2014 में इस सूची में हाथ और चेहरे को भी शामिल किया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि केवल 2.5 साल का एक बच्चा 7 लोगों की जिंदगी कैसे बचा सकता है, वो भी तब जब उस बच्चे की जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं। ऐसी ही घटना गुजरात के सूरत में सामने आई थी, जहां 2.5 साल के एक ब्रेन डेड मासूम के अंगदान से 7 लोगों को नया जीवन मिला। दुर्भाग्य से वो बच्चा खेलते खेलते अपने घर की दूसरी मंजिल से गिर गया था। डॉक्टर उसे बचा नहीं सके, लेकिन इसके अंगदान ने मरणासन्न 7 बच्चों की जिंदगी बचा ली। इस घटना ने अंगदान की अहमियत को बताया है। इस तरह की और भी तमाम घटनाएं समाज में देखने और सुनने को मिल जाती हैं। अगर सभी लोग इस पर गौर करें तो कई बीमार और लाइलाज बीमारी का दंश झेलने वाले लोग ठीक हो जाएंगे, उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। दरअसल किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर के टिश्यू या किसी अंग का दान करना ही ऑर्गन डोनेशन अंगदान कहलाता है। ये टिश्यू या अंग किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। डोनर के शरीर से ऑपरेशन कर अंग या टिश्यू निकाला जाता है और उसे बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। 2 तरह का होता है अंगदान, एक जीवित अंगदान और दूसरा मृतक अंगदान। जीवित अंगदान में कोई जीवित व्यक्ति किडनी और पैनक्रियास का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। मृतक अंगदान में मृत व्यक्ति अपने कई अंग दान कर सकता है। ये प्रक्रिया अक्सर ब्रेन डेड लोगों के लिए अपनाई जाती है। अंगदान के लिए पहले इसकी स्वीकृति देनी होती है। ऑनलाइन प्लेज फॉर्म आता है, इसे आप ऑनलाइन भरकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए www.organindia.org पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस संस्था

0: की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है जिस पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये एक सेवा का काम है। कितने ही लोग अपनी इच्छा से अंगदान करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके माध्यम से दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ते कदमों के साथ अब ये संभव है। किडनी, लीवर और दिल के दौरे जैसी अनेक प्रकार की घातक स्थितियों से पीड़ित लोगों को जीने के अवसर बढ़ाने के लिए प्रत्यारोपित किए गए अंगों और ऊतकों का इस्तेमाल किया जाए। पहले से कहीं ज्यादा लोग अब इन स्थितियों से पीड़ित हैं। मृत व्यक्ति के शरीर से अंगों और ऊतकों को बेहद ज्यादा परवाह और सम्मान के साथ निकाला जाता है। अंग ऐसे लोगों द्वारा भी दान किए जा सकते हैं जो अपने परिवार की सहमति के साथ जीवन रक्षक गहन परिचर्या उपचार को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए अंगदान के बारे में सोचिएगा जरूर।
1: अंगदान का महत्व, अभी आपने सुनी इस विषय पर जानकारी असीम सक्सेना से। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। प्रातः 7 बजे अमृत कलश प्रसारित किया जाएगा। विषय रहेगा डिजिटल साक्षरता। 7:31 पर फिल्मी गीतों के इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे का समय रहेगा। हंड्रेड एंड 2.9 मॉर्निंग हिट्स नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। प्रेरक प्रसंग प्रातः 9:25 पर प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जाएगा। उपशास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9:50 पर। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर आप सुन सकेंगे 10:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 10:30। धरोहर के अंतर्गत सुनते सुनाते 90 साल आज आप सुनेंगे इसकी कड़ी संख्या 3 प्रातः 11:00। 11:30 पर समय रहेगा मनभावन का। मनभावन के अंतर्गत सुनिएगा एक ही गीतकार के अंतराल में मनोज मुंतशिर को। दोपहर 12:10 पर सुनिएगा ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत आपके नाम। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम का समय रहेगा दोपहर 1:30। सुनहरा दौर 2:30 पर सुनिएगा 80 के दशक के सदाबहार फिल्मी नगमे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडिया वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। कलाकार है सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे। संगीत है सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड नंबर 317।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे सुरेश वाडेकर और रविंद्र साठे। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में

0: विश्वकपयुतोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैण्डेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर प्रातः के 7 बजे हैं। आप सुन रहे इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत कलश। आज इस कार्यक्रम में विषय है डिजिटल साक्षरता। वाचन है शाजिया परवीन का और प्रस्तुति है विक्रांत चौधरी की।

संपूर्ण देश को डिजिटल रूप से साक्षर है बनाना, ग्रामीण जीवन को भी है विकास के पथ पर लाना। अगर ना होगा साक्षरता का वास, फिर कैसे होगा उस देश का विकास। जिसकी ताकत शिक्षा है, उसी का जीवन अच्छा है। साक्षरता का बिगुल बजाना है, अशिक्षा को दूर भगाना है। आओ मिलकर डिजिटल साक्षरता का अभियान चलाएं, लोगों को शिक्षा के अनगिनत फायदे समझाएं। जो व्यक्ति शिक्षा की डगर पर चलता है, वही देश की तकदीर को बदलता है। साक्षरता, इस शब्द का हिंदी में मतलब है पढ़ाई लिखाई में सुधार। लेकिन आजकल का युग डिजिटल युग है, और इसलिए अब हम ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि हम इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का भी सही तरीके से उपयोग करना सीख रहे हैं। इसे हम डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि हम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सही तरीके से चला सकते हैं। ये नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने की बात है, बल्कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता भी है। डिजिटल साक्षरता का यह नया दौर सभी क्षेत्रों में बदलाव लाने में मदद कर रहा है। छात्र अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ये उनके लिए सुविधाजनक है। इसके अलावा लोग अब अपने व्यापार को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं और नौकरी के अवसरों को भी बढ़ा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता लोगों को नए और आधुनिक तरीके से सोचने का अवसर देती है और उन्हें अधिक संबंधित बनाती है। इसलिए हमें डिजिटल साक्षरता का सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। ये हमें नए अवसरों की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है और हमारे समाज को आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। श्रोताओं, 21वीं सदी को यदि डिजिटल युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल तकनीकों को समझने, उसका सही प्रयोग करने और उससे जुड़ी जानकारी को आत्मसात करने की योग्यता बहुत जरूरी हो गई है। श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता सिर्फ कंप्यूटर चलाने की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक अवधारणा है जो व्यक्ति को डिजिटल दुनिया का सजग और सुरक्षित उपभोक्ता बनाती है। श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स, ऑनलाइन सेवाओं इत्यादि का समझदारी और जिम्मेदारी से प्रयोग करना। इसका उद्देश्य व्यक्ति को डिजिटल संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सिखाना है, ताकि वो डिजिटल समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके। श्रोताओं, भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल साक्षरता की बहुत जरूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकार अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। श्रोताओं, चाहे शिक्षा हो, बैंकिंग हो, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सरकारी योजनाएं, हर क्षेत्र में डिजिटल माध्यम तेजी से अपनाए जा रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना महामारी के वक्त डिजिटल शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम का महत्व स्पष्ट हो चुका है। श्रोताओं, साइबर अपराधों से बचाव के लिए भी लोगों को डिजिटल सुरक्षा की जानकारी होना आवश्यक है। श्रोताओं, भारत में अभी भी बड़ी आबादी डिजिटल रूप से अशिक्षित है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। महिलाओं में, वृद्धों में और कम पढ़े लिखे लोगों में डिजिटल जागरूकता की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कारण इसमें सुधार हो रहा है। श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत कई ऐसे कौशल हैं जिन्हें डिजिटल साक्षरता में सम्मिलित किया जाता है, जैसे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें टाइपिंग, माउस टच का उपयोग, फोल्डर बनाना और फाइल सेव करना। सेकंड है इंटरनेट का सही इस्तेमाल, ब्राउजिंग, गूगल सर्च, ईमेल भेजना, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन लेन देन की समझ, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI, भीम ऐप वगैरह से कैशलेस भुगतान करना या पेमेंट लेना, ये भी डिजिटल साक्षरता का ही एक घटक है।
इसके अलावा डिजिटल नागरिकता यानी ऑनलाइन व्यवहार में शिष्टाचार, ट्रॉलिंग से बचाव, प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह, पासवर्ड सिक्योरिटी, एंटीवायरस, फिशिंग अटैक की पहचान। श्रोताओं, सरकार द्वारा डिजिटल साक्षरता के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया मिशन जो कि 2015 से स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMG दिशा। इसके जरिए ग्रामीण भारत में 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया गया और सामान्य नागरिकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM के जरिए कंप्यूटर व इंटरनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। श्रोताओं, अगर डिजिटल साक्षरता के लाभों की बात करें तो व्यक्ति खुद से सरकारी योजनाओं, शिक्षा व सेवाओं का लाभ उठा सकता है। श्रोताओं, डिजिटल कौशल आज हर नौकरी में आवश्यक हो गया है। ऑनलाइन सेवाओं से समय, ऊर्जा और पैसों की बचत होती है। श्रोताओं, डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति फर्जी खबरों और साइबर धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रख सकता है। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दुनिया भर की जानकारी और कोर्स प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसमें पहला है शिक्षा प्रणाली में समावेश। श्रोताओं, स्कूल व कॉलेजेस में डिजिटल साक्षरता को कंपलसरी बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत स्तर पर नियमित डिजिटल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री को हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता आज के युग की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। यह केवल तकनीकी कौशल नहीं बल्कि भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समृद्धि की कुंजी है। भारत जैसे विशाल देश को अगर डिजिटल महाशक्ति बनाना है तो हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त करना होगा। सरकार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा ताकि डिजिटल इंडिया का सपना एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में साकार हो सके। साक्षरता, इस शब्द का हिंदी में मतलब है पढ़ाई लिखाई में सुधार, लेकिन आजकल का युग डिजिटल युग है और इसलिए अब हम ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि हम इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का भी सही तरीके से उपयोग करना सीख रहे हैं। इसे हम डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि हम इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सही तरीके से चला सकते हैं। ये नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने की बात है बल्कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता भी है। डिजिटल साक्षरता का यह नया दौर सभी क्षेत्रों में बदलाव लाने में मदद कर रहा है। ये उनके लिए सुविधाजनक है। इसके अलावा लोग अब अपने व्यापार को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं और नौकरी के अवसरों को भी बढ़ा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता लोगों को नए और आधुनिक तरीके से सोचने का अवसर देती है और उन्हें अधिक संबंधित बनाती है। इसलिए हमें डिजिटल साक्षरता का सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। ये हमें नए अवसरों की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती है और हमारे समाज को आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। श्रोताओं, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। इस युग में अधिकतर सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसीलिए आज के समय में हर एक नागरिक का डिजिटल रूप से साक्षर होना अति आवश्यक है। चाहे व्यक्ति शहर का निवासी हो या गांव का, हर किसी को ये अधिकार है कि वो इंटरनेट का उपयोग करना भली भांति जानता हो, जिससे उसे किसी भी कार्य हेतु किसी पर निर्भर ना होना पड़े। श्रोताओं, आज मोबाइल तकनीक के कारण आज हर व्यक्ति इंटरनेट से भली भांति परिचित है।
आज के समय में हर एक जानकारी नेट पर उपलब्ध है। इसीलिए ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। श्रोताओं, भारतीय सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्र को भी विकसित बनाने हेतु ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए सरकार द्वारा ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को कंप्यूटर का उपयोग, ईमेल भेजने, गवर्नमेंट सर्विसेज की जानकारी प्राप्त करने, डिजिटल पेमेंट जैसे UPI वगैरह से कैशलेस लेन देन करना, इन सबसे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

0: arkadaş.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अमृत कलश। विषय था डिजिटल साक्षरता, वाचन था शाजिया परवीन का और प्रस्तुति थी विक्रांत चौधरी की। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
2: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
3: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
4: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
3: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
2: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
3: जागिए और जगाइए,
4: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
2: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
3: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
5: से नो टू प्लास्टिक।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। सीबीएसई ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनाधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
3: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग

0: का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दो दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय RRC सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज

0: आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुबह की एक नई उम्मीद। हर दिन जीवन को बेहतर बनाने का अवसर दे जाती है, तो आइए स्वागत करते हैं सकारात्मक विचारों और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आज का दिन जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आए, इसी के साथ कीजिए कबूल आपकी रेडियो दोस्त जवेरिया इशरत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रातःकाल का समय किसी भी नई शुरुआत का ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भोर की सुनहरी बेला है, आसमान में सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को संगीत से भर रहा है और प्रकृति एक नए दिन के स्वागत में सजी हुई है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ जानते हैं आज 3 जून के इतिहास में देश दुनिया में क्या क्या हुआ खास। 3 जून सन 1965 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेमिनी 4 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड वाइट सेकंड अंतरिक्ष में चहलकदमी रखने वाले पहले अमेरिकी बने। भारत का पहला स्वदेशी और आधुनिक युद्धपोत यानी INS नीलगिरी इसे 3 जून सन 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस ऐतिहासिक युद्धपोत ने लगभग 24 वर्षों तक नौसेना को अपनी सेवाएं दी। तीन जून 1948 के इतिहास में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के गोल्डन टेंपल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत भी की गई थी। इसी के साथ आगे जानते हैं 3 जून के इतिहास में जन्म लेने वाली महान हस्तियों के बारे में। आज यानी 3 जून सन 1924 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज द्रमुख DMK के नेता श्री एम करुणानिधि जी का जन्म भी हुआ था, जो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। अमेरिकी पत्रकार और CNN के लोकप्रिय समाचार एंकर एंडरसन कूपर का जन्म भी 3 जून सन 1967 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 3 जून सन 1929 को भारत के राजनेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म भी हुआ था। इन्हें आपातकाल के दौरान संघर्ष और कोकट रेलवे स्टेशन जैसी बड़ी परियोजनाओं के शुरू करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश रहीं जस्टिस रूमा पाल जी का जन्म भी 3 जून सन 1941 को हुआ था। 3 जून सन 1890 को भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता व निर्देशक बाबूराव पेंटर का जन्म भी हुआ था। इन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की और पौराणिक ऐतिहासिक फिल्मों की शुरुआत करके भारतीय फिल्म उद्योग को एक नई दिशा दी। श्रोताओं, इसी के साथ जानते हैं आज देश दुनिया से अलविदा कहने वाली महान हस्तियों के बारे में। महान अमेरिकी मुक्केबाज मोहम्मद अली खां का निधन भी 3 जून सन 2016 को हुआ था। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मृत्यु भी आज ही के दिन यानी 3 जून सन 2013 को मुंबई में हुई थी। महान जर्मन चेक लेखक फ्रांस काफ्का की मृत्यु भी 3 जून सन 1924 को हुई थी, जो कि 20वीं सदी के साहित्य के सबसे महान लेखकों में से एक माने जाते हैं। श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। यदि हम बात कर रहे हैं इतिहास की, तो हम सभी जानते हैं कि रेडियो का इतिहास भी अब 9 दशकों पुराना है। ऑल इंडिया रेडियो यानी प्रसार भारती अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, क्योंकि हम उस माध्यम का उत्सव मनाने जा रहे हैं जिसने दशकों से लोगों के दिलों को जोड़ा हुआ है, खुशियों को घर घर पहुंचाया है और देश दुनिया की खबरों से हमें अवगत करवाया है, यानी ऑल इंडिया रेडियो, जिसके 90 वर्ष पूर्ण होना एक गौरवशाली अवसर है। ये एक स्वयं में यंत्र ही नहीं बल्कि भावनाओं, सांस्कृतिक, संगीत और जानकारी का एक ऐसा पुल है जिसने पीढ़ियों को एक सूत्र में बांधा है। जब टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तब रेडियो ही लोगों का सबसे विश्वसनीय साथी था। और आज इसी विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं प्रोफेसर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर, हिंदी विभाग।
1: नमस्कार, मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय रजा।

नमस्कार, मैं राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई और सभी को नमस्कार। हमारी अभिव्यक्ति के माध्यमों में ध्वनि सबसे सूक्ष्म माध्यम है। सबसे सूक्ष्म माध्यम होने के नाते ध्वनि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस हिसाब से समझे तो रेडियो सबसे प्रभावशाली माध्यम है किसी भी मास कम्युनिकेशन के रूप में, और यह इसका प्रभाव ही है कि रेडियो सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है, विशेष रूप से भारत में अपनी स्थापना के 90 वर्षों में, और रामपुर रेडियो स्टेशन की स्थापना के 60 वर्षों में निश्चित रूप से यह बहुत प्रभावशाली रहा है। दो उद्देश्य हैं रेडियो के, एक तो सूचना देना और दूसरा मनोरंजन करना। सूचनाओं का प्रचार प्रसार और मनोरंजन उपलब्ध कराना, ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं रेडियो के, और इन दोनों ही उद्देश्यों को बड़ी कुशलता से पूरा करता है रामपुर रेडियो स्टेशन। आज भी इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम धरोहर हेलो फरमाइश के रूप में लाइव फोनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, हेलो रामपुर, कृषि जगत, युवावाणी, आंचल, ये तमाम कार्यक्रम हैं जो पूरे रामपुर जनपद को महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और साथ ही यहां के युवाओं को अवसर देते हैं उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। लाइव फोनिंग प्रोग्राम में लोग अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए रेडियो स्टेशन पर फोन करते हैं और अपने पसंदीदा नए पुराने गीतों को सुनने की फरमाइश करते हैं, और साथ ही वो अपने विषय में भी बताते हैं। तो जो वो गीत सुनते हैं वो तो सभी के लिए मनोरंजक होता है, साथ ही जो उनकी बातें होती हैं, जो अपने विषय में वो बताते हैं, रामपुर के बारे में बताते हैं, अपने व्यवसाय के बारे में बताते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, जो जिस जगह से है, कहीं सुदूर दक्षिण का व्यक्ति है, कहीं पूर्वोत्तर का व्यक्ति है, कहीं पश्चिम का व्यक्ति है, तो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, जो अपने क्षेत्र के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने व्यक्ति के बारे में जब बताता है तो वो बहुत प्रभावित करता है। रामपुर रेडियो स्टेशन से कृषि जगत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, किस मौसम में किस फसल को बोया जाए और किस फसल में क्या समस्या आती है, क्या तापमान चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन से कीटनाशक, कौन से खाद, कितना कीटनाशक नुकसानदेह है, कितनी खाद ज्यादा हो जाएगी, ये सारी जानकारियां साझा की जाती है रेडियो स्टेशन के माध्यम से। और साथ ही युवावाणी जो रामपुर का कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष है आजकल के युवाओं की दृष्टि से, जिसमें युवा वर्ग अपने जानकारियां साझा करता है, रामपुर के युवाओं ने जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसकी जानकारियां साझा की जाती हैं, और साथ ही आगे आने वाले जो अवसर हैं उनकी भी जानकारियां साझा की जाती हैं। आंचल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे रामपुर स्टेशन द्वारा प्रसारित धरोहर कार्यक्रम बहुत पसंद है, जो पूरे रुहेलखंड क्षेत्र के बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक और साथ ही सांस्कृतिक पक्ष को बहुत ही व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है। ये कार्यक्रम बहुत पसंद है मुझे। तो धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सरजमीने रुहेलखंड, ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही बेहतरीन था, जिसमें रामपुर के साथ ही पूरे रुहेलखंड की संस्कृति, इतिहास, भूगोल, यहाँ के रहन सहन, खान पान, तमाम

0: चीजों के बारे में विस्तार से नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया था। और ये जो नाटकीय प्रस्तुति होती है निश्चय ही बहुत प्रभावशाली होती है। वो रेडियो का महत्व कभी कम नहीं होगा। तमाम प्रचार प्रसार के माध्यम आजकल बढ़ रहे हैं, लेकिन रेडियो एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करते हुए, जिसे सुनते हुए हम अपना रोजमर्रा का काम भी निपटा सकते हैं। पहले चंद्रमोहन सक्सेना जी की आवाज में, सुधांशु जी की आवाज में उद्घोषणा सुनते थे, गीत सुनते थे, और आज असीम सक्सेना जी की आवाज में उद्घोषणा सुनते हैं, जानकारियां सुनते हैं, गीत सुनते हैं। जिस तरह से आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं, रामपुर आकाशवाणी ने अपने 60 वर्ष को पार किया है, उसी तरह से ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा और नए युवा आते रहेंगे और नए युवाओं का आगमन होता रहेगा आकाशवाणी में उद्घोषक के रूप में, और इसी तरह से आकाशवाणी का यह सफर और समृद्ध होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी हमसे रेडियो के प्रति अपने लगाव और विचार को साझा कर रहे थे प्रोफेसर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ आज विश्व अंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 3 जून को। ये केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, मेहनत और जीवन की निरंतरता की कहानी सुनाता है। हमारी सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है, उसके पीछे अनेक प्रयास और निरंतर मेहनत छिपी होती है। विश्व अंडा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक कराना भी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारे सपनों को उड़ान दे सकता है। एक छोटा सा अंडा हमें सिखाता है कि हर बड़ी शुरुआत कभी ना कभी छोटी होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। श्रोताओं, आज एक और दिन भी है, 3 जून को नेशनल रिपीट डे यानी पुनरावृत्ति दिवस भी मनाया जाता है। सन 2011 में पहली बार आधिकारिक रूप से इस दिन की शुरुआत हुई थी। इस दिन का मूल विचार यह है कि जीवन में कुछ चीज़ों को दोबारा करना, जैसे पसंदीदा काम, अच्छी आदतें या अभ्यास जो आपको खुशी, महारत और स्थिरता देते हैं, वो खुशी जो दोबारा बांट सकें, प्रियजनों के साथ समय बिताना, कुछ ऑर्डर करना और भी बहुत कुछ। और दिन की शुरुआत सुबह के समय अपने मित्रों को याद करना, अपने प्रियजनों को बात करना, ये एक इस दिन का उद्देश्य है। श्रोताओं, आज इसी के साथ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे मुख्य लक्ष्य है साइकिल को सरल, किफ़ायती, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना। कहीं ना कहीं साइकिल प्रदूषण को भी रोकती है, क्योंकि इसमें डीजल, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। कहीं ना कहीं नियमित रूप से साइकिल चलाने से हृदय स्वस्थ रहता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और वजन भी नियंत्रित रहता है। ये मानसिक तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ है और यातायात जन यानी ट्रैफिक से बचने में भी मदद करता है। साइकिल हमारे जीवन को भी निरंतर प्रयासों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिस तरह पैंडल मारते रहने से साइकिल आगे बढ़ती है और मंजिल तक पहुँचाती है, ठीक उसी तरह जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ साइकिल जीवन में आगे बढ़ते रहने, स्वस्थ रहने आदि के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है, वहीं साइकिल का जुड़ाव बॉलीवुड के साथ भी रहा है। अगर बात करें फिल्म मेरे सनम के गीत पुकारता चला हूँ मैं, जिसके गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया है ओपी नैयर ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म में अभिनेता हैं विश्वजीत चटर्जी। साइकिल चलाते हुए इस गीत को गुनगुनाते हैं। साइकिल पर चलते समय खुले रास्ते, प्राकृतिक की सुंदरता और मन की उमंग इस गीत को अलग पहचान देती है। साइकिल जीवन की यात्रा का प्रतीक नहीं, जब तक पैंडल चलता रहता है साइकिल संतुलित रहती है, ठीक उसी तरह जीवन में भी पैंडल मारते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत हमें सिखाता है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, खुशियों की तलाश में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक आत्मनिर्भरता और सतत विकास का प्रतीक है। मानो ये गीत संदेश देता है

जी हाँ श्रोताओं, दो पहियों पर चलती साइकिल सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि सपनों को गति देने वाली साथी भी है। जीवन की यात्रा कितनी भी लंबी हो, अगर हौसलों के पैंडल चलते रहें तो हर मंजिल आसान हो जाती है। डॉक्टरों के अनुसार भी साइकिल चलाने से शरीर का इम्यून सिस्टम एक तरह का संपूर्ण व्यायाम है। साइकिल चलाने वालों को अन्य व्यायाम की ज़रूरत कम ही पड़ती है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया है, साइकिलिंग मस्तिष्क स्वास्थ्य, मनोदशा और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाने समेत समग्र कल्याण में सुधार के लिए सुलभ उपकरण हो सकता है। इसी के साथ जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए, खुश रहिए। सुबह सवेरे संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त चवेरिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने को है, बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंक

0: बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थी को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के

0: 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। वेनेजुएला'ज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज टू

0: हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यह बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टॉन्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः की 8:45 हुए हैं। आप सुन रहे हैं इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। अब सुनिए नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

मॉर्निंग हिट्स के सभी श्रोताओं को जवेरिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म भूल भुलैया 2 से। गायक कलाकार हैं नीरज श्रीधर। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है प्रीतम का।

पठान। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थीं अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कर, विशाल ददलानी और शेखर खजियानी की। गीत के बोल लिखे थे कुमार ने और संगीत था विशाल शेखर का। आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत अंकित तिवारी और पलक मुच्छल के स्वर में। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

अजहर, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। स्वर था अरमान मलिक का और गीत के बोल लिखे थे रश्मि विराग ने, संगीत था अमाल मलिक का। अभी समय है एक कमर्शियल ब्रेक का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धम्मा से रश्मित कौर और जिगर सरैया के स्वर में

अभी आपने सुना यो योहनी सिंह, नेहा कक्कड़ और नवराज हंस को। फिल्म का नाम था सोनू के टीटू की स्वीटी। 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम का अगला गीत यो योहनी सिंह और अल्फाज के स्वर में। फिल्म का नाम है हाउसफुल 5।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान लाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
3: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है।
1: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब इकाना स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
0: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
4: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक दो चार साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
5: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो जीडीए में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया, सरकार ने बहुत अच्छा किया।
4: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भाग्य

0: से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। उस मकान को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और ईडब्ल्यूएस के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
1: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजनाएं हैं उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
0: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इससे गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः के 9:25 हुए हैं। आप सुन रहे इस समय हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग। आज के प्रेरक हैं गोस्वामी तुलसीदास।

ये प्रेरक प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक महान कवि ही नहीं, अद्वितीय भक्त, समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनका जीवन भक्ति, वैराग्य और परिवर्तन की प्रेरक गाथा है। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक विदुषी

में उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने लोक भाषा में रामकथा लिखने का संकल्प लिया। उस समय संस्कृत को ही विद्या की भाषा माना जाता था, पर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामकथा लिखी ताकि सामान्य जन भी उसे समझ सके, और इस प्रकार रामचरितमानस की रचना हुई। वो ग्रंथ जो भक्ति और मर्यादा का अमूल्य ग्रंथ है, साहित्य की अनुपम कृति है। महान कार्य वही होते हैं जो समाज के हित में हो। रामचरितमानस की रचना करके तुलसीदास जी ने ऐसा ही कार्य किया। संकट मोचन मंदिर के बारे में भी एक प्रसंग है कि वाराणसी में तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसी स्थान पर बाद में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। तुलसीदास जी की हनुमान भक्ति अद्भुत थी। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा और शक्ति का स्रोत है। यह प्रसंग दिखाता है कि सच्ची भक्ति और भय संकट को दूर करती है। जब उन्होंने लोकभाषा में रामकथा लिखी तब कुछ विद्वानों ने उनका विरोध किया, पर तुलसीदास जी ने धैर्य नहीं खोया, अपने मार्ग पर अडिग रहे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि एक जागृति का क्षण जीवन बदल सकता है, समाज के हित में किया गया कार्य अमर हो जाता है। भक्ति और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। वो कवि ही नहीं युग दृष्टा थे। उनका जीवन मर्यादा, समर्पण और आस्था का प्रेरणा स्रोत है।

अभी आपने सुना प्रेरक प्रसंग। हमारे आज के प्रेरक थे गोस्वामी तुलसीदास। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण। नौ बजकर 30 मिनट होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जाएगा।

अभी आपने सुना उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ख्याल गायन दादरा। कलाकार थे अवधेश कुमार गोस्वामी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रामपुर की प्रथम सभा के प्रसारण। प्रातः के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के अनुरोध पर फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर सुनने वाले सभी साथियों को जवेरिया का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म पराया धन से, फरमाइश करता आप सभी मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, सरोज चौक अमरावती महाराज से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, ग्राम बंगुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, चमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली, आजम गुलफशाह, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक

कुमार। बैंडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। मौला मजार चांद शामिया, रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता रहमीन, शायना काजल और आशु भाई मंसूरी। परी महल कासगंज से अबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था पराया धन। कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे समय आकाशवाणी रामपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी ने, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम, अकरम सैफी और अबाद खान, मोताली महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी ओम, वाडी खामटावा से अनंता वांडे और रमेश्वर वांडे, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गगनदीप झंझोरिया, बेबी आरजू झंझोरिया, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार, बाराधरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, ग्राम बहरामपुर टेला जिला खरगेना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचन वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाली से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, रहमतनगर छप्पड़ वाली मस्जिद मुरादाबाद से बाबू अंसारी, शहनाज अंसारी, आफरीन अंसारी, सुमैया अंसारी, महरीन अंसारी, सिमरा अंसारी, अब्दुल रहमान, हाजी गफ्फार खान, रजिया बेगम, शारिक अली, इरशाद अंसारी और छोटे अंसारी, गाँव चौहलदा बागपत से संजय डिंगड़िया, नमन मुस्कान और खुनाल, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहाँ, डब्लू नूरजहाँ, सईद नूरजहाँ, वसीम नूरजहाँ, वलीउल्ला नूरजहाँ, राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी, वन्ना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। बोरठा दानता मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजनन घायल, पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मेरा गांव मेरा देश में लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

आप सुन रहे इस समय आकाशवाणी रामपुर से फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है संगम। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। फरमाइश करता आप सभी पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले अफसाना बेगम महजबी शेख एम फारूक शेख फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला शेख शमा परवीन अलकमर बेगम और मिर्ज़ा नसरीन बेगम। हिंगोली महाराज से शाजी बोट के नंदा बोट के हनुमान सारिका सुरेखा कुमारी अरवी तन्वी और समस बोट के परिवार। ता कंठमपुरी महाराज से उत्तम जमदाडे सौरा जमदाडे आत्माराम आसोले ललिता आसोले और समस परिवार। गिराम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खां इब्बन खां नाजिम खां सलमान शाहरुख खान और आरिश खान। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद रानी वैद महिमा वैद नीतू वैद। जिला खंडवा गिराम लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला धनजे और गायत्री धनजे। डोंगरगांव जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गज भी है राधिका गज भी है बेबी अनिष्का और तमन्वी है। मिलक पूजपुर जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन शाहिद हुसैन आदिल हुसैन शहदाज हुसैन शहनाज भी और आसिया भी। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन बहारुन्निसा आलम हुसैन एडवोकेट डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निज़ामुद्दीन मोहम्मद जमालुद्दीन सादिया अक्सा और हम्मात। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा बोट के और हनुमान बोट के। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बहारुद्दीन यूसुफुद्दीन फजान फरहान सुमैया आजमीन और गुड़िया। गौतमनगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले और नादेड़ महाराष्ट्र। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुलहसन सिद्दीकी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी बिटिया आलिशा सिद्दीकी शकील सिद्दीकी फहीम सिद्दीकी सिफान सिद्दीकी और अनाबिया सिद्दीकी। ग्राम महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर सुरजा से तानी ठाकुर ज्योति ठाकुर रियाज ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झवेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म संगम में मोहम्मद रफ़ी को।

गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर से, विश्वनाथ साहू चंडोंगरी पिपरिया से, दुर्गा राम साहू। फिल्म का नाम है मेरे सनम, स्वर है आशा भोसले का।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम। आपके अनुरोध पर ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल।

0: अनोखी और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
0: जी
1: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओ, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
0: जी,
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
1: जी,
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी,
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
0: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
0: जी
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
0: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
1: जी,
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
0: जी,
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोभी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
0: जी,
1: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो। हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
4: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
11: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
11: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
11: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
11: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
11: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
10: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाता। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हा?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
9: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
9: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा माँ,
10: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
6: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
10: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरा माँ,
10: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
10: क्या?
6: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
10: अच्छा, तो ये बात है बहनों।
11: हाँ गौरा माँ, हाँ गौरा माँ,
10: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
12: बिल्कुल,
10: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
11: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार
12: हैं। किसी भी हाल में
11: जंगल कटने नहीं देंगे।
12: नहीं कटने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
10: ये है जंगल के उपकार,
1: मिट्टी पानी और बयान,
10: मिट्टी पानी और बयान,
1: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
10: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। करनी चाहिए तुझे।
13: सुनो, आगे बढ़ो।
12: अरे कहाँ
13: से? दो मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
12: कदम पे। पेड़ों से चिपक जाएंगे। पेड़ों से चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम।
10: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
14: नहीं लगाने देंगे।
10: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
11: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
13: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
13: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
10: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटो

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आगे की सभाओं में आपके साथ जुड़े रहेंगे सुरेंद्र कुमार। मुझे यानी जवेरिया को अब दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब पेश है कार्यक्रम धरोहर। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के सुनते सुनाते 90 साल। आइए सुनते हैं इसकी कड़ी संख्या 3।

0: सुनते सुनाते बीते इन 90 वर्षों के सफर में केवल तकनीक के माध्यम से आधुनिकता के साथ मात्र समन्वय ही नहीं हुआ, बढ़ गया अद्भुत जुड़ाव भावनाओं, यादों और अपनेपन का हुआ संगम। जब देश में रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में, तब ये केवल घर में आने वाला नया मेहमान ही नहीं था, ये श्रोताओं का हमराज, हमदर्द और हम सफर भी बना। आकाशवाणी और श्रोता साथ रहे आंधी तूफान बारिश में, खेत खलिहानों में, होटल दुकानों में, घर की रसोई में, आम और चाय के बागानों में। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी ने बिखराई प्यार की गंध, जिससे महक उठा सुनने वालों का घर आंगन।
1: मैं मोहन सिंह रावत, इंदिरा कॉटेज कल्लीताल नैनीताल से आप सभी से मुखातिब हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। इस अवसर पर मैं अपनी एक याद अपने आकाशवाणी के सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहता हूँ। जीवन में कई बार चाहे अनचाहे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिनकी हमारे जीवन की दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका होती है। आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी एक ऐसी ही घटना मेरे मन मस्तिष्क में आज भी तरोताजा है, जिसकी याद प्रेरणा बनकर सदैव मेरा मार्गदर्शन करती है। पढ़ने लिखने में बचपन से ही मेरी रुचि थी। लेख, कहानी, कविताएं आदि लिखने का सिलसिला 7वीं कक्षा से ही शुरू हो गया था और 8वीं कक्षा में पहुंचने तक पत्र रचनाएं आदि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित भी होने लगी। धीरे धीरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से भी जुड़ाव बढ़ने लगा। यह बात 1986-87 की है, मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी था, उम्र 14-15 वर्ष के आसपास रही होगी। मैंने अपनी 4-5 कविताओं का आलेख तैयार कर आकाशवाणी रामपुर के साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम में प्रसारण हेतु भेजा। यह वह दौर था जबकि आकाशवाणी के कार्यक्रम लगभग प्रत्येक घर परिवार में सुने जाते थे। मेरे आलेख भेजने के 10-15 दिनों के बाद ही आकाशवाणी से जुड़े रचनाओं के प्रसारण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। इससे पूर्व युवाणी में भी मेरी एक वार्ता प्रसारित हो चुकी थी। साहित्यिक पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेना मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन दिनों आकाशवाणी में डॉक्टर माची रेड्डी कार्यक्रम अधिकारी थे। यह बात लगभग 40 साल पुरानी है, इसलिए हो सकता है कि नाम मुझे ठीक ढंग से याद ना रहा हो। डॉक्टर रेड्डी ने भी रचनाएं पढ़ने के बाद संभवतः मेरे बारे में किसी परिपक्व व्यक्ति की कल्पना की होगी, इसलिए मुझे देखकर वह चौंक से गए। पर बिना किसी टीका टिप्पणी के उन्होंने रचनाओं की काफ़ी तारीफ की और निरंतर लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक और रचनात्मक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ, जिसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं आकाशवाणी रहा है और आकाशवाणी में भी डॉक्टर माची रेड्डी जैसे अधिकारी जिनके प्रोत्साहन ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आकाशवाणी के उन सभी अधिकारियों, उद्घोषक भाइयों बहनों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने मनोरंजक कार्यक्रमों के जरिए हमारे जीवन में सदैव मिठास भरी है। न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सूचना परक और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम जानकारियों के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी फैलाया है। अपनी दीर्घकालिक यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इसने अपनी श्रोताओं के मध्य एक गहरी पैठ बनाई है। तो इन सभी कार्यक्रमों को तैयार करने में जो आकाशवाणी की जो रचनात्मक टीम है उसको मैं बधाई देता हूँ। एक बार फिर सभी श्रोता साथियों की ओर से अपने आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क को की बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमेशा इसी तरह दिन रात दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, यही हमारी कामना है।
2: मैं मुरादाबाद ग्राम दौलापुर से मुकेश कश्यप, मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर समस्त आकाशवाणी परिवार वालों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर। मुझे आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर जो सुबह सुबह सवेरे जो प्रोग्राम आता है 7:31 पर, वो उसमें बीते हुए इतिहास के बारे में पता चलता है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं, हमारी जानकारियों के लिए बड़ा इजाफा होता है और हमें बहुत लाभदायक होते हैं ये प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी के प्रोग्राम यूं ही चलते रहें। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं फिर से सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
3: मैं राधा नामदेव सहारनपुर से बात कर रही हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी उद्घोषक सभी जितने भी कर्मचारी आकाशवाणी के सभी को 90 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लंबा एक वक्त जो आकाशवाणी ने दिया है, बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आकाशवाणी के। और आकाशवाणी की जो स्थापना 8 जून 1936 को हुई थी, और शुरुआत में इसका नाम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और इसका नाम बदलकर 1956 में AIR कर दिया गया था। और हम जब से सुन रहे हैं आकाशवाणी, मेरे ख्याल से जब हम छोटे थे आकाशवाणी में, जब एक वंदे मातरम की सुबह में ट्यून आती थी, जब से सुनते आ रहे हैं। और जब हम सुनते थे आकाशवाणी केंद्र है करके, तो शुरुआत में जब इतनी अकल नहीं थी, बहुत छोटे थे, तो उस समय ऐसा होता था कि हम ये सोचते थे कि आकाशवाणी आकाश, इतना तो पता था कि आकाश से आवाज आ रही है, कि आकाश से ही कोई वाणी आती होगी, वहां से ही आवाज आ रही है। तो आकाशवाणी सुनते सुनते बड़े हुए, फिर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे चैनल सुनते थे आकाशवाणी के साथ। सारी जिंदगी जो है एक व्यतीत हमने कर दी है। 1990 का दौर था, तो हमने खत डालना शुरू किया। उस समय हम थोड़े से बड़े हो गए थे, तो आकाशवाणी चैनल पर खत डालते थे, अपने प्रोग्राम के विषय में जो है जानकारी लेते देते थे। तो उस समय फोन का चलन नहीं था, तो खतों द्वारा ही हम सारे प्रोग्राम में शामिल होते थे। और बहुत अच्छे से एक जीवन साथी हमने आकाशवाणी को बनाया हुआ था। बहुत लंबा एक हमने टाइम आकाशवाणी के साथ जो बिताया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आकाशवाणी के। हम खाली वक्त में अपने आकाशवाणी के साथ ही एक अपना काम करते हैं और आकाशवाणी को सुनते हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। और बहुत लंबा जो हमने ये टाइम निकाला है आकाशवाणी के साथ, और बहुत अच्छा लगा था आकाशवाणी के साथ जुड़ना। और आज तक हम जुड़े हुए हैं और जुड़े ही रहेंगे शायद जब तक जिंदगी है। बहुत लंबा टाइम हमने आकाशवाणी को दिया, और हमें बहुत खुशी है कि हम सब श्रोता भी जुड़े हुए हैं साथ में, और जुड़ने के बाद हमें सब एक परिवार बन गया है। तो 90 वर्ष जो है

0: पूरे करने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी श्रोताओं का, आकाशवाणी के उद्घोषकों को एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं।
1: जी, मैं बेरडी से बोल रहा हूँ, राजेश सोनी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी, और मैं चाहता हूँ कि आकाशवाणी यूं ही आगे बढ़ती रहे और श्रोताओं का और हम सबका मनोरंजन यूं ही करती रहे, और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध है सर जी। आकाशवाणी रामपुर से कम से 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मैं आकाशवाणी का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि सर जी, जब से मैंने आकाशवाणी को चुना है तो तब से मेरे को खत लिखना वगैरह कुछ भी आता नहीं था। अब जैसे जैसे मैंने आकाशवाणी जो को सुनना स्टार्ट किया तो मैं खत भी लिखता हूँ और अभी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ भी लेता हूँ, ये मेरे को आकाशवाणी ने दिया है। और कार्यक्रम के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये कार्यक्रम लाजवाब रहती है, जैसे आपके अनुरोध पर है, गीतांजलि है और जो अन्य फरमाइशी प्रोग्राम है, वो कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर होते हैं। फिर से आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरी करने की हार्दिक शुभकामना।
2: मैं गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी बोल रहा हूँ जी। आकाशवाणी की 90 साल की वर्षगांठ की आपको और पूरी आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हम आपके कार्यक्रम लगभग 1985-86 से सुन रहे हैं सर। आपके कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक मनोरंजक होते हैं और हमारा घर बैठे मनोरंजन करते हैं जी। रेडियो एक बड़ा सुगम और सरल साधन है, इसको हम कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी जाकर इसको साथ ले जाकर सुन सकते हैं। अब तो ये मोबाइल ऐप पे भी आ गए, लेकिन हम काफी सालों से इसको पहले मीडियम वेव पर सुनते थे। आपके सारे ही कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया होते हैं जी। मैं एक बार फिर आकाशवाणी की 90 साल की वर्षगांठ पर सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देता हूँ जी।
3: रेडियो के चाहने वालों को आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदें, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सन्नाटा और हल्की आवाज में दूर कहीं से सुनाई देते आकाशवाणी के कार्यक्रम, जिन्हें सुनकर मिट जाती दिन भर की थकन, उलझनों को भूलकर शुरू हो जाता एक नया सिलसिला शब्दों और उसकी रूह से मिलने मिलाने का, आकाशवाणी के विविध कार्यक्रम सुनने और सुनाने का। रेडियो बजते ही सबका दौड़ कर आना, मीठी आवाज सुनते ही चैन सा आ जाना, अच्छी आवाज की खातिर ट्रांजिस्टर की सुइयों को आगे पीछे घुमाना, जरूरी काम तलक छोड़कर प्रोग्रामों पर ध्यान लगाना, घंटों का इंतजार, गीतों की फरमाइश, श्रोताओं के प्यार में कभी भी नहीं रही कोई गुंजाइश। आज भी है वो प्यार, आगे भी रहेगा।

0: मैं आकाशवाणी रामपुर का रेडियो श्रोता शिव कोठी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से राकेश पप्पू सेन। आप सभी सुनने वाले तमाम मेरे रेडियो श्रोता साथियों एवं आकाशवाणी परिवार को हमारे सेन परिवार की ओर से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आकाशवाणी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे हम श्रोता बैठे हैं गहरी छाव में। हमें आकाशवाणी ने बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों का सारगर्द सार्थ है हमारा आकाशवाणी केंद्र। इसी से हमें बोलना, चलना और ज्ञान वर्धन सब कुछ मिला है। हम आकाशवाणी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हम ऐसे केंद्रों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें भरपूर प्रेम दिया है। वहाँ के सभी तमाम उद्घोषक भाई बहनों की भी जो कड़ी मेहनत होती है, कड़े मेहनत के साथ हम श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। उन तमाम प्रस्तुता साथियों का जितनी बार भी अभिनंदन या बढ़ाई करें वो कम लगती है। आप सभी साथियों को पुनः एक बार इस मंगलमय यात्रा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
1: सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ा बात कर रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 साल का सफर हमारे जीवन का एक अनोखा सफर रहा है। आकाशवाणी ने 90 सालों में जो श्रोताओं को दिया है वो कहीं से और प्राप्त नहीं हो सकता। ये 90 साल का सफर हमारे जीवन को बदलने वाला सफर रहा है। पिछले 50 सालों से हम आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी ने हमें इतना ज्ञान दिया है, मनोरंजन दिया है और इतनी प्रतिभा दी है कि आकाशवाणी ने हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिला है आकाशवाणी से। आकाशवाणी हमारे जीवन में एक अलग रोशनी का दीपक जलाया है जिससे हम श्रोता लोग आकाशवाणी सुन सुनकर बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। हम आकाशवाणी का आभार व्यक्त करते हैं। आकाशवाणी जिंदाबाद। आकाशवाणी ने जो कुछ मनोरंजन जो हमारे जीवन को खुशियां दी है वो और कहीं से हासिल नहीं हो सकती। आकाशवाणी तो हमारा जीवन की और हमारे लिए रूह की खुराक है। जितने भी आकाशवाणी के श्रोता है आकाशवाणी सुन सुनकर इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आकाशवाणी ने जो 90 साल श्रोताओं के साथ व्यतीत किए हैं और उम्मीद करता हूँ निरंतर आने वाला हजारों सालों तक आकाशवाणी इसी तरह से श्रोताओं के जीवन में एक नया परिवर्तन, नई खुराक, नया मनोरंजन, नई जानकारियां निरंतर जारी रखेगा। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं आकाशवाणी के साथ हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: श्रोताओं के सहयोग, समर्पण और अपनेपन से ये सफर लगातार जारी रहा, घर घर तक पहुंचने लगा आकाशवाणी की आवाज का जादू। सुबह की मंगल ध्वनि से लेकर रात के सुकून भरे कार्यक्रमों तक रेडियो ने श्रोताओं की जिंदगी के हर पल को खास बना दिया। प्रस्तुतकर्ताओं की वाणी, समाचारों और तथ्यों की विश्वसनीयता और विभिन्न प्रकार के संगीत की मधुरता, सब मिलकर ऐसा संसार रचते रहे जिसमें हर कोई सुनने वाला अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था। पूरे देश की आवाज बना आकाशवाणी, वॉइस ऑफ नेशन, भारत की आवाज। केवल मनोरंजन ही नहीं, सूचनाएं भी दी, शिक्षित और जागरूक भी किया, लोक प्रसारक की भूमिका भी निभाई। साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, लोक विधा, इन सब को सहेजा, समृद्ध किया। तभी तो सुनने वाले इसे दिलो जान से चाहते हैं।

0: नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल गजभिये डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी रामपुर के विभिन्न कार्यक्रमों को मैं लगातार सुनते रहता हूँ। रामपुर से कार्यक्रम जो आते रहते हैं, श्रोता मंच है, गीत आपके नाम है, गीत गाता चल है, जो कार्यक्रम है उसको बहुत रुचि और बहुत ध्यान से सुनते रहता हूँ मैं, और बीच बीच में फरमाइश भी भेजता हूँ, तो नाम भी शामिल करते हैं। यहाँ के आकाशवाणी के जितने भी आरजे वगैरह हैं बहुत शानदार हैं, उनकी आवाज बहुत मीठी लगती है। और आकाशवाणी रामपुर जो है बहुत अभी बहुत प्रसिद्ध चल रहा है, बहुत फेमस हो गया है, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो भी रामपुर को सुनते रहते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ।
1: मैं ग्राम परसेंठा जिला फतेहपुर यूपी से रोहित यादव बात कर रहा हूँ। भारत के रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के समस्त रेडियो केंद्रों के मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर जी, मैं एक नवयुवक हूँ। सर जी, मैं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जी। अब मुझे युवाणी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सर जी ये मेरे मतलब ये सर जी तैयारी कर रहा हूँ, इससे काफी युवाओं का प्रोग्राम जो युवाणी आती है सर जी, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर जी, क्योंकि इससे युवाओं को पढ़ाई के मामले में सर जी कुछ जानकारियां मिलती रहती है। तो इसलिए सर जी मैं युवाणी प्रोग्राम ज्यादातर सर जी युवाणी से मुझे बहुत ही फायदा मिलता है सर जी, क्योंकि वैसे तो सर जी मुझे आकाशवाणी सभी प्रोग्राम बहुत बेहद अच्छे लगते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं सर जी, लेकिन जो युवाणी प्रोग्राम आता है सर जी, इससे मुझे काफी पढ़ाई के मैटर भी सीखने को मिलते हैं, इसलिए सर जी मुझे युवाणी ज्यादा पसंद है। रेडियो प्रसारण की यू ही सभी प्रोग्राम इसी तरह चल, भारत के सभी श्रोताओं के लिए और सभी आकाशवाणी केंद्रों के लिए 90 वर्ष प्रसारण के पूर्ण होने के लिए सर जी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ सर।
2: मेरा नाम मोहम्मद रुकनुद्दीन मंताल, कर्नाटक गुलबर्गा से। यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मैं रोजाना सुनता हूँ। मैं आकाशवाणी के 90 साल होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आकाशवाणी के प्रोग्राम चलते रहे और यही शुभकामनाएं आपके साथ।
3: नमस्ते, मैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे बात कर रहा हूँ, और आकाशवाणी ने 90 साल की यात्रा पूरी की है। मैं इस पावन वर्ष पर आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आकाशवाणी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ, और आपने सभी सुधी श्रोता भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ। और आकाशवाणी का के प्रति तो मेरा बचपन से जुड़ाव है, और आकाशवाणी मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि बचपन से मैं आकाशवाणी 1993 से सुनते आ रहा हूँ मैं, और बिजली ना हो, जहाँ कुछ भी कोई भी सुविधा ना हो वहाँ भी आकाशवाणी सुन सकते हो, और मनोरंजन तो कर सकते हो, सब कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि किसानों को जानकारी मिलती है, सेहत के लिए जानकारी मिलती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये जो वृद्ध वाक्य है उसके ऊपर वो खरी उतरती है आकाशवाणी। कुछ दिनों के कुछ आगे चलकर 100 बरस भी पूरा करे आकाशवाणी, और हमारे लिए ऐसे ही नए नए कार्यक्रम बनाते रहे, यही हम कामना करते हैं।
4: हेलो दोस्तों, मैं शमा परवीन रामपुर से। 90 वर्ष पूरे कर चुका है आकाशवाणी। आकाशवाणी को दिल से धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयां, मुबारकबाद। रेडियो तेरी क्या शान है, रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, रेडियो ने हमें जिंदगी जीने का हुनर सिखाया, रेडियो ने हमें बोलने का अंदाज सिखाया, रेडियो ने कभी ऊंची आवाज से बात करना नहीं सिखाया, रेडियो ने मवापों से किस तरह से बोला जाता है रेडियो ने सिखाया, रेडियो ने हमें एक सूत्र में बांध के रखा है, रेडियो दूर दूर के शहर के लोग को साथ रखता है, रेडियो कभी ऊंच नीच नहीं सिखाता, रेडियो कभी जात पात नहीं सिखाता, रेडियो अमीरी गरीबी नहीं सिखाता, रेडियो एक साथ लेके चलता है, रेडियो कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ तेरा रेडियो, तेरी आभारी हूँ, तेरा ऋण है हम पर, सभी श्रोताओं पर। और मुझे खासकर फोन इन प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मेरा जुड़ाव भी फोन इन प्रोग्राम में ही रहता है, जैसे कि दूर दूर से लोग कॉल करते हैं, दूर दूर से जुड़ाव रखते हैं, और पता लगता है कि कौन से श्रोता कहाँ से रेडियो सुन रहे हैं, उनकी पसंद जानने को मिलती है, उनकी आवाज सुनने को मिलती है। आवाज की दुनिया है रेडियो, आवाज से ही बंधा है रेडियो, श्रोताओं का प्यार इतना मिला कि 90 वर्ष पूरे कर चुका रेडियो। आकाशवाणी तेरा दिल से शुक्रिया। आकाशवाणी के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे कभी हंसता है रेडियो, कभी हंसाता है रेडियो, कभी हंसता है रेडियो, कभी हंसाता है रेडियो, हमें दुनिया की बातें बताता है रेडियो। और मेरे पंख नहीं तो क्या हुआ, हमें आसमां की बुलंदियों पे ले जाता है रेडियो। मेरे को खाने को नहीं हो, पीने को नहीं हो, लेकिन आकाशवाणी मुझे सुनने को हो। दिल से धन्यवाद 90 वर्ष पूरे होने के आकाशवाणी टीम के लोगों को।
5: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बकज बोल रहा हूँ मैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे मैं सब हार्दिक कामनाएं देना चाहता हूँ आकाशवाणी के सभी कर्मचारी, सभी उद्घोषक भाई बहन, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम अच्छे हैं और अच्छे सुनता भी हूँ, और उनको सुनकर मेरे को ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी आते हैं और उनसे सीखा भी हूँ। मैं काफी दिनों से जुड़े हुआ हूँ और सुनते रहता हूँ आकाशवाणी। आकाशवाणी इंटरनेट के बहाने से सुनते हैं, और किसी भी आकाशवाणी को हम इंटरनेट के माध्यम से सुनते है, और इंटरनेट की सहूलत से दुनिया के हर हिस्से में बैठकर रेडियो सुना जाता है। भारत के जितनी भी संस्कृति है वो सब जानने को मिलती है और सीखने को मिलता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं।
6: आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण क्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे स्वाधीनता की पहली भोर हो या किसी आपदा की घड़ी। आकाशवाणी ने हमेशा लोगों को एकजुट किया, उन्हें सही दिशा दिखाई, आशा का संचार किया। अब रेडियो मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भी हम सबके साथ है। इसका जादू बरकरार है लगातार उसी पुरानी आत्मीयता के साथ। आकाशवाणी के 90 साल का ये सफर हमें सिखाता है कि असली जुड़ाव साधनों से नहीं बल्कि

संवेदनाओं से होता है। यह है दिलों का राग, संजोया है इसने अनुराग। श्रोताओं को इसने दी एक ऐसी मधुर धुन जो समय के हर पड़ाव पर हमें देती है सुकून, प्रेरणा और अपनापन।

0: नमस्कार जी, मैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बोल रहा हूँ। आकाशवाणी को 90वीं यात्रा पूरी होने पर उनको शुभकामनाएं देते हैं जी। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आपकी पसंद प्रोग्राम अनुरोध गीत और युवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं जी। हम आकाशवाणी शिमला, देहरादून और बहुत से लगभग सभी आकाशवाणियों में पत्र लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं और हमें ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी।
1: नमस्कार श्रोता साथियों, मैं सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आकाशवाणी का नियमित श्रोता, आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पर समस्त आकाशवाणी परिवार को, समस्त श्रोता साथियों को एवं देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आकाशवाणी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी आकाशवाणी ने मेरा बहुत साथ दिया है। 1 जून 2007 से आज तक निरंतर मेरा आकाशवाणी के साथ जुड़ा रहा है। आकाशवाणी से केवल गीत संगीत के माध्यम से ही मुझे आनंद नहीं मिला, आकाशवाणी के माध्यम से स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम आते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि स्वच्छता ही हमारी सेवा है और यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी काम कर पाएंगे। और इन्हीं विचारों को लेकर के आकाशवाणी ने एक सपना संजोया था जो आज साकार होता जा रहा है और इसी को लेकर के मैं भी आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि मेरा भी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो चुकी है और जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं वह मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मैं आकाशवाणी को अपने जीवन में विशेष महत्व देता हूँ। आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित समस्त कार्यक्रम मुझे काफी प्रिय होते हैं, गीत संगीत से रिलेटेड हो, शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, और समस्त कार्यक्रम मुझे काफी अच्छे लगते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़कर आकाशवाणी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले एवं आकाशवाणी के प्रति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत इसका साथ बनाए रखें।
2: मैं सहारनपुर से सुरेश नारंग आशुत। सही बात तो यह है कि बचपन से ही मैं रेडियो से जुड़ा रहा। जब मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई केवल रेडियो ही सुनते, आज जब मैं 64 का हूँ तो भी वही शौक बरकरार है। ट्रांजिस्टर हो, डीटीएच हो, चाहे मोबाइल हो, अधिकतर दिन का समय रेडियो में ही व्यतीत करता हूँ। कभी गीत संगीत, कभी न्यूज, तो कभी विशेष रोचक जानकारी से भरपूर आकाशवाणी आज भी अपना वही वर्चस्व बनाए हुए। एक दौर तो बीच में ऐसा था जिसे कि मैं गोल्डन दौर कह सकता हूँ, जब हर साइकिल पे ट्रांजिस्टर, घर घर ट्रांजिस्टर, यहाँ तक कि दहेज दान में भी ट्रांजिस्टर का ही प्रचलन हुआ, तो वो तो एक गोल्डन दौर रहा। लेकिन वास्तव में तब से अब तक कहीं भी इसकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई, कहीं घटी नहीं। और आज इस अवसर पर आप सब आकाशवाणी के पदाधिकारियों और उद्घोषकों की मैं विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आकाशवाणी और ये हमारा रेडियो ऐसे ही अनवरत रूप से तरक्की करता रहे और आप इसे दोस्त सुने।
3: मैं मास्टर विच्छल सुरोशी, काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से। मैं हमेशा आकाशवाणी रामपुर रेडियो से जुड़ा हूँ और रामपुर रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं। रामपुर रेडियो को मेरी ओर से 90 वर्ष की लिए ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। रामपुर आकाशवाणी मैं लगभग 3-4 साल से सुन रहा हूँ। रामपुर फेसबुक सवाल होता है, रामपुर में गीत आपके नाम, इन सभी कार्यक्रमों में हमेशा भाग लेता हूँ। कामना है हमारी कि आकाशवाणी रामपुर चांद तारों की तरह आगे बढ़ता रहे।
4: मैं जीशान वारसी, ग्राम सनौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से हूँ और मैं सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई पेश करता हूँ। और आकाशवाणी ने हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत सा ज्ञान हमें भेंट किया है और आकाशवाणी हमेशा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मार्ग पर चला है और हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं आकाशवाणी का दीवाना हूँ और आकाशवाणी को अपने दिल में जगह देता हूँ।
5: सूचना के मधुर स्वर में संस्कृति की चाल।

भी अपनापन कितना गहरा, लगता है जैसे हो कोई अपना सा ठहरा। सुबह की पहली किरण संग जब गूंजे मधुर उद्घोष, मन के कोने कोने में भर जाता स्नेह भरा जोश। कभी गीतों में ढलकर आता, कभी बनकर कहानी बहता, हर धड़कन के संग ये रेडियो चुपके से दिल से ये कहता, मैं हूं तुम्हारे साथ सदा, चाहे जितना हो अंधियारा।

ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। आवाजों का पावन बंधन है ये, हर दिल एक दूजे से जुड़कर है। समय बदले, युग बदले, पर ये डोर न टूटेगी कभी। हमारी चाह है यूं ही आगे बढ़ते जाने की, नया कुछ करते जाने की, अपने सुनने वालों के साथ दूर तक जाने की, एक नई राह बनाने की। इसी तरह गुजारे हैं ये 90 साल, श्रोताओं के दिल की सुनते, उनको अपनी सुनाते। कोशिश है नया करें, बेहतर करें, करें वो जो अच्छा हो। हमारे साथ दुआ कीजिए ये सपना सच्चा हो। आकाशवाणी की इन गौरवशाली 9 दशकों की यात्रा में आप सब हमारे साथी रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 90 वर्षों से आगे भी ये सफर यूं ही चलता रहेगा, सुनते सुनाते हमेशा ही।

आकाशवाणी के सुनते सुनाते 90 साल, इसकी कड़ी संख्या 3 अभी आपने सुनी। हम धरोहर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

आज के इस मनभावन कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार मनोज मुंतजिर के लिखे हुए कुछ नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है MS धोनी, गीतकार है मनोज मुंतजर और गायक कलाकार हैं पलक मुंचल, संगीत अमल मलिक का है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आपने सुना गीतकार मनोज मुंतशिर का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम था रुस्तम और स्वर था आर्को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है एक विलन। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और इस गीत में स्वर दिया है अंकित तिवारी ने।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और आज इसमें आप सुन रहे हैं एक ही गीतकार के कुछ नगमे, और आज के हमारे गीतकार हैं मनोज मुंतजिर। कार्यक्रम में अगला गीत अरिजीत सिंह और शाशा तिवारी की आवाज़ों में, संगीत मितुंदा का है, और फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है तुम बिन टू। गीतकार हैं मनोज मुंतजर, गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है। गीतकार मनोज मुंतजर की, गीतकार हैं मनोज मुंतजर और आवाज़ें हैं जुबिन नौटियाल की।

0: कार्यक्रम मन भवन, इसमें एक ही गीतकार के अंतर्गत मनोज मुंतजिर के लिखे गीत अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री

0: पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास।
4: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। और अब सुनिए सूचनाएं गुमशुदा हुए व्यक्तियों के बारे में। थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि निर्मला देवी पत्नी सत्यपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी मोहल्ला दुर्गा प्रसाद थाना बीसलपुर से दिनांक 23 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। गुमशुदा निर्मला का हुलिया कुछ इस प्रकार है। रंग गेहुआ, शरीर सामान्य, कद 5 फीट 1 इंच, चेहरा लंबा है। पहनावे में क्रीम रंग का सूट और गहरे रंग की सलवार, हरे रंग की सलवार पहने हुए हैं। यदि किसी सज्जन को इस संदर्भ में कोई सूचना मिलती है तो आप थाना बीसलपुर को संपर्क करने की कृपा करें। संपर्क सूत्र है 7668558098। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुनिए 7668558098। थाना गजरोला जनपद पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि सोनाली देवी पत्नी प्रेमपाल, निवासी ग्राम अमरखेड़ा थाना गजरोला से दिनांक 21 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। गुमशुदा सोनाली देवी का उम्र करीब 18 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत, चेहरा सामान्य, रंग गेहुआ, कद 5 फीट है और चेहरा लंबा है। पहनावे में सलवार सूट पहने हुए हैं। यदि किसी सज्जन को गुमशुदा के बारे में कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना गजरोला से संपर्क करने की कृपा करें। संपर्क के लिए मोबाइल नंबर है 7535988216। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुनिए 7535988216। गुमशुदा हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रही हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम, श्रोताओं का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, गीत आपके नाम।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में, और सभी श्रोताओं की कुछ चिट्ठियां हमारे हाथ में हैं और कुछ ईमेल मैसेज भी हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं किन के मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं। हमारे श्रोता हैं डुमराव बिहार से असमा परवीन, दुखना रानी, सदब आरजू, वली अल्लाह अंसारी, और इन्हीं के साथ सम्मिलित रूप से पत्र भेजा है फिल्मी सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसारी मोगा और हमद मोगा। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से हमारे श्रोता हैं बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। कार्यक्रम में अगली ईमेल हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं, और लिखने वाले हैं मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। अगली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, लिखने वाले हैं रोहिदास चौक पंडपुर शहर से, और हमारे श्रोता हैं सुनीता शिंदे, यशपाल शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा। अगली ईमेल हमें मिली है और हमारे लिखने वाले श्रोता हैं कब्र कॉलोनी बडवाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली और

मीना श्रीमाली। जिला मुरादाबाद, गांव दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है संघर्ष और गायक कलाकार हैं सोनू निगम।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश। और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, आपने स्थान इसमें मेंशन नहीं किया, और लिखने वाले श्रोता हैं विद्या कुमारी, रतनमाला सुरलकर, विजय, और आप लिख रहे हैं महाराष्ट्र। अगले हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, और इनके साथ हैं शोभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगली फरमाइश हमें लिख भेजिए। और हमारे श्रोता हैं लिखने वाले शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, और श्रोताओं के नाम इस प्रकार हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हमारे श्रोता हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। श्राफ रोड राजकोट से ये ईमेल हमें प्राप्त हुई है, और लिखने वाले हैं प्रेमा रानी, डोली, सुरेश डॉकर, और इन्हीं के साथ ये ईमेल सम्मिलित रूप से हमें भेजी है। और लिखने वाले हैं गुजरात से प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी, चमनपुर मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु, कापसहेड़ा दिल्ली से हमारे श्रोता हैं फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, जालंधर से हैं संदीप जाटव और सुरेश जाटव। मुंबई फिल्म सिटी से ये ईमेल हमें भेजी है, और लिखने वाले हैं मोहम्मद सलीम और निगहर परवीन, और साथ में हैं वलीउल्लाह अंसारी। जालंधर से ये श्रोता हमारे हैं, इन्होंने पता इसमें मेंशन नहीं किया है, और लिखने वाले हैं रेशमा अंसारी, निशा और देवशंकर। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हमारे श्रोता हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू, दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती। गोरैया जालंधर से हैं संदीप कौर, प्रभा कौर, और मेरठ बाईपास से हैं राधिका कौर और आरती कौर। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज, सबाना वानू, और जेल रोड से बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज, एसडी अंसारी और फातिमा नाज। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। गायक कलाकार हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान, और फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन।

कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तन, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। ग्राम पंचायत बठेली, पटना, जिला दुर्गा, छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेश वर्मा, उमेश और प्रमीला। नालेश्वर नगर नवेल महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल, सोपान। मलकापुर से हमारे श्रोता हैं नारायण, राजकुमार और आशीष। इस गीत को पसंद किया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता अभिजीत गवणकर, श्रीमती सरिता गवणकर, प्रिंस एकांश गवणकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। अगले हमें ये ईमेल हमें मिली है नई बस्ती गंज डोंडवारा से और लिखने वाले हैं मोहम्मद यासीन, नाजमा और तौसीफ। अगली ईमेल हमें मिली है कुम्भार गली कोलगांव से, लिखने वाले हैं पांडू, चंदन, उषा, प्रतीक्षा, पृथ्वेश, पांडुरंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश हमें मिली है मरहरा दरवाज एटा से, लिखने वाले हैं नबी हसन, सहनाज, नावेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनस, सफश और परिवार के सभी सदस्य। नेहरू चौक पेठन से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोलन, बेबी सिया। जालना शहर से हैं सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। खेल बाजार पानीपत से हमारे श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, लाडो, पापा जी नानंद। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे श्रोता हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक। मुंदी चक भागलपुर बिहार से हमारे श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा। इस गीत को पसंद किया है राज द्वारा रोड मीठा कुआ रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी ने। अगले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने अपने स्थान नहीं लिखा है कहाँ से भेज रहे हैं, और हमारे श्रोता हैं राजस्थान से शादुल शहर से हमारे श्रोता हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश, हमजा और गुलफजा। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हमारे श्रोता हैं जावेद अख्तर, शमशुल कमर,

रकीबा, तूबा और शमीम अख्तर। अगली ईमेल हमें मिली है और हमारे श्रोता हैं सनावत से, हमारे श्रोता हैं और लिखने वाले हैं शेख मूसा मोहसिन। अगली ईमेल हमें मिली है पुराना तालाब डुंडवारा से और लिखने वाले हैं वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी, सबनम बानो, जेल रोड बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज, एसडी अंसारी और फातमा, चमन पार्क दिल्ली से हमारे श्रोता है डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गणेशपुर गंजुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलसफा और बेबी मुस्कान। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र कुमार धाना। यदि आप भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है geetaapkenaam@gmail.com। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर सुनिए, geetaapkenaam@gmail.com। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आप सभी की। आपने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, और फरमाइश करता है आप सभी। साईं की सीढ़ी से हमारे श्रोता हैं सुरेश वणा, श्रद्धा मानसी, कोपागिरी कॉलोनी कोपा गांव से सुरेश वशा श्रद्धा, भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशा और पूजा परिहार।

रेलवे कॉलोनी कानपुर से हमारे श्रोता हैं आफ्ताब उल्लाहा, अल्ताफ उल्लाहा, वली उल्लाहा। इलाहाबाद से हमारे श्रोता हैं रेशमा नाज, बेबी अंसारी। अगली ईमेल हमें मिली है पद्मा टॉकीज नेपनगर मध्य प्रदेश से, और भेजने वाले हैं सुदर्शन, पल्लवी, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, राजेंद्र और मंगलाबेन। कार्यक्रम में अगली ईमेल रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से, और लिखने वाले हैं रेशमा, निशा, और जालंधर से हैं देवशंकर जटोलिया। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र, कपिल, ईशा और पूजा परिहार। कार्यक्रम में अगली चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद से, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक, अतीक और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। कार्यक्रम में अगली ईमेल मिली है साफ़ी अहमद अंसारी, रईस दूल्हा अंसारी। आपने ये नहीं बताया है कि आपने कहाँ से लिखा है। कार्यक्रम में अगली ईमेल हमें मिली है और फरमाइश करता है किंग रेडियो श्रोता संघ गणेशपुर गंज डंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। आप सभी से एक गुजारिश है कि कृपया बार बार ईमेल रिपीट ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिनाई होती है। जो एक बार पहले मेल भेज सके हैं, भेज जा चुके हैं, तो थोड़ा वेट करें। थोड़ा वेट करेंगे तो आपका नाम भी इसमें फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार ईमेल से हमें बार बार ईमेल भेजेंगे तो इसमें औरों की फरमाइश लेने में थोड़ा तकलीफ़ महसूस होती है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगली ईमेल हमें मिली है पद्मापुर जिला गंगानगर राजस्थान से, और लिखने वाले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। ये ईमेल हमें मिली है सुमन कल्याणपुर, लिखने वाले हैं विरमगाज गुजरात, अभिजीत और प्रमिला। ये अगली चिट्ठी हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, और लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, धोविया निवेदा गाजीपुर से, प्रतीक राय, रोशनी राय, पंजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से हैं अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। कोट मोहल्ला चौकुटी बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद, निगमा परवीन, शाहनवाज अंसारी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार। अगली मेले में मिली है कुम्भार गली कोलगांव से, लिखने वाले हैं पांडू, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंगा। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल और अभिराज। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। इसी गीत को पसंद किया है और हमारे श्रोता हैं मंजू का टीला से, लिखने वाले हैं कमल, मधु, सागर। सतना मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं उमंग, आकांक्षा और माही। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहरान जहां। भोपाल गढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता है राजेश साबले, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। मुल्लापुर दाखा से हैं हमारे श्रोता राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। अहमदपुर खेर गांव खंडवा से हमारे श्रोता हैं कैलाश, दीपक, समर और वैदिक। दादा बाबू रोड गृहिड़ झारखंड से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। साथ में हैं सादिया।
हिंगोली महाराष्ट्र हमारे श्रोता हैं साजी बोखड़े, श्रीमती नंदिनी नंदा बोखड़े, हनुमान बोखड़े। अम्बेड़ नगर चौक वाडोली से हमारे श्रोता हैं उत्तम और स्वराज। अगली ईमेल हमें मिली है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोली हार डोली लोहार से, और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, ये हमें छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं, और लिखने वाले श्रोता हैं देव शंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली, राधिका और प्रभाकर देव, साथ में है मास्टर अली कबीर। जलालाबाद वेस्ट से हमारे श्रोता हैं सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित। अगली मेल हमें मिली है टोरवाल पंजाब से, और लिखने वाले हैं गगनदीप, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रिया, बेबी वामी और वाणी। अगली चिट्ठी हमें मिली है गांव नथाना पंजाब से, और लिखने वाले हैं हरजिंदर, चीका, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। दाऊद सराय सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ अंसारी। अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, यूसुफ, सदफ हुसैन। सरोचौक से हमारे श्रोता हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसरीन बेगम, शुएब खान। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत आपके नाम, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी। आज 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है। आज इसमें गायक कलाकार होंगी नीता सक्सेना। 1:30 पर होगा शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम। 2:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इसमें आप सुनेंगे 80 के दशक के कुछ सदाबहार नगमे।

दूसरी सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे, और शाम 5 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कम्पेट कार्यक्रम। आज शाम 5:15 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। शाम 6:20 पर होगा किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है, यह कार्यक्रम होगा आज शाम 7 बजे। 7:31 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगी प्रियंका ग्वाल। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित श्रोताओं का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। और आज रात्रि 10:30 पर होगा कार्यक्रम गीतांजलि। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने को है। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के जरिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीकों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मजीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फायदेमंद साबित होगा। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे कबल कल वज़ीर-आला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 270 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ्फुज़ और रोजगार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वज़ीर-आला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नज़रअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैनुल-अक़वामी इवेंट में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैन शुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायजा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जाँच शुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कारफरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 401.6।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम धरती गाती है। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नेता सक्सेना की आवाज में कुछ लोकगीत।

नई राहें, नए इरादे, नई मंजिल के नए वादे, देश को आगे बढ़ाने निकली है युवा शक्ति के मजबूत इरादे। आइए इस नई सोच का सम्मान करें, मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें। नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी सखी रजनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना मन पसंद कार्यक्रम कुमकुम। सखियों, आज सुबह जब मैं चाय की चुस्की ले रही थी तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल बहुत तेजी से हो रहा था। एक 18 साल की लड़की ने कचरे से बिजली बनाने का एक शानदार मॉडल तैयार किया और उसे देखकर दिल से एक ही आवाज निकली, वाह, यह है हमारी आज की पीढ़ी। लोग कहते हैं आज के युवा सिर्फ रील्स स्क्रॉल कहते हैं, लेकिन सच तो यह है सखियों, ये नई पीढ़ियां सिर्फ रील नहीं बना रही हैं, ये तो नया इतिहास भी बना रही हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं नई पीढ़ी की नई सोच। आज बात हो रही है हमारी नई पीढ़ी की उस सोच की जो दुनिया को एक नए चश्मे से देख रही है। लकीर के फकीर तो सब बन लेते हैं, मजा तो तब है जब आप अपनी राहें खुद बनाएं। एक जमाना था जब कैरियर का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सरकारी नौकरी होती थी। अरे शर्मा जी का बेटा अगर गिटार उठा लेता था तो मोहल्ले में एक मातम सा छा जाता था। लेकिन आज की पीढ़ी कहती है फॉलो योर पैशन। आज हमारे युवा ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, शटअप फाउंडेंसर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और AIR एक्सपर्ट हैं। वे रिस्क लेने से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। और सखियों, आप जानती हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? अरे ये नई सोच सिर्फ कैरियर तक सीमित नहीं है। आज का युवा मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात कर सकता है, जहां वे पहले डिप्रेशन को मूड में खराब होना कहकर टाल दिया जाता था। आज की पीढ़ी थेरेपी लेने में और अपनी भावनाओं को जाहिर करने में भी हिचकिचाती नहीं है। ये बदलाव नहीं तो और क्या है? कुछ तो लोग कहते हैं कि ये आज की पीढ़ियां बड़ों की इज्जत नहीं करती हैं या संस्कारी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ये पीढ़ियां अंधभक्ति नहीं करती हैं, ये सवाल पूछती हैं और सवाल पूछना जिंदा लोगों की निशानी है। आज का युवा पर्यावरण को लेकर सजग है, वो क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी खड़े होते हैं। इस पीढ़ी के पास अगर तकनीक की ताकत है तो समाज को बदलने का जज्बा भी है। शाम को नुक्कड़ की चाय की दुकान पर या घर के ड्राइंग रूम में एक चर्चा जरूर छिड़ती है कि आजकल की जनरेशन ना बस फोन में घुसी रहती है, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। नहीं सखियो, आज की यह पीढ़ी नई पीढ़ी है ना, तो यह जितनी अपनी स्क्रीन से जुड़ी है उतनी ही जमीन की हकीकत से जुड़ी है। ये वो पीढ़ी है जो पुरानी बंदिशों को तोड़कर एक नई सोच के साथ समाज में एक नया बदलाव का नया सवेरा ला रही है। अगर हम आज की नई पीढ़ी के आविष्कारों और उनकी उपलब्धियों, उनके द्वारा बनाई गई दुनिया पर नजर डालें तो उन्होंने सिर्फ चीजों की ही नहीं बल्कि दुनिया को जीने और सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। आज हम जिस डिजिटल लाइफस्टाइल के आदि हो चुके हैं उसकी नींव भी इसी पीढ़ी की सोच ने रखी है। सोशल मीडिया हो या क्रिएटर इकोनॉमिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से लेकर आज के नए AI टूल्स तक, इस पीढ़ी ने कंटेंट क्रिएशन को एक पूरा बिजनेस बना दिया है। आज का यह 18 से 20 साल तक का युवा घर बैठे पूरी दुनिया के लिए वीडियो, पॉडकास्ट और एप्स बना रहा है। अनोखी स्टैंडअप ओला, जोमेटो, बिल्किट, क्रेड जैसे हजारों स्टार्टअप आज के युवाओं के आइडियाज हैं जिन्होंने हमारे जीने, खाने और सफर करने के तरीके को बेहद आसान बना दिया है। भारत के छोटे छोटे शहरों और गांव के युवाओं ने कमाल के आविष्कार किए।

ये हैं, कचरे से कंचन, प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बनाना, पराली से ईंटें तैयार करना और सोलर पैनल से चलने वाली खेती मशीनें बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो नई पीढ़ी ने एक ऐसा मंच बनाया है जहां हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने और अपना हुनर दिखाने की आज़ादी है। उन्होंने तकनीकी टेक्नोलॉजी और अपनी ताकत भी बनाया है और पुरानी सोच की दीवारों को गिराकर एक आधुनिक खुले विचारों वाला समाज तैयार किया है। अब आप अपनी सोच को नया रखिए, सकारात्मक रखिए और अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे पहला सुख है एक स्वस्थ शरीर। और इस स्वस्थ शरीर की शुरुआत कहाँ से होती है? जिम जाने से नहीं, महंगे सप्लीमेंट से नहीं, तो बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद जरूरी आदत से, और वो है व्यक्तिगत स्वच्छता। यानी आइए सुनते हैं हमारी मेहमान कनिष्का अग्रवाल की वार्ता, और वार्ता का विषय है व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व।
1: स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छता निहित है। हमने कई बार सुना है स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हमेशा हमें अपने आप से ही करनी चाहिए। स्वच्छता कई तरीके की होती है, जैसे मन की, शरीर की, घर आंगन की, पानी की, पर्यावरण आदि की। साफ सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है, जिसके लिए हम हाइजीन शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्वस्थ रहने का तरीका। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। इसकी अनदेखी से जहां एक ओर हमें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर हम किसी भी संक्रमण की चपेट में भी आ सकते हैं। कुछ बहुत ही साधारण सी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम और आप अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ पर्सनल हाइजीन हैबिट्स में थोड़ा सा बदलाव या थोड़ा सा उसके प्रति सजग रहकर हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। इसी के संग हमें सिर से लेकर पांव तक की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपने बालों का, हेयर हाइजीन। सिर से पांव तक स्टाइलिश दिखने के लिए हमें पूरे शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें लोग अक्सर बालों को ही अनदेखा कर देते हैं। बालों को हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से शैम्पू से धोना चाहिए। साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साबुन में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट बालों को नुकसान पहुंचाता है। बालों में नियमित रूप से तेल लगाएं। नारियल तेल के पोषक तत्वों के कारण इसे बालों के लिए बेस्ट हेयर ऑयल माना गया है। ज्यादा हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके बालों की जड़ों के फॉलिकल्स को डैमेज कर देता है। इसी के साथ हमें अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। स्किन हाइजीन के लिए, क्योंकि हम पूरे दिन की भागदौड़ में न जाने कितनी जम्स के संपर्क में आते हैं और वो जम्स हमारे शरीर पर आ जाते हैं। गर्मी में पसीना बहुत आता है, पसीना तो सूख जाता है मगर वो बहुत सारे जम हमारे ऊपर छोड़ जाता है, जिसे तुरंत साफ करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एलर्जी या इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए त्वचा को साफ सुथरा रखने के लिए पानी और साबुन से बेहतर कुछ भी नहीं। रोजाना कम से कम एक या दो बार जरूर नहाएं। नहाने के लिए एंटीबैक्टीरियल साबुन का ही इस्तेमाल करें। अपने टॉवल, मेकअप, रेजर आदि को किसी से भी शेयर ना करें। किसी अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर प्रयोग करें, जो आपकी त्वचा को नर्म व मुलायम बनाए रखे। और अब हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के लिए। यह एक अहम हिस्सा है। यदि ओरल हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो सांसों की बदबू, दांतों की बीमारी हो सकती है। हमारी पहचान हमारे शब्दों से होती है। अगर सांसों में ही बदबू आने लगेगी तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। रोजाना दो बार ब्रश जरूर करें। जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला या गार्गल्स जरूर करें, जिससे मुंह में खाना अटका ना रहे और जो अटक गया हो वो पानी की सहायता से निकल जाए। ब्रश को कभी भी गीला ना रखें, वरना उसमें जर्म्स पनप जाएंगे और दोबारा ब्रश करने पर वो हमारे मुंह में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे हैंड हाइजीन। कोरोना ने हम सबको हाथों की साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। दिन भर हमारे हाथ अनगिनत चीजों को छूते हैं और ना जाने कौन सी चीज हमें कितने बैक्टीरिया दे जाती है। हाथों के जरिए बहुत सारे जर्म्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए बार बार अपने हाथों को अच्छे साबुन से धोते रहें, किसी अच्छे हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और उसे अपने पास रखें। इसके अलावा एक बहुत पूर्ण हाइजीन का सब्जेक्ट है पीरियड्स हाइजीन, मींस महिलाओं से जुड़ा हुआ ये विषय बहुत ही जरूरी है। महिलाओं और किशोरियों के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। इन मुहिमों के द्वारा उन समस्त महिलाओं को सही जानकारी उपलब्ध कराना है जो उनसे अछूती रह गई है। मासिक धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने से आज भी लोग बचते हैं और शर्म और लिहाज की दृष्टि से इसे गलत माना जाता रहा है, पर असल में यह उतना ही स्वाभाविक है जितना दांत निकलना, चलना सीखना इत्यादि। एक 10 से 15 वर्ष की लड़की के हार्मोन्स के बदलाव से मासिक धर्म की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय में लड़की की सबसे पहली सहेली उसकी माँ होती है, क्योंकि एक माँ ही अपनी बच्ची को इस प्रक्रिया का सही महत्व समझा सकती है। ऐसा ना हो पाने की दशा में बच्चों के मन में कई सवाल घर कर जाते हैं और उनका सही जवाब ना मिलने पर अनेकों भ्रम पैदा होने लगते हैं। इसलिए हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को पूरी जानकारी दे और मासिक धर्म के दौरान भी एक सहज जीवन जिए। मासिक धर्म के बारे में बात करने से झिझके नहीं और ना ही अपने बच्चों को इस विषय पर बात करने से रोके। यह प्रक्रिया ही महिलाओं को पूर्ण रूप से महिला बनाती है। इससे जुड़ी कुछ आवश्यक बातों पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हर महीने महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कई तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिसमें अक्सर साफ सफाई कहीं पीछे रह जाती है, जबकि ऐसे में यह ज्यादा जरूरी होती है। पीरियड्स के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह साफ रखें, किसी भी सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल ज्यादा लंबे समय के लिए ना करें। हर 6 घंटे में नैपकिन को बदल लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। इन दिनों में अधिक रक्तस्राव के कारण शरीर में कमजोरी पैदा ना हो, इसलिए अपने खान पान का भी खास ख्याल रखना चाहिए। हल्के मसाले और कम घी तेल वाले खाने को इन दिनों में चुनना चाहिए और ठंडी चीजों का परहेज रखना चाहिए। इन दिनों में नहाना, खुद को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कोई भी आलस ना करें। इन

0: खास दिनों में अधिकतर महिलाएं गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो अपने आप में ही बहुत सारे जर्म से भरा होता है। भारत में मात्र 12% महिलाएं ही सैनिटरी पैड्स का प्रयोग करती हैं। शेष महिलाओं का कहना है कि वो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखती हैं और कुछ का कहना है कि वो इसे खरीदने में असमर्थ है। परंतु आज महिलाओं के लिए सशक्तिकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सरकार भी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। तो इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण से बच सके। ऐसा ना होने की दशा में आपको बहुत गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर, यूरिनरी इन्फेक्शन, मां ना बन पाने की बीमारी भी इसी में शामिल होती है। इसके अलावा कुछ सोशल एडिकेट्स होते हैं, सोशल हाइजीन एडिकेट्स होते हैं, जिन पर हम ध्यान देना चाहिए। हमें खुद को साफ सुथरा रखने के साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखना बेहद जरूरी होता है। जिस बर्तन में खाना खाते हैं, जिस चेयर पर बैठते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं और जिस घर में रहते हैं, उनकी साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी अपने शरीर की। घर हो या ऑफिस, अपने चारों तरफ की सफाई का ख्याल रखें। चारों तरफ फैला सामान आपके हेल्थ पर गलत प्रभाव डालने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी पैदा करता है। यदि आप में रोड पर, ट्रेन में या बस में आदि में कचरा फेंकने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दें, क्योंकि यह अपने साथ साथ दूसरों की सेहत से भी खिलवाड़ करना है। चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स या अन्य पैकेट्स भी खाकर आप इन्हें कहीं भी डाल देते हैं तो इस आदत को जरूर बदलें। मोबाइल पर बात करने के बाद किसी को भी मोबाइल देने से पहले उसे पोंछ दे। मोबाइल हमारे चेहरे पर लगे तेल, पसीना या थूक भी उस पर लग जाता है, जो अनजाने में ही सामने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। अगली बार ऐसा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान हमें कौन कौन सी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए? अपनी पानी की बोतल को कैरी करना, जिससे हमें जगह जगह का पानी ना पीना पड़े। किसी भी नल के पानी से ब्रश ना करें। ट्रैवलिंग के दौरान हैंड सैनिटाइजर, पेपर सोप, टिश्यू पेपर हमेशा कैरी करें। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनका ख्याल रखे हम खुद को और अपने आसपास के माहौल को सेहतमंद रख सकते हैं। धन्यवाद
1: सखियो। अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान कनिका अग्रवाल की वार्ता। वार्ता का विषय था व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व। सखियो, आज तो आते ही मुझे वो भीनी भीनी खट्टी चटपटी खुशबू आ रही थी। अरे भाई, खुशबू आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी? जून का महीना शुरू हो गया है और अब तो बाजारों में कच्चे कच्चे व हरे हरे आम जो आ चुके हैं, और अब जब धूप भी अपनी चरम सीमा पर हो तो समझो घरों में एक ही त्यौहार शुरू होने वाला है। अरे भाई, आम के अचार का त्यौहार में माँ के हाथ के आम का अचार, बिना दाल चावल व पराठे सब अधूरे हैं। वैसे भी इस वक्त मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। और आप ये सोच रहे होंगे कि काश कोई परफेक्ट रेसिपी मिल जाती तो बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हमारी रसोई स्पेशल में हम लेकर आए हैं दादी नानी के स्टाइल वाले व पारंपरिक आम के अचार की रेसिपी। तो अब देर न करते हुए आप सभी डायरी और पेन उठा लीजिए और सबसे पहले नोट कीजिए सामग्री। 2 किलो कच्चे आम, अच्छे सख्त व खट्टे वाले। सरसों का तेल लगभग 1/2 लीटर। सौंफ 4 बड़े चम्मच। मेथी दाना 2 बड़े चम्मच। पीली सरसों या राई 4 बड़े चम्मच। कलौंजी 1 बड़ा चम्मच। हल्दी 2 बड़े चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 3 बड़े चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हींग 1 छोटा चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक अचार को खराब होने से बचाता है। मसाले तो तैयार हैं, अब आते हैं असली जादू का। सबसे पहला और सबसे जरूरी, आम को अच्छे से धोकर

सुखाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रहे, आम में नमी या पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। कटे हुए आमों में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक मिलाकर एक दिन के लिए किसी सूती कपड़े पर डालकर धूप में सुखा लें। इससे आम का एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा। अब मसालों की मेथी, सौंफ और पीली सरसों को कढ़ाई में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। बस इतनी खुशबू आए कि पड़ोसी भी घर चले आए। फिर इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लें। ध्यान रहे, बारीक पाउडर नहीं, दरदरा ही बनाना है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल को धुआं निकलने तक गर्म करें और फिर गैस बंद कर उसे थोड़ा गुनगुना ही रहने दें। फिर उसमें हींग, कलौंजी और हमारे पिसे हुए मसाले साथ ही डालें। बची हुई हल्दी, लाल मिर्च और नमक मसालेदार तेल तैयार है। अब इस तेल में सूखे हुए आम के टुकड़े डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि हर टुकड़े पर मसाले की बढ़िया कोटिंग चढ़ जाए। खुशबू तो अभी से ही कमाल की आ रही है। अब इसे कांच के या चीनी मिट्टी के सूखे मर्तबान जार में भर लें और हाँ, ऊपर से थोड़ा और तेल गर्म करके जरूर डालें ताकि अचार डूबा रहे। और बस 4 से 5 दिन इसे मखमली या सूती कपड़े से मुंह बांधकर धूप में रख दीजिए। फिर जैसे जैसे आम गलेंगे, आपका आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो सखियों, हम लोगों ने मौज मस्ती से अचार बनाना तो सीख लिया और अब थोड़ा अपने मन को आराम करने के लिए भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम अभी आपने सुना। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी रजनी। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 2 बजने को है। कुछ पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: Good afternoon. This is

0: to supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation.
1: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
0: In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the northeast region. Prime Minister Narendra Modi today shared an article authored by Union Minister Chirag Paswan highlighting the unlocking of new opportunities in Ladakh. In a social media post, the Prime Minister noted that a berry native to Ladakh is scripting a story of innovation and opportunity. He observed that the article presents a compelling reflection on how entrepreneurship and value addition are opening new avenues of prosperity in Ladakh. The RBI, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Kang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
4: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
5: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
2: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर

क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों

0: ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगमाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। अब पेश है

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे 80 के दशक के सदाबहार नगमे। याद कीजिए, 80 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा दौर जिसने हमें अनगिनत मधुर और यादगार गीत दिए। आज हम उन्हीं सदाबहार नगमों के साथ पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करेंगे। दोस्तों, 80 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐसा दौर था जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस भी किए जाते थे। उस दौर के गानों में प्यार था, अपनापन था, सादगी थी और सबसे महत्वपूर्ण, दिल को छू लेने वाली मिठास भी। यही वजह है कि आज भी वो गीत हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे उन सुनहरी यादों के बीच, जहां सुरों की महक है, भावनाओं की गहराई है और संगीत का ऐसा जादू है जो समय के साथ और भी खूबसूरत होता जाता है।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में एक दूजे के लिए फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं राम लखन से ये गीत, आवाज़ें मनहर और अनुराधा पौडवाल की हैं।

अभी आपने मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में यह गीत सुना। फिल्म का नाम था वारिस। आइए अब सुनते हैं यशोदास को। फिल्म का नाम है सदमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर, और आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं 80 के दशक के सदाबहार गीत। कार्यक्रम में आज का अंतिम गीत हम सुनवा रहे हैं आशा भोसले और भूपेंद्र की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है एतबार।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को हैं। अभी तक आप प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे थे। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती मुंबई के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देखकर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: महक है आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है।
1: क्या
2: जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
2: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: लौकी है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पतिदेव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
2: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
2: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों
1: के। सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
2: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा,
1: ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं, और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है? और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये हमारे
1: जी
0: रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं, और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सहायक
1: बहुत मदद
0: होते
1: होता
0: हैं।
1: है।
0: बिल्कुल
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
1: जी
0: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वह कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना? और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्ते में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता।
1: जी
0: रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो
1: जी
0: ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर
0: कर लिया
1: लिया
0: जाए,
1: जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है, और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं।

0: और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं
0: जी
1: कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक ओर अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूं कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें।
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना।
0: जी
1: ये तो है ही कि टिट फॉर टैट होता ही। अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर, वही तो
0: हाँ
1: उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए
0: जी
1: हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी

0: चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दुल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घर चोला साड़ी की।
0: क्या बात है, गठचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो गठचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। गठचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक,
0: पोशाक।
1: और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें
0: बिल्कुल
1: हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: महिला ही नहीं पहनकर सच की संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: साइड में रख लेते हैं वो भी।
0: जी,
1: हाँ
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया ना चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है, और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है, और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घट चोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और घट चोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

तो कहा है प्यार का फसाना बना ले।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद, हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात, और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात, और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक
1: हाँ
0: सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है
1: तो
0: तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी चाहिए,
0: पढ़िए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखती है कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुक धुक की थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: निकाल
0: निकाल
1: दिए। कितनी
0: दिए।
1: अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर
0: जी
1: बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा
1: हाँ
0: देंगे, गाने
1: हाँ
0: सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना,
0: जी।
1: घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना
0: एक
1: चाहिए।
0: और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांस

0: पेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन लें।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर
0: हाँ,
1: जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए
1: और
0: उन्हें साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: दोपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ,
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल। आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे
1: जी
0: माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है, इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल। और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें ये तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो इसलिए
1: हमारे
0: होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी
0: उन
1: जाए
0: हाँ
1: किसी भी तरह से।
0: ताकि उनका
1: लेकिन
0: पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते
0: क्या बात है।
1: हैं।
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ, तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट

0: पेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदिया और
0: विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
0: क्या?

0: गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा. ओके, इट्स नॉर्मल. बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं, बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके, आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं. बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो. यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है. उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए. अगर इन्वॉल्व हुए तो यस, द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से. इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं. क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं. स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें. टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है.
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है. अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है. ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस, द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं. मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्त्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है. शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में. सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं. हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं. So it is possible, everything is possible, but timely और appropriate support system लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल.
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है. ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी. ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड. तो अगेन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल.
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
1: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ डोर बेल। तो इन्वायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो येस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
0: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है,
1: एग्जैक्टली
0: अगर छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: पल पल दिल के पास,
0: तुम रहती हो।
1: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
0: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं।
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके
0: आपके
1: लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके।

0: वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और
1: बिल्कुल
0: कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें, और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज़ और कंसर्नस नहीं आते हैं. पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्नस आएंगे ही आएंगे. इट कैन भी उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से,

0: वर्क, यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच. ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता
1: फील
0: है. तो
1: होता
0: बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल,
1: है.
0: बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता-पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है. हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं, या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा. पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं. उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा. जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं, एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं, या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं। कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है। और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज

0: देखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा.
1: अभ्यास होगा.
0: हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं. तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड. ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम उनको चेंज वेंज करके, एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी, वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल, यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जीना, ये जी सुनते हैं ये गाना. ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊं? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और को बीएड का कोर्स करना है, एमएड का कोर्स करना है।

0: नया DSL का कोर्स करना है तो उसके लिए फ्री है एडुकेशन, ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के
1: जी
0: लिए फ्री है. अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री. तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एडुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस. पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस. और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज़ कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना जरूरी है. थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और PhD करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा. मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
1: जी संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं, पर लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से आई हैव वर्टिको इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन बच्चों को बात भाषा में प्रॉब्लम, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी सिर्फ करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच द अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो, ओके, वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है, आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, I just like him or like his voice a lot. So any song of Jagjit Singh is okay with me.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है.
0: All good.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम। दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything, so thanks to them, thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से।

वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज चुके हैं। एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा अब मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज शाम और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सरस्वती सिंह। दोस्तों, आज बात हो रही है उनकी जो बिना कुछ कहे हजारों बातें कह जाती हैं। जी हाँ, आंखें, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत आंखें जैसे सुबह की पहली किरण, जिनमें छुपा हो एक नया सा जीवन। कभी खामोश होकर भी सब कह जाती हैं, दिल के हर एहसास को बयां कर जाती हैं। उनकी गहराई में जैसे एक समंदर बसता है, हर नज़र में एक नया अफसाना सजता है। कभी खुशी की चमक, कभी गम की नमी, हर रंग को अपनी पलकों में समेटी हुई जब मुस्कुराती हैं तो बहार सी आ जाती है, हर तरफ रोशनी और खुशबू छा जाती है। जब झुक जाती है तो हया का नूर बिखर जाता है और देखने वाला उनमें कहीं खो सा जाता है। ना जाने कितने राज संभाले रखती हैं, दिल की हर धड़कन को संभाले रखती हैं। खूबसूरत आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत की सबसे प्यारी जुबां होती हैं।

दोस्तों कहते हैं ना, चेहरा दिल का आईना होता है, लेकिन आँखें उस आईने की रोशनी। कभी मुस्कुराती हैं, कभी शर्माती हैं, कभी खामोशी में अपनी कहानी सुना जाती हैं। कुछ आँखें समंदर की बूंद की तरह होती हैं, गहरी होती हैं, जिनमें देखकर वक्त थम सा जाता है। कुछ आँखें बारिश की बूंदों जैसी होती हैं, जो दिल को सुकून दे जाती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, आँखों की असली खूबसूरती उनके रंग में नहीं, बल्कि उन जज्बातों में होती है जो वो छुपा कर रखती हैं। प्यार, उम्मीद, दोस्ती और सच्चाई। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत और खो जाते हैं उन यादों में जो आँखों से दिल तक का सफ़र तय करती हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट सरस्वती सिंह और आप सुन रहे कार्यक्रम आज शाम। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि खूबसूरत आँखें वही होती हैं जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आएं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 होने को हैं। अब पेश है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना पसंदीदा कार्यक्रम भी ज़रूर सुन रहे होंगे। आज आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आफताब खान,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: आइए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ। और हमारा आज का सवाल है, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा।
1: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा।
0: दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब। हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार।
1: आफताब, कभी कभी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके हौसलों और सपनों से होती है। चुनौतियां चाहे कैसी भी हों, सही जानकारी, समय पर सहायता और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा खुशी, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 3 जून को विश्व क्लब फुट दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को क्लब फुट के बारे में जागरूक करना और ये बताना कि समय पर उपचार से बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है।
1: लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता कि क्लब फुट आखिर है क्या।
0: हाँ खुशी, मैं बताता हूँ। क्लब फुट एक जन्मजात स्थिति है जिसमें बच्चे का पैर असामान्य स्थिति से मुड़े हुए होते हैं। ये जन्म के समय ही दिखाई देता है। हालांकि ये स्थिति देखने में गंभीर लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका उपचार संभव है।
1: मुझे लगता है कि इस विषय में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। कई बार जानकारी की कमी के कारण परिवार घबरा जाते हैं या इलाज में देरी कर सकते हैं।
0: सही कहा खुशी, यही वजह है कि विश्व क्लब फुट डे केवल एक स्वास्थ्य दिवस नहीं बल्कि जागरूकता और उम्मीद का संदेश भी है। ये दिन हमें बताता है कि किसी भी बच्चे को केवल एक शारीरिक चुनौती के कारण अवसरों से वंचित नहीं होना चाहिए।
1: और समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग और प्रोत्साहन दे।
0: बिल्कुल, जब परिवार, समाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलकर काम करते हैं तो चुनौतियां छोटी पड़ जाती हैं और संभावनाएं बड़ी हो जाती हैं।
1: तो आइए विश्व क्लब फुट दिवस पर हम ये संकल्प लें कि स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाएंगे, सकारात्मक सोच अपनाएंगे और हर बच्चे के सपनों को सम्मान देंगे।
0: क्योंकि हर कदम महत्वपूर्ण होता है और हर बच्चे को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है।
1: विश्व क्लब फुट दिवस का संदेश यही है, जागरूकता, सहयोग और उम्मीद के साथ हर कदम को नई दिशा दें।
0: दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस संदर्भ में 8 जून 2026 को वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है जो सुबह 5:30 बजे होगा और आकाशवाणी रामपुर से अंबेडकर पार्क तक। आपको बता दें कि इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।
1: आइए दोस्तों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार आपके लिए है बहुत कुछ खास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
4: दोस्तों कहते हैं जीवन की तरह साइकिल भी हमें एक खूबसूरत सीख देती है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी है।
5: आज 3 जून को हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। ये दिन हमें साइकिल की महत्व और उसके अनगिनत फायदों की याद दिलाता है। साइकिल केवल एक साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सादगी का प्रतीक है।
4: एक समय था जब साइकिल लगभग हर घर की पहचान हुआ करती थी। स्कूल जाना हो, बाजार जाना हो या दोस्तों से मिलने जाना हो, साइकिल हर सफर की साथी थी। समय बदला, आधुनिक वाहन आए और साइकिल का उपयोग कुछ कम हो गया। लेकिन आज जब प्रदूषण, ट्रैफिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब साइकिल फिर से लोगों की पसंद बन रही है।
5: दोस्तों, साइकिल चलाना हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से तनाव भी कम होता है और मन प्रसन्न रहता है।
4: इतना ही नहीं दोस्तों, साइकिल पर्यावरण की भी सच्चे मित्र है। ये ना तो ईंधन की खपत करती है और ना ही प्रदूषण फैलाती है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान बनकर सामने आती है।
5: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मान्यता दी थी। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के उपयोग के लिए प्रेरित करना और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना होता है।
4: दोस्तों, साइकिल हमें आत्मनिर्भरता का भी संदेश देती है। ये सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। यदि हम सप्ताह में कुछ दिन भी साइकिल का उपयोग करें तो न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।
5: तो आइए इस विश्व साइकिल दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें, जहां संभव हो साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
4: दोस्तों, साइकिल चलाना केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य की और एक मजबूत कदम भी है। और जब बात स्वास्थ्य, फिटनेस और अनुशासन की हो तो खेल जगत का उल्लेख स्वाभाविक है। खेल हमें सिखाते हैं कि निरंतर अभ्यास और सक्रिय जीवन शैली सफलता की कुंजी है। इसी क्रम में आइए जानते हैं भारतीय क्रिकेट के प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज सुरेंद्र खन्ना के बारे में, जिनकी आज जयंती मनाई जाती है।
5: दोस्तों, सुरेंद्र खन्ना का जन्म 3 जून 1956 को हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली विकेटकीपर और बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया और अपने शानदार खेल के दम पर भारतीय टीम में भी जगह बनाई।
4: क्रिकेट के मैदान पर विकेटकीपर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसे हर गेंद पर सक्रिय रहना पड़ता है और टीम की रणनीति में भी उसकी अहम भूमिका होती है। सुरेंद्र खन्ना ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनकी तेज नजर, फुर्ती और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई।
5: उन्होंने भारत के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले। हालांकि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो भी अवसर मिले उनमें अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी मेहनत और लगन आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
4: दोस्तों, खेल हमें केवल जीतना ही नहीं सिखाते बल्कि अनुशासन, धैर्य और टीम भावना का महत्व भी बताते हैं। सुरेंद्र खन्ना का जीवन भी यही संदेश देता है कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास जरूरी है।
5: दोस्तों, आज जब युवा क्रिकेटर बड़े बड़े सपने लेकर मैदान में उतरते हैं, तब उन्हें उन खिलाड़ियों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की मजबूत नींव तैयार की। सुरेंद्र खन्ना उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं। तो आइए उनकी जयंती पर हम उनके योगदान को नमन करें और खेल भावना को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
6: साथियों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है। जब बैट्समैन क्रीज पर खड़ा होता है और पूरे स्टेडियम उसकी तरफ देखता है, तब उसके दिल में भी वही उम्मीद गूंजती है जो फिल्म इकबाल के गीत आशाएं में सुनाई देती है।

0: दोस्तों, कुछ खास है आज में बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के पहले सब सेगमेंट गुड़ की ओर। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के पहले सब सेगमेंट गुण की ओर, जिसमें हम आपको आज बताएंगे निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी।
3: दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए लोग अक्सर भाग्य, प्रतिभा और अवसरों की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है, और वो है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी।
0: दोस्तों, कई बार हम बड़े उत्साह के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं, नए सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का संकल्प भी लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा उत्साह कम होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। यहीं पर निरंतरता की असली परीक्षा शुरू होती है।
3: दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन बहुत बड़ा काम किया जाए, इसका मतलब है कि हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेल हो या कोई कला। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणामों का आधार बनते हैं।
0: दोस्तों, सोचिए कि एक बूंद पानी भले ही कमजोर लगे, लेकिन जब वह लगातार एक ही स्थान पर गिरती है तो कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। ये हमें सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज के प्रयास।

0: दोस्तों कंसिस्टेंसी केवल सफलता ही नहीं देती बल्कि आत्मविश्वास भी देती है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगता है। यही भरोसा हमें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देता है।
1: तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं या कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, गति धीमी हो सकती है लेकिन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो लगातार प्रयास करता रहता है।
0: आइए दोस्तों सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के दूसरे सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के दूसरे सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे सोलर पंप टेक्नीशियन के बारे में।
1: दोस्तों, आज के दौर में जब पूरी दुनिया स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, तब भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी आज केवल बिजली का विकल्प नहीं रह गई, बल्कि किसानों, गांवों और देश के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। इसी क्षेत्र से जुड़ा एक जरूरी और उभरता हुआ पेशा है सोलर पंप टेक्नीशियन।
0: दोस्तों, सोलर पंप टेक्नीशियन वे व्यक्ति होता है जो सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की स्थापना, संचालन, निरीक्षण और मरम्मत का कार्य करता है। खेतों में सिंचाई के लिए लगाई जाने वाली सोलर पंपों को सुचारू रूप से चलाना और उनकी तकनीक

0: की समस्याओं का समाधान करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है।
1: दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। खेती के लिए पानी की आवश्यकता सबसे जरूरी होती है। पहले किसान सिंचाई के लिए डीजल पंप या बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग करते थे, लेकिन डीजल की बढ़ती कीमतें और बिजली की सीमित उपलब्धता किसानों के लिए चुनौती बन जाती थी। ऐसे में सोलर पंप एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आए।
0: दोस्तों, सोलर पंप सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनमें लगे सोलर पैनल सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और उसी ऊर्जा से पंप चलता है। इससे किसानों को ना तो डीजल खरीदना पड़ता है और ना ही बिजली कटौती की चिंता रहती है। यही कारण है कि देश भर में सोलर पंपों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोस्तों, सोलर पंपों की बढ़ती मांग के साथ साथ प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। एक कुशल सोलर पंप टेक्नीशियन को सोलर पैनलों, मोटर, वायरिंग, कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा उपायों की अच्छी जानकारी होती है। वे न केवल नई प्रणाली स्थापित करता है, बल्कि समय समय पर उसकी जांच और मरम्मत भी करता है।
0: ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के शानदार अवसर लाता है। आज कई तकनीकी संस्थान और कौशल विकास केंद्र सोलर पंप टेक्नीशियन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से युवा नई तकनीकों को सीखकर स्वरोजगार या नौकरी दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
1: सोलर पंप टेक्नीशियन का काम केवल तकनीकी ही नहीं, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। और सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है जो प्रदूषण नहीं फैलाती। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति एक तरह से हरित और स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान देता है।
0: तो आइए हम नई तकनीकों को अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प लें, क्योंकि जब तकनीक, पर्यावरण और विकास साथ चलते हैं, तभी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के आखिरी सब सेगमेंट द वेलनेस जर्नी की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे अनिद्रा यानी इंसोम्निया के बारे में।
1: दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी नींद प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। दिन भर की थकान के बाद जब हम सुकून भरी नींद लेते हैं तो शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब रात भर करवटें बदलने के बाद भी नींद ना आए? इस समस्या को कहा जाता है अनिद्रा या इंसोम्निया।
0: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा एक आम समस्या बढ़ती जा रही है। कई लोग रात को बिस्तर पर तो चले जाते हैं, लेकिन घंटों तक नींद का इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोगों की नींद बार बार खो जाती है तो कुछ सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं और फिर दोबारा सो नहीं पाते।
1: अनिद्रा केवल नींद की कमी नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। पर्याप्त नींद न लेने पर व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और उसका मूड भी प्रभावित हो सकता है।
0: लेकिन सवाल ये है कि आखिर अनिद्रा होती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। अत्यधिक तनाव, पढ़ाई या काम का दबाव, मोबाइल और लैपटॉप का देर रात तक उपयोग, अनियमित दिनचर्या और कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी इसका कारण बन सकती है। आजकल हम सोने से पहले भी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, जिससे हमारे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता और नींद प्रभावित होती है।
1: दोस्तों, अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम अपनी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि रोज एक निश्चित समय पर सोना और जागना, सोने से पहले मोबाइल और अन्य स्क्रीन से दूरी बनाना, शाम के समय अत्यधिक चाय और कॉफी से बचना और दिन में थोड़ा शारीरिक गतिविधि करना।
0: दोस्तों, यदि कभी कभी नींद ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे और आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे तो किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होता है।
1: अंत में दोस्तों, कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जागना अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सोना भी उतना ही जरूरी है। जो रात को सुकून से सोता है, वही दिन को पूरी ऊर्जा और मुस्कान के साथ जीता है।
0: और ये था दोस्तों हमारा सेगमेंट व्यक्तित्व विकास। इसी के साथ आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान की ओर। जब भी भारत के गौरवशाली शैक्षणिक संस्थानों की बात होती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ज्ञान, संस्कृति और शैक्षणिक उत्कृष्टता की पहचान बनाइए विश्वविद्यालय देश के सबसे पुराने और ऊंचा सम्मान रखने वाला विश्व

0: विश्वविद्यालयों में से एक है।
1: साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। अपनी समृद्धि शैक्षिक परंपरा और उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के कारण इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये विश्वविद्यालय वर्षों से लाखों विद्यार्थियों के सपने को नई दिशा देता आ रहा है।
0: दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षा के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ BA, BSc, BCom, LLB और BFA जैसे स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर MA, MSc, MCom, LLM, MBA सहित उनके पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।
1: इसके अलावा शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए PhD और अन्य शोध कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। विज्ञान, कला, वाणिज्य, विधि, प्रबंधन, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में यहाँ अध्ययन और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं होता, बल्कि ये व्यक्तित्व निर्माण का भी स्थान होता है। यहाँ छात्रों को वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। यही अनुभव उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है।
1: आज के समय में भी ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी यहाँ आते हैं और अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं।
0: दोस्तों, शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, और जब शिक्षा एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से मिले जिसकी विरासत 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हो, तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है शैक्षिक संस्थान

0: दोस्तों, वक्त हो गया है स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने का। हमने आपसे सवाल पूछा था, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, और इसका सही जवाब है मेघालय। और सही जवाब देने वाले हैं
1: हमारे श्रोता मोहम्मद रफीक पनवार, जॉन डे कैस्ट्रो, अजीत कसाना, सुदर्शन शाह, धर्मेंद्र छिपा, नंद कुमार ठाकुर, पुंजजी नवकर, चौधरी राजवीर सिंह, राजेश, नाहिद खान, कैलाश फूलमली, राष्ट्रपाल गजबिये, विनोद मुन्नत, सोहन जोशी, रामकुमार रेवर, विजय सिंह महोबिया, गंगा सिंह रावत, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, धीरज भाई राबरी, विजय सुरालकर, बीएल धाकर, बीपी गौतम, शाहजी बोटके, गुरमीत सिंह मीता, दीपेश वर्मा, उत्तम कुमार भागत, नाज रेडियो, संजय ढिंगिया, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, बी कमल, इरशाद अहमद, फागुराम यादव, हिरामणि वर्मा, नाजमुल हुडा, राजू मिगलानी, महाराज कीर्तन, सुरेश जायसवाल, सुनील पाठक, मोहम्मद सईद अब्बासी, हनमत शिंदे, अरविंद कुमार, दीगदर्शन गौर, धर्मवीर कश्यप, आकाश रस्तोगी, सदाशिव धोरत, राधेश्याम पांडे, मिसबा शमशी, मोहम्मद आमिर अंसारी, दोमेंद्र नेतम दोमू, विथल सुरोशे, जाकिर मंसूरी, गजानन येले, मोहम्मद जाहिद अली, हाजी गफ्फार खान, अभिजीत गवहंकर, देव शंकर तामूरिया, रवि रस्तोगी, मोहम्मद यसीन अंजन, शकील अहमद इदरसी, लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद खलील कुरेशी, संजय कुमार साहू, राजवीर सिंह यादव, सुरेश गगनेजा, भुवन प्रकाश, प्रवीण चौहान, नितेश कुमार देवनगन, शकील अहमद इदरसी, भागवत चौबे लाडला जी, नारायण प्रधन, दुर्गरम साहू, रियासत हुसैन सिद्दीकी, शहनूर अंसारी।
0: दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय खेल भारत का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है, जहां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर देती है, बल्कि खेल संस्कृति को भी मजबूत बनाती है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 में देश के कोने कोने से हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। एथलीट हॉकी, तैराकी, कबड्डी, बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग और अन्य खेलों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।
1: और दोस्तों, इसी के साथ अब हमें अनुमति दीजिए जाने की। हमारा आकाशवाणी का पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युवाणी अनुभाग द्वारा।

0: द्वारा की निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901।
1: दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94100878776। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 94100878776। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। इसी के साथ अपने रेडियो साथी आफ्ताब खान
0: और अपनी रेडियो दोस्त खुशी
1: को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ आवश्यक सूचनाएं।

प्रभारी निरीक्षक थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि निर्मला देवी पत्नी जीवनलाल निवासी ग्राम सबलपुर मोहल्ला रामपुरा फकीरे थाना माधोटांडा पीलीभीत विगत 15 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष, रंग सांवला और कद 5 फीट है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत मोबाइल नंबर 9719560036। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9719560036। सूचना समाप्त हुई।

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थाना बलसंडा जिला पीलीभीत हमें सूचित करते हैं कि विनीता देवी पत्नी हरपाल सिंह निवासी ग्राम खुरी घास थाना बलसंडा पीलीभीत विगत 21 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा, कद 4.5 फीट और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बलसंडा जिला पीलीभीत मोबाइल नंबर 8604091342। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 8604091342। सूचना समाप्त हुई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।

इसी क्रम में कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में एक और खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा।

0: King, relax.
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था हर दिल जो प्यार करेगा। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 होने को हैं। कृषि श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन मारे सभी भैया बहनन को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया हरदेव की
0: राम राम, राम। और सुनाओ हरदेव भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है मीना बहन, और उम्मीद करता है हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो भी खुशहाल होंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और भैया आज देखो अपने किसान साथियों के लिए क्या लेके आयो भैया?
1: मीना बहन, खेती बाड़ी के हमारे इस कार्यक्रम में खेती बाड़ी के साथ साथ हमें जो है और भी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: हाँ भैया,
1: क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं गांव में रहतेंगे, खेती बाड़ी करते हैं, और उनके जो बच्चा हैं वो कस्बा में और जिला में जाके शहर स्तर पर जाकर पढ़तेंगे।
0: हाँ भैया पढ़ते,
1: तो उनके रोजगार की भी देखे जानकारी देना बहुत जरूरी है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: है ना। खेती बाड़ी के साथ, खेती बाड़ी तो हमारो पुरानो काम है ही, लेकिन हमारा जो हमारी जो नई पीढ़ी है तो हम तो जा सोच रहे हैं कि बेहू कोई ना कोई रोजगार सा ला गए।
0: हाँ भैया, अपनी खेती बाड़ियों करते रहें और बाकी साथ साथ अपनों कोई रोजगार भी करते रहें भैया। तो भैया हमारे जैसे किसान साथियों को आज के समय में खेती के साथ साथ गांव के नौजवानों के लिए रोजगार भी एक बड़ा विषय है। कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं भैया, लेकिन सही जानकारी ना मिलने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हो मीना बहन। हमारे जो किसान भाई बहन हैं वे गांव में रहते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार की जो है सही जानकारी ना मिल पाती है कि रोजगार उन्हें कैसे मिलना चाहिए।
0: हाँ भैया,
1: तो हमें इस बात को ध्यान रखनी है। हमारी सरकार जो है रोजगार के ताईं कई योजनाएं चला रही है, जैसे बाकी अब मुख्य योजना चल रही है उत्तर प्रदेश रोजगार संगम योजना।
0: हाँ भैया,
1: इस योजना को जो काम है मीना बहन वह हमारी युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।
0: हाँ भैया, और हरदेव भैया गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि लड़के लड़कियां पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि नौकरी कहाँ ढूंढे और किससे संपर्क करें।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मीना बहन। जब हम है लगभग 20-22 साल के हैं, तो हम खुद ढूंढते हैं कि भैया कहाँ नौकरी मिलेगी।
0: हाँ,
1: कई लोग उनसे पूछते हैं, उस समय ऐसी व्यवस्था ना ही। आज हाँ। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था चला रही है कि उनने रोजगार पोर्टल जो लॉन्च कर रखो है ना, तो वापस जो है हम लोग जानकारी ले सकते वास्ते कि हमें किस तरह से नौकरी मिल सकती है।
0: हाँ भैया, और हरदेव भैया आजकल जैसे इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है, ऐसे में युवा ऑनलाइन पंजीकरण करके अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव की जानकारी दर्ज कर सकते हैं भैया।
1: बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मीना बहन। बात करें तो हम जो जब हमें किसी कंपनी या संस्था को देखनी है कि वहाँ वैकेंसी है या ना है,
0: हाँ।
1: तो इस पोर्टल के माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है, और

0: जामे अप्लाई यानी कि जो है जामे भी लोग चुन सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे।
1: हाँ भैया
0: है ना, जाके ताई 10वीं क्लास 12वीं क्लास या आईटीआई डिप्लोमा या जीटीआई डिप्लोमा जो है होना चाहिए, तो भी लोग जामे जो है अप्लाई कर सकते हैं।
1: अच्छा हरदेव भैया, और जैसे गांव के बहुत से युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में ना, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना भैया,
0: हाँ,
1: उनकी तैयारी भी करता है,
0: हाँ,
1: उनके लिए भी ये मंच उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ समय समय पर रोजगार मेलों और विभिन्न अवसरों की जानकारी मिलती रहती है।
0: बिल्कुल सही बात कह रही है, रोजगार मेला की जब अपना बात करी तो सरकार देखी जाए कई ऐसे संस्थान है पढ़ाई वाले जहाँ रोजगार मेलाओं की व्यवस्था करती है, जहाँ दूर दूर की कंपनियां और बढ़िया बढ़िया कंपनियां आती है।
1: हाँ भैया,
0: देखी जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं वे इन रोजगार मेलाओं में आके हमारे जो युवा हमारे भाई हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनको भी चुनतेंगे और अच्छी सैलरी देतेंगे।
1: हाँ भैया, और जैसे कई बार युवा ये सोचकर पीछे हट जाता है कि नौकरी केवल बड़े शहरों में ही मिलेगी,
0: हाँ,
1: लेकिन अब विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं भैया।
0: बिल्कुल सही बात कही, अब देखिए जो तो सोच पहले से ज्यादा बदल चुकी है, पहले तो भैया देखिए जब पड़ोस में रुद्रपुर रहो तो वहाँ लोग जाते हैं।
1: हाँ भैया,
0: है ना, अब
1: हाँ,
0: जातेंगे,
1: हाँ,
0: लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में सरकार जो है बहुत सारी जो है संभावनाएं पैदा कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर है जो कंपनियां हैं उन सभी से बात चल रही है सरकार की, और भी लोग कंपनियों में अब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के युवा को रख भी रहे हैं।
1: हाँ भैया, और आज गांव में भी कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग और डेयरी कृषि यंत्र संचालन खाद प्रसंस्करण जैसे अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है भैया।
0: हाँ सही बात कही मीना बहन आपने, देखिए तो सरकार जो है प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से कई तरह के जो है प्रशिक्षण भी दे रही है, जैसे कंप्यूटर की आपने बात करी, मोबाइल रिपेयरिंग की बात करी,
1: हाँ भैया,
0: डेयरी प्रशिक्षण की बात करी, कृषि यंत्र संचालन की बात करी, खाद प्रसंस्करण की बात करी आपने, तो ऐसे कई प्रशिक्षण लेके जो है रोजगार दो जा सकते हैं वो, और खेती से जुड़े हुए जो हमारे युवा हैं उनके नहीं तो अवसर की देखिएगा कोई कमी ना है अब।
1: हाँ,
0: और आधुनिक खेती जैसे मशरूम उत्पादन की हम बात करें, मधुमक्खी पालन की बात करें, पशुपालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में भी देखिए तो हम अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: हाँ भैया बिल्कुल, और भैया जैसे यानी रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं है भैया।
0: हाँ सही बात है,
1: हाँ, बल्कि स्वरोजगार भी, यदि युवा सही दिशा में प्रयास करें तो ये स्वयं भी रोजगार पैदा कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही, देखिए तो हमारे जो आज के युवा हैं अगर वे अपने परिवार को ना छोड़ना चाह रहे हैं, वे कोई रोजगार जैसे कोई प्राइवेट नौकरी ना करना चाह रहे हैं, तो वे अपने खेती बाड़ी संबंधित बहुत सारे रोजगार की व्यवस्था सरकार करा रही है, जगह जगह देखिए जो बैंकन से अनुबंध भई हैं कि भैया देखो डेयरी पालन ताइयों लोन देने हैं गो, और है ना मुर्गी पालन ताइयों लोन की व्यवस्था रखी गई है, मछली पालन के ताइयों लोन की व्यवस्था रखी गई है, तो ऐसे सारे जो बहुत सारे रोजगार हमारे युवा किसान भाई जो हैं कर सकतेंगे, और इनकी जानकारी जो है सरकार अपने पोर्टल पर डाल रही है और बैंकन में पूरी जानकारी दी जा रही है, और रोजगार संगम जैसी पहल जो कि सरकार चला रही है जाकु लाभ उठा सकतेंगे।
1: हाँ भैया, और एक और महत्वपूर्ण बात भैया कि जैसे युवाओं को अपनी पढ़ाई कौशल और रुचि के अनुसार अवसर तलाशने चाहिए, केवल एक विकल्प पर निर्भर रहना उचित नहीं है।
0: सही बात कही आपने मीना बहन, हर किसी को रुचि होती है, हर फील्ड हर किसी का अलग अलग फील्ड होता है।
1: हाँ भैया, काउ काउ में रुचि, काउ काउ में रुचि।
0: हाँ सही बात है, जैसे कोई दौड़न में तेज है तो दौड़न दौड़ती रहते, कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो, ऐसे हमारे भाई हैं अगर इनकम करना चाहते हैं तो इनकम के कई साधन होंगे, खेती बाड़ी से इनकम होती है,
1: हाँ।
0: और खेती बाड़ी जुड़े हुए कई धंधे होंगे जिनका हमारे किसान युवा किसान भाई इनकम कर सकते होंगे, और जो लोग इससे जुड़े हुए ना काम करना चाहते हैं तो वे हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है ऐसी कि वे कहीं भी जाके प्राइवेट जॉब जो अच्छे पैसा बारी कर सकते होंगे,
1: कर सकते भैया बिल्कुल। और जैसे माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही, जब हमारे गांव का युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारा गांव मजबूत होगा और हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश वो भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। यदि साथियों आपके घर में कोई युवा रोजगार की तलाश कर रहा है तो उसे ऐसी योजनाओं की जानकारी अवश्य दें जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और हमारा कृषि जगत कार्यक्रम देखा जाए तो समय समय पर हमारे युवा किसान भाइयों को, युवा जो हमारे युवा भाई हैं,
1: हाँ हाँ,
0: तो उनको समय समय पर नई नई जानकारियां देते रहते हैं,
1: हाँ
0: हम, ताकि उनका भविष्य जो है स्वर्णम हो सके।
1: हाँ भैया, जिससे वो अपनी जानकारी प्राप्त करके अपने कोई रोजगार है अपने और खेतियों को अच्छे से करें और रोजगार वहाँ के साथ साथ करें, जिससे उन्हें दोनों लाभ पैदा हो।
0: हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो सचेत रहना चाहिए और हमें उम्मीद है हमारे किसान भाई 6:20 पर जो हमारा कृषि जगत कार्यक्रम जाता जरूर सुनते होंगे, क्योंकि जहाँ में खेती बाड़ी के साथ साथ रोजगार से संबंधित जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में जानकारी दी जाती है।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: तो किसान साथियों आप हमारा प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही सुनते रहें और हम सबको अपना प्यार देते रहें। और अब मीना बहन जो है आप हमारे किसान भाइयों को क्या चीज सुनवा रही हैं?
1: भैया देखो हम अपने किसान साथियों के लिए, क्योंकि आज महीना को पहलो बुधवार है,
0: हाँ,
1: तो हम अपने किसान भाइयों के लेके आए हैं मतलब सफल कृषक से भेंट,
0: हाँ,
1: जो कि श्री राम बहादुर जी हैं और उनसे जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया अनिल किशोर।
0: तो साथियों सुने जो भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों देखा जाता है कि आप बहुत सारे किसान भाई मिलकर कई तरह की फसलों को उगाते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे तरह से खेती को करते हैं और उन्नत कृषक कहलाते हैं। यहीं पर किसान भाइयों आज हमने एक ऐसे ही किसान भाई को आमंत्रित किया है जो कि ग्राम पैदुरिया ब्लॉक मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद गाँव के श्री राम बहादुर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से खेती करते हैं और अपने खेतों में तमाम तरह की फसलों को उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाते हैं?
3: अच्छे तरीके से गन्ने की फसल है।
2: हाँ हाँ,
3: जब से हमारी राणा सुगर मिल लगी है जब से गन्ने की उपज जो है बढ़िया
2: अच्छा
3: तरीके से जो समय से उगाई करते हैं।
2: जी गन्ने की फसल उगाते हैं। हाँ। इसके अलावा और कौन सी फसलें उगाते हैं?
3: खरीफ में धान, अच्छी वैरायटी का धान लगाते हैं।
2: अच्छा, इस समय आपने धान की आगे फसल लेने के लिए पौध भी डाली होगी?
3: हाँ नर्सरी हमने डाल दी है।
2: तो नर्सरी आपने जब डाली तो किस हिसाब से डाली?
3: उसको हमने पहले जो है पानी से गीला किया जो है और फिर दोबारा से उस खूब जुताई करके उसकी जो है
2: अच्छा
3: उसमें पानी भर के
2: जी
3: और उसमें कदहर जिसे बोलते हैं,
2: हाँ हाँ,
3: हल चला के हैलों चला के जो है
2: जी
3: फिर उसमें पानी भर के
2: अच्छा
3: और उसको फिर उसमें धान को जो है धान हमने जो बीज था उसको हाँ। पहले उपचारित कर दिया।
2: अच्छा
3: हाँ, उसको जमा तो के देख लिया जो है
2: जी जी ये तो
3: जम रहा है या नहीं जम रहेगा जो है
2: जी जी
3: उसमें हमने उसको जो है डाला बढ़िया करके उसमें हल्की मात्रा एनपीके खाद की
2: जी
3: डाली जो है
2: लगाई। तो आपने कितने एरिया कितने क्षेत्रफल में पौधे डाली है? लगभग
3: हमने 20 किलो जो हाइब्रिड धान है
2: जी
3: उसका 1 बीघा क्षेत्रफल है करीब।
2: अच्छा
3: हाँ 160 गट्ठा।
2: अच्छा
3: हाँ, और जो बारीक धान है बासमती सरबती इसको हाँ, बोलते हैं
2: जी
3: उसके लिए हमने जो है 1.5 बीघा करीब अच्छा, जो है 240 गट्ठे में जो है
2: पौध
3: डाली है 20 किलो।
2: अच्छा तो आप गट्ठे के हिसाब से उसका
3: क्षेत्रफल तय कर लेते हैं जो है
2: जी। पौध जो है पौध को जो है घना डालते हैं या
3: तो घना डालते हैं, ज्यादा घना डाल देते हैं तो बारीक हो जाता है।
2: अच्छा
3: छीदा डालते हैं तो उसका पेड़ जो है मोटा होता है।
2: मोटा होता है हाँ, तो आप किस तरह से रखते हैं?
3: हम छीदा डालते हैं जिससे मोटा हो
2: जी।
3: हाँ जब मोटा पौधा होगा तो खेत में भी बढ़िया रहेगा वो।
2: बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन भी है?
3: रीजन भी है
2: कि पौध मोटी होगी,
3: मोटी होगी तो पौध बढ़िया होगी तो धान भी बढ़िया होगा।
2: बिल्कुल, क्योंकि जब लगाते हैं तो देखा जाता है पौधा मुरझाता नहीं।
3: ना बिल्कुल नहीं मुरझाएगा, जब मोटा होगा पौधा और बारीक हो जाएगा तो सूख भी जाएगा ऊपर
2: जी। अच्छा आपने पौध तैयार कर ली और अब पौध लगाने के समय आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं?
3: अब हम जो जमीन है उसको सूखी जोतेंगे पहले।
2: अच्छा
3: काफी तैयार कर लेंगे
2: जी जी।
3: फिर उसमें मेड़ बंदी करेंगे, मेड़ डालेंगे ऊंची मेड़ है जिससे पानी रुक सके
2: जी जी जी।
3: हाँ उसके बाद उसमें फिर कदहल लगेगा।
2: हाँ समतलिंग भी करते होंगे खेत को?
3: बिल्कुल प्लेन, जब ट्रैक्टर से कदहल लगता है तो प्लेन हो जाता है पानी में।
2: अच्छा
3: इतना सूखे में भी नहीं हो पाता जितना पानी में हो जाता है।
2: अच्छा
3: तो फिर उसमें एक सार पानी होता है, फिर उसमें रोपाई पौध की रोपाई नर्सरी की रोपाई जो हो जाती है।
2: अच्छा उस समय खाद भी डालते हैं? कुछ
3: खाद भी डालते हैं।
2: कौन कौन
3: कदहल लगाते हैं? जैसे एनपीके डालते हैं, हल्का यूरिया डालते हैं।
2: अच्छा,
3: 2 किलो बीघा के हिसाब से
2: अच्छा
3: यूरिया डालते हैं।
2: अच्छा अच्छा वैरायटी कौन सी लगाई है आपने?
3: हम मोटा धान तो 64-44
2: जी
3: हमारे ज्यादा होता है।
2: अच्छा
3: और बारीक में सरबती ज्यादा होती है।
2: अच्छा
3: 47 भी होता है।
2: अच्छा अच्छा
3: और मोटे में नरेंद्रा भी होता है।
2: अच्छा तो ये फसलें आप धानों की प्रजातियों को लेकर उगाते हैं?
3: उगाते हैं।
2: अच्छा दूसरी चीज ये है आप इसके अलावा कुछ और भी काम करते होंगे, कुछ जैसे खेती बाड़ी से जुड़े जैसे पशुपालन है?
3: पशुपालन भी, पशु पालते हैं।
2: अच्छा
3: किसान के लिए पशुपालन तो बहुत ही जरूरी है।
2: बिल्कुल
3: क्योंकि उससे गोबर की खाद भी मिलती है।
2: हाँ हाँ
3: घर में खाने पीने के लिए दूध भी होता है
2: जो। बिल्कुल। और जो
3: और व्यवसाय भी है, आमदनी भी होती है, दूध बेचते हैं भी, आमदनी खर्चा भी होता है।
2: अच्छा,
3: होता है उससे जो।
2: तो आपने कितने पशुपाल रखे हैं?
3: हमारे पास 2 भैंसे हैं, 1 गाय है।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो ये जो गाय 2 भैंसे हैं आपके पास, कितना दूध दे देती है?
3: गाय हमारी जो है सुबह को 6 किलो

0: बिल्कुल, मक्खी मच्छर बहुत आएंगे पशुओं के
1: बहुत
0: पास,
1: आएंगे जो है।
0: तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप पशुओं को अच्छे से रखते हैं, अच्छा उन्हें
1: अच्छा
0: गर्मियों में नहलाते भी
1: हाँ,
0: होंगे।
1: नहलाते हैं दो दो बार नहलाते हैं गर्मी में,
0: अच्छा
1: दो तीन बार नहलाते हैं।
0: अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पशुओं का इतना ध्यान रखते हैं और पशुओं से आमदनी भी लेते हैं।
1: आमदनी भी
0: और देखा जाता है कि कहा भी जाता है कि मान लो खेती बाड़ी और पशुपालन एक ही सिक्के के दो
1: एक ही
0: पहलू,
1: सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल सही बात है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये
1: खेती से
0: दोनों
1: जुड़े हैं
0: जुड़े
1: ये,
0: हुए हैं।
1: खेती के लिए खाद भी मिलती है, गोबर
0: जी
1: की खाद भी मिलती है,
0: जी
1: और खेती के लिए पैसा भी मिलेगा, ये
0: बिल्कुल
1: दूध बिकेगा पैसा भी मिलेगा,
0: बिल्कुल, पशु एक ऐसा व्यवसाय है जिससे
1: जो
0: हमें नुकसान नहीं होता,
1: नुकसान नहीं होता ना,
0: लाभ ही लाभ है,
1: लाभ ही लाभ है,
0: क्योंकि जितना खिलाते हैं उतने का गोबर कर देता
1: गोबर
0: है।
1: कर देता है, और जो
0: और
1: दूध बेच लेते हैं वो जो अपने खेती में लागत भी लगा लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: आमदनी भी है।
0: आमदनी भी है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा जरिया है
1: हाँ,
0: खेती के साथ पशुपालन।
1: बहुत अच्छा जरिया है,
0: बिल्कुल, और प्रत्येक किसान
1: व्यवसाय
0: के
1: भी
0: लिए,
1: है, आमदनी भी है, और
0: जी
1: खेती के लिए बहुत बढ़िया,
0: प्रत्येक किसान के लिए पशुपालन बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: पालना चाहिए।
1: हाँ,
0: तो आप अपने किसान भाइयों के लिए क्या बताना चाहेंगे पशुओं के बारे में, पशुपालन किस तरह से करें?
1: हम तो ये मानते हैं जो है,
0: जी
1: जितने भी किसान हैं और जिसके पास पशु नहीं है वो किसान भी नहीं है,
0: बिल्कुल सही
1: उसको
0: बात
1: क्या
0: है,
1: किसान माना जाए।
0: सही बात है,
1: गोबर की खाद जब तक हम नहीं डालेंगे अपने खेत में, तब तक फसल नहीं होगी,
0: अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी।
1: अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी।
0: जी गोबर की खाद में बहुत
1: अब
0: सारे पोषक
1: किसान
0: तत्व।
1: है, वो सुबह को जो है गिलास लिए फिर रहा है दूध वाले के पीछे, और दूध वाला दूध नहीं दे रहा,
0: बिल्कुल
1: वो
0: सही बात
1: काय का
0: है,
1: किसान है।
0: सही बात
1: किसान को
0: है,
1: जो है पशु जरूर पालना चाहिए,
0: बिल्कुल। दूध देखा जाता है कि एक ऐसी चीज़ है कि कभी कभी मोल भी नहीं मिलता है गांव
1: मोल
0: में।
1: भी नहीं मिलता है,
0: हाँ
1: और किसान मेहनत करता है ज्यादा,
0: हाँ
1: उसे जरूरी है दूध का पोषाहार मिलना, तो
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है, ताकतवर चीज है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस
1: और
0: तरह से
1: पालने के लिए उसके पास भाई जमीन है, उसमें चारा बोए और खिलाए उसे,
0: बिल्कुल दोनों काम आसानी
1: दोनों
0: से हो
1: काम
0: सकते,
1: है, खाद
0: खेती
1: भी
0: बाड़ी के
1: मिलेगी, दूध भी मिलेगा, पैसा
0: बिल्कुल।
1: भी मिलेगा।
0: दूसरी चीज़ ऐसा है कि मान लो देखा जाता है कि बहुत पुराने समय में जो पशुपालन करते थे, बैलों को पालते थे और उनसे खेती बाड़ी को
1: खेती बाड़ी
0: करते थे,
1: करते थे,
0: जुताई करते थे, अगर मान लो छोटे किसान हैं, कम जोत के किसान हैं, तो वो अपने पशुपालन कर लें, बैल पाल
1: बैल
0: लें,
1: पालें जो, बिल्कुल
0: जुताई
1: सही
0: करें,
1: बात है,
0: दूसरे की पराधीनी नहीं होगी,
1: नहीं होगी।
0: तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा आपने एक गन्ने की बात करी थी, तो गन्ने में आपने कौन सी प्रजाति लगाई है?
1: हमने 0064 प्रजाति है
0: अच्छा
1: जो हमारे यहाँ पे गिरती नहीं है, वो
0: अच्छा
1: गन्ना गिरता नहीं है,
0: अच्छा तो उसकी किस हिसाब से आपने बोया था?
1: पैदावार हमने जो बोया है वो डबल गन्ना डाला है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो डबल गन्ना डाला था, तो उसको उपचार भी किया था क्या?
1: उपचार भी किया था जो है,
0: अच्छा
1: बावस्टीन घोल के हमने उसमें गन्ना भिगो के डाला है,
0: अच्छा
1: भिगो के उसको जो है, और तब उसमें डाला है, दीमक नहीं लगे
0: अच्छा
1: और सही से जमे वो।
0: बीमारियां ना
1: हाँ,
0: लगें।
1: बीमारियां ना लगे।
0: अच्छा तो दीमक के लिए जैसे मान लो आपने ट्राइगोडर्मा वगैरह वाइवरेबेसाना दवा
1: हाँ,
0: थी, एक
1: डाली है जो,
0: डाली थी वो,
1: हाँ
0: तो उससे जो है बहुत सारी,
1: दीमक नहीं है हमारे गन्ने में, बिल्कुल सही है।
0: अच्छा तो इस तरह से आप खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी जो करते हैं तो इसके लिए जैसे हमने बहुत सारी बात करी थी, तो आप जैसे फसल तैयार कर ली उसके बाद आपको उत्पादन कितना मिल जाता है?
1: बढ़िया समय की फसल होगी तो अच्छा उत्पादन मिलता है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: कितने कुंटल बीघे की फसल काटते हैं आप?
1: हम जो है 4 कुंटल बीघा धान कटता है, ये 64-44
0: अच्छा
1: है, ये
0: जी
1: 4 कुंटल बीघे का निकलता है, बहुत
0: अच्छा
1: अच्छा धान।
0: अच्छा सरबती बताई थी वो कितने की?
1: सरबती 3 कुंटल की निकल
0: तीन
1: जाती
0: कुंटल
1: है।
0: की निकलती है।
1: हाँ,
0: अच्छा तो इसी तरह से गन्ने की पैदावार भी ज़्यादा लेते होंगे?
1: गन्ने की पैदावार भी बढ़िया अच्छी लेते हैं जो है।
0: अच्छा कितनी
1: हाँ,
0: काट लेते हैं लगभग?
1: हम 50 से मान के चलो आप, 80 तक हमारे
0: अच्छा
1: जो है हो जाता
0: निकल
1: है,
0: जाता है।
1: निकल जाता है।
0: अच्छा ये एक औसत पैदावार आपकी आ जाती है
1: हाँ,
0: इतनी?
1: औसत पैदावार आ जाती है।
0: अच्छा तो इस तरह से आप गन्ने की बंधाई वगैरह भी कराते हैं क्या?
1: हमारे यहाँ बंधाई नहीं होती, गिरता नहीं गन्ना।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: ये तो बहुत
1: जो
0: अच्छी
1: ज़्यादा
0: बात है।
1: गहरे के इलाके होते हैं उन वहाँ बांधा जाता है गन्ना।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा कितना बढ़ जाता है गन्ना लगभग?
1: हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट से बड़ा गन्ना नहीं होता।
0: गन्ना गन्ना 8 फीट हो जाता है?
1: हाँ, इससे बड़ा नहीं होगा।
0: अच्छा इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरह से खेती करके और अच्छी पैदावार लेते
1: हाँ,
0: हैं, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुना सफल कृषक से भेंट, और साथियों अब सुने कुछ संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीना बहन,
2: हाँ भैया,
1: अब आप हमारे किसान भाइयों और बहनों को काची सुनवा रही हैं।
2: हम अपने किसान भैया बहनों के लिए सुनवा रहे हैं एक लोकगीत, और लोकगीत के बोल हैं, हम पैना
1: होए गोरख धंधो।
2: हाँ। और इसको सुर दो है सावित्री दीक्षित ने।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना प्यारा सा लोकगीत हम पे ना होए गोरख धंधो, और इस प्यारे से लोकगीत को आवाज़ दी थी सावित्री दीक्षित जी ने। और साथियों, अब सुने सूचना। साथियों, महीने के पहले बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे सफल कृषक से भेंट, और साथियों दूसरे बुधवार को सुनवाएंगे सफल महिला कृषक से की गई बातचीत, और तीसरे बुधवार को सुनवाएंगे मासिक कृषि गोष्ठी, और चौथे बुधवार को सुनवाएंगे सफल कृषि स्टार्टअप पर बातचीत। अगर साथियों महीने का पांचवा बुधवार पड़ता है तो आपको सुनवाई जाएगी सफल कृषक से भेंट,
1: और अगर भैया जैसे महीने का पहला गुरुवार है तो उसके लिए सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और महीने का दूसरा गुरुवार कृषि पत्रिका खेत कल्याण, और महीने का अगर तीसरा गुरुवार है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और महीने का चौथा गुरुवार तो कृषि पत्रिका खेत कल्याण, और अगर महीने का पांचवा गुरुवार पड़ता है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
0: इसी तरह साथियों, महीने के पहले शुक्रवार को सुनवाया जाएगा आपका पसंदीदा लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, और दूसरे शुक्रवार को सुनवाया जाएगा कृषि शंका समाधान, जिसमें सुनी जाएंगी आपकी समस्याएं व दिए जाएंगे उनसे जुड़े समाधान, और साथियों तीसरे शुक्रवार को सुनवाया जाएगा फिर से लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम, और चौथे शुक्रवार को सुनवाया जाएगा कृषि शंका समाधान, कृषि से जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान। अगर साथियों पांचवा शुक्रवार महीने का पड़ता है तो सुनवाया जाएगा लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो साथियों ये तो रही सूचना, और साथियों अब हम आपको सुनवा रहे हैं
1: भैया, अब हम अपने किसान साथियों को सुनवा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक से भेंट श्री मंजीत सिंह, और इनसे बातचीत करिए हमारे हरदेव भैया ने, काका बातचीत करिए, आओ सुनते हैं जा बातचीत।
2: किसान साथियों नमस्कार, आज जो हमारी बात हो रही है शाहबाद ब्लॉक गांव किरा जिला रामपुर से, और ये आपका परिचय?
3: मेरा नाम मंजीत सिंह है।
2: मंजीत सिंह जी,
3: ग्राम किरा तहसील शाहबाद जिला रामपुर।
2: मंजीत जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं धान की उन्नत खेती की, क्योंकि धान की फसल की तैयारी हमारे सभी किसान भाई बहन कर रहे हैं, इस समय सभी लोग लगे हुए हैं, तो इस बार क्या तैयारी है आपकी, कितने बीघे में आप जो है धान कर रहे हैं इस बार?
3: इस बार सर 5 एकड़ धान कर रहे हैं इस समय हम।
2: तो आपने 5 एकड़ के लिए सर पौध जो है डाल दी?
3: एक तारीख में डाली है अभी पौध।
2: अच्छा अच्छा, पौध डालने से पहले हम देखते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई, कुछ लोग होते हैं कि पौध के जो बीज है धान का बीज वो दुकान से लाके और बिना उपचारित करिए डाल देते हैं, जो कि गलत है, तो आपने क्या इस बार उपचारित किया है?
3: देखो सर, मैं तो उपचारित करता हूँ, एक तो मैं सर खेती बाड़ी का एक तो डॉक्टर ही हूँ सर, मैं एक ही दुकान उकान है सर, BSc एक ही करा हुआ हूँ सर।
2: अच्छा सर,
3: और साथ में मैं खेती भी करता हूँ सर।
2: अच्छा, हमारे किसान भाई हम देखते हैं कि जो बेचारे कुछ जो पढ़े लिखे नहीं है, तो हम देखते हैं कि वो बिना उपचारित किए जो है बीज की जो है पौध डाल देते हैं, तो आगे चल के क्या क्या समस्याएं भैया जो है देख जाए तो आती हैं?
3: जैसे इस समय जैसे हम उपचारित नहीं करते किसी फसल को, तो जो उस समय जब फसल जब हमारी कटती है उस समय, तो उसमें कुछ फसल में वायरस नुमा रोग जो होते हैं वो तो उस समय मतलब बरकरार रहते हैं उसमें, मतलब बीज में जब हम रोग क्षमता उसमें जब फंजीसाइड का किसी तरीके में घोल मिला के उसमें भिगो देंगे तो जो फंजीसाइड होते हैं वो एक दम खत्म हो जाते हैं, उन तरीका से नहीं होते हैं, कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं उससे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने भैया, इसलिए जो है हमारे किसी विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जो है किसी भी पौध की बुवाई से पहले या नर्सरी डालने से पहले उस बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, बात करें हम नर्सरी की तैयारी की, तो आपने जो तैयारी की है तो लगभग कितने दिन हो गए डाले हुए?
3: पौध पड़े हुए हमारे लिए हो गए आज तीसरा दिन है।
2: तीसरा दिन है। अच्छा, लगभग नर्सरी हमें कितने दिन की तैयार कर लेनी चाहिए जो आगे चल के हमारी जो धान की फसल से उत्पादन में अच्छा मिल सके?
3: 20 से 25 दिन की नर्सरी होगी, अच्छा उत्पादन देगी, अच्छा ग्रोथ करेगी, अच्छे ट्रेनिंग देगी।
2: अच्छा, एक बार बताइए भैया, जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाए तो खेत की तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए ताकि जो है हमारे खेत में धान की जो पैदावार है वो अच्छी हो सके।
3: देखो सर, पहली बात तो यह है, जैसे मई का महीना हो गया, इस समय जून हो गई, इस समय जुताई खेतों में ज्यादातर कर रखी है।
2: हाँ
3: कर रखने के बाद उसे जुताई से जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो गर्मी का जितना भी टेम्परेचर होता है, कुछ जीव वो मतलब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब हम नर्सरी की पौध लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें मतलब यहाँ की भाषा में कदहरी बोलते हैं, बोलते हैं उसके लिए, आज के टाइम में उसके लिए रूटावेटर से भी कदहर करते हैं लोग बाग, और दूसरी बात हैरो से भी करते हैं। उसका कदह जो करने का है वो एकदम बिंदास होना, मतलब सही होना चाहिए, एकदम मतलब बारीक होना चाहिए, खेत बिल्कुल एकदम हिसाब से बन जाए, जिससे कि पानी की क्षमता बरकरार खेत में बनी रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने भैया। अच्छा भैया, हम देखते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने इस समय जो हरी खाद के रूप में ढेचा की फसल कर रखी है, कुछ लोगों की जो है 1 फीट तक बड़ी हो गई है। क्या आपने इस बार ढेचा की फसल अपने खाली खेतों में की है?
3: नहीं, मैंने तो नहीं करी सर, मेरे पास तो ढेर मिल नहीं पाया था।
2: अच्छा, मिल नहीं पाया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, ऐसे बहुत सारे हमने किसान भाइयों को जागरूक किया है कि अपने आकाशवाणी के कार्यक्रम के माध्यम से कि वो हरी खाद पे जो है विशेष नजर रखें, क्योंकि हरी खाद जो है वो हमारी मिट्टी को जो है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। तो इस बात पे भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना है। और बात करें हम भैया उर्वरकों के प्रयोग की, तो उर्वरकों का प्रयोग हमें आगे चल के किस तरह करना है?
3: उर्वरकों का प्रयोग सर, जैसे एनपीके है या डीएपी है, लोग बाग जड़ में डालना चाहिए, मुख्य बात तो यही है कि उसमें जो फास्फोरस होता है वो जड़ से ही काम करता है।
2: अच्छा, रोपाई के समय हमें कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कुछ किसान भाई होते हैं कि लगातार जो है अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, जो कि गलत है। तो खेत की मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं हमारे किसान भाई जो अंधाधुंध लगातार अगर किसी भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनकी फसल में जो है लागत बढ़ जाती है। तो इस बार क्या आपने मिट्टी की जाँच कराई?
3: मैंने इस समय इफको द्वारा जो जो सेंटर होते हैं इफको के, वो मिट्टी की जांच करा रहे हैं, और जो कृषि विभाग द्वारा गई है, जहाँ के भी हैं या उसकी जो भी है आदमी, जहाँ जहाँ ब्लॉक है वहां पर भी मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और उसकी लेबोरेटरी भेजी जाती है, लेबर वहां पर चेकअप होके आते हैं, लेकिन वो इस समय तो अभी तक तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके लिए मुझे लग रहा है जुलाई के पहले सप्ताह तक आ सकते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार जो है अपनी मिट्टी की जांच करा रहे हैं। उम्मीद है हमारे किसान भाई भी जो है खेती कर रहे हैं वो भी आगे चल के अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे ताकि कम लागत लगा के और अधिक उत्पादन अपनी फसलों से ले सके। अंत में आप भैया, हमारे किसान भाई जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो धान की अच्छी पैदावार अपने खेतों से ले सके?
3: देखो, समय से सिंचाई करें, समय से उर्वरक डालें, और समय से कीटनाशक का प्रयोग करें, और जैसे बीमारी से पहले या बीमारी लगने उसकी देखभाल से ही, तभी मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाएगा।
2: बहुत ही अच्छी बात कही आपने, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। उम्मीद करते हैं किसान भाई इस बार जो है धान की जो रोपाई है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे हर कृषि जगत कार्यक्रम में जो है अपने किसान भाइयों को बताया गया है कि किस तरह जो है हमें धान की उन्नत फसल जो है करनी चाहिए। और आपने भी बहुत अच्छा संदेश दिया और आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: किसान साथियों, अभी आपने सुनी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक से भेंट श्री मंजीत सिंह, और इनसे बातचीत का जानकारी जुटाई थी हमारे भैया हरदेव ने।

0: और भैया अब अपने किसान साथियों के लिए क्या जानकारी लेके आए भैया?
1: मीना बहन देखिए तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास होती है,
0: हाँ
1: है ना,
0: हाँ
1: अपने हर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को देनता
0: है।
1: तो आज हम अपने किसान भाइयों के ताई लेके आए हैं जो इस समय चल रहा है, है ना, धान की खेती की जो है, बाकी पौध की जो है कैसे तैयार हम करें।
0: हाँ भैया बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: तो किसान साथियों, धान की खेती को समय नजदीक इस समय चल रहा है, आप अच्छी तरीका जानते हैं कि अच्छी फसल का आधार अच्छी पौध होती है, इसलिए आज हम बात करेंगे धान की पौध किस तरह हमको तैयार करना चाहिए ताकि खेत में रोपाई के समय मजबूत और स्वस्थ पौधा जो है हम लगा सकें।
0: बिल्कुल हरदेव भैया, अक्सर किसान भाई खेत की तैयारी पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन पौधशाला की तैयारी में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, इसका असर बाद में पूरी फसल पर दिखाई देता है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने मीना बहन। सबसे पहले तो किसान भाइयों को अच्छे और प्रमाणित बीज को चयन करना चाहिए। जब हम बात करें बीज के चयन की तो बहुत सारी प्रजाति हैं जिनको हमारे किसान भाई जो हैं चुन सकते हैं, जैसे सरजू 52, एनडीआर 359, स्वर्णा आईआर 64, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पंत शंकर धान 1, आजाद बासमती, और भी ऐसी बहुत सारी प्रजाति हैं। पूसा बासमती 1121 जो प्रजाति है बहुत अच्छी प्रजाति है, 1509 बहुत प्रजाति जो बढ़िया वाली प्रजाति है, स्वर्णा है, एनडीआर, ये ऐसी इतनी अच्छी प्रजाति हैं हमारे क्षेत्र के ताई कि हमारे किसान भाई इनको चुन के जो है आगे चल कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: और बीज का चुनाव क्षेत्र और मौसम के अनुसार करना चाहिए भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अपने इलाके में जो किस्में अच्छी पैदावार दे रही हों उन्हीं का चयन करना ज्यादा लाभदायक होता है भैया।
1: हाँ सही बात कही आपने, अगर हमारे इलाका में जो किस्म में रोग कम लग रही है तो वे ही हमको चुनना चाहिए जिनसे अच्छी पैदावार हम ले सकें। और मीना बहन, पौध तैयार करने के ताई तो सबसे पहले हमें ऐसी जगह को चुनाव करना चाहिए जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी जो है आसानी से निकालो जा सके, और जमीन समतल होए व उपजाऊ होए। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं ऊंचक नीचक जगह होती है जैसे बोलते हैं उबड़ खाबड़,
0: हाँ भैया,
1: तो बामे पौध डालने की कोशिश करते हैं तो कहीं पानी ज्यादा भर जाता है, कहीं पानी कम भर जाता है,
0: हाँ, इससे नुकसान
1: तो नुकसान का होता है। जब पानी भरने के बाद जो बीज हम डालते हैं तो वो पानी भर जाता है तो वहाँ पौध जो है उगती ना है,
0: नुकसान होता है भैया। और जिस खेत में अपने पौध डाली है ना भैया, उस खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाना भी जरूरी है। इसके लिए खेत की अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए और सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए, इससे पौध को शुरुआती पोषण मिलता है भैया।
1: बिल्कुल सही बात कही, जब आपने शुरुआती पोषण की बात कही तो पौध में जो है देसी खाद,
0: हाँ,
1: बाकी ताई पौध डालने से पहले जो मिट्टी है हमने जो तैयार करी है पौध के ताई तो हमें देसी खाद मिलाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: जब बात आप है पौध के बीज डालने की तो बीज शोधन करना बहुत जरूरी है,
0: हाँ,
1: है ना, बीज शोधन करने से जो है कई तरह के रोग जो है हम अपने धान में जो आगे लगने वाले हैं उनसे अपने धान की फसल को बचा सकते हैं। और जो अंकुरण होता है ना, जब बीज फूटता जो अंकुरण होता है तो वो अच्छा निकलता है,
0: हाँ,
1: अच्छी बढ़वार करते
0: हैं। हरदेव भैया, किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि पौध के लिए बीज कितना लगेगा। सामान्य तौर पर एक हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए लगभग 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है, हालांकि ये किस्म के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है।
1: बिल्कुल सही बात कही, बीज बोने से पहले वह साफ पानी में भिंगो लें और भिंगो कर वह उपचारित कर लें ताकि समान अंकुरण हो गए और पौधशाला में समान मात्रा में बिखरना चाहिए, कहीं में इधर उधर ज्यादा न करना चाहिए।
0: हाँ भैया बिल्कुल, और बीज बिखरने के बाद हल्की मिट्टी या खाद की परत डाल दीजिए जो अंकुरण अच्छा होता है। ध्यान रहे कि बीज बहुत गहराई में
1: ना दबे। हाँ बिल्कुल सही बात कही मीना बहन। तब बात आती है सिंचाई की, पौधशाला में हमेशा जो है नमी बना रखना चाहिए,
0: हाँ,
1: लेकिन ज्यादा पानी भराव ना होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी भराव से पौधा जो है कमजोर हो जाता है और रोग की जो है बढ़ जाता है रोग।
0: हाँ भैया, और किसान साथियों शुरुआती दिनों में पक्षियों से भी पौध की सुरक्षा करनी चाहिए, कई बार चिड़िया अंकुरित बीज को नुकसान पहुँचा देती है, इसीलिए थोड़ी निगरानी जरूरी रहती है।
1: बिल्कुल सही बात कही मीना बहन, और उम्मीद करता है हमारे किसान भाई इन सभी बातों को जो है ध्यान रखेंगे। और अब हम अपने किसान भाइयों को बता दें कल के कार्यक्रम सुनवाएंगे चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आकाशवाड़ी गांव में।
0: हाँ भैया,
1: ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और साथ में सुनवाया जाएगा प्यारा सा लोकगीत, और सुनवाया जाएगा कृषि संकेत, और दी जाएगी मौसम की जानकारी।
0: हाँ भैया,
1: और अब मीना बहन हम अपने किसान भाइयों को दे दें कल के मौसम की जानकारी।
0: हाँ भैया जरूर, क्योंकि मौसम के हिसाब से ही हमारे किसान भैया अपनो काम धंधो निपटा उतरेंगे, इसलिए मौसम की जानकारी जरूरी है भैया।
1: तो कल को उच्चतम तापमान है किसान साथियों 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा की गति साथियों 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, और साथियों मौसम में आर्द्रता की बात करें तो 37% रहने को अनुमान है। उम्मीद करते हैं किसान साथियों हमारा आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आ हुए।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: लेकिन अब जो है समय कम रह गया है।
0: हाँ
1: तो चलत अपने सभी किसान भाइयों को कह दें भैया
0: राम राम, राम।

0: अभी कृषि श्रोता सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में विषय है बच्चों की आंखों में एलर्जी और आज फिर उपस्थित हैं।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय बरेली से। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात करना चाहती हूं जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये टॉपिक है बच्चों की आंखों की एलर्जी। यानी एलर्जी क्या होती है? जब भी आंखों में कोई भी चीज़ ऐसी चली जाए जो आंखों को इरिटेट करे उसको एलर्जी कहते हैं। अब आंखों में क्या चीज़ जा सकती है? आंखों में धूल मिट्टी, धुआं, पॉलन, किसी तरीके की कोई गंदगी, पल्यूशन, स्मोक, ये सारी चीज़ें अगर कभी भी हमारी आँख में जाती हैं तो हमारी आँखों का इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर जाता है और इस रिएक्शन से होता है आँख की एलर्जी।
2: डॉक्टर साहब, आँख में अगर एलर्जी हो जाए तो क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: एलर्जी में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके बच्चे बार बार आँख को मसल रहा है या फिर उसके आँखों में खुजली, कह रहा है कि खुजली हो रही है मम्मी, आँखों में जलन हो रहा है, आँखों में लाली आ रही है, पानी आ रहा है, धूप से देखने में कभी कभी दिक्कत हो रही है, सुबह जब आँखें सो के उठते हैं तो चिपचिपी होती है और बार बार पलकों को झपकाता है, आँखों के चारों तरफ सूजन या किसी तरीके की कोई सूजन है, स्वेलिंग है, तब इसका मतलब ये है कि वो आँखों में एलर्जी है।
2: आँखों में एलर्जी होने पर क्या खुजली भी होती है आँखों में?
3: सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुजली होना। अगर खुजली हो रही है आँख में तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि आँखों में एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी और इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है? एलर्जी और इन्फेक्शन में ये डिफरेंस है कि एलर्जी में आमूमन तौर पे आँखें दोनों ही इफ़ेक्ट होती हैं, एक नहीं होती है। खुजली बहुत ज़्यादा होता है, पानी आता है लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा नहीं आता। जबकि जब इन्फेक्शन होता है आँख में तो आँख में चिपचिपा पीला या हरा कीचड़ आता है, दर्द होता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है और लगभग ये एक आँख से शुरू होता है और फिर दोनों आँखों में जाता है। स्क्रीन टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या रोल है?
3: जब बच्चे मोबाइल और टैबलेट या स्क्रीन पे बहुत देर तक रहते हैं उससे आँखों में सूखापन बनने लगता है और सूखेपन की वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान

0: रखना चाहिए कि जब आंख में थोड़ी भी एलर्जी है तो हमें स्क्रीन टाइम को कम रखना चाहिए ताकि हमारी आंख में नमी बनी रहे और सूखापन ना हो।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये एलर्जी खतरनाक भी हो सकती है?
0: आई की एलर्जी कभी कभी डेंजरस भी हो सकती है। ज़्यादातर आँखों में ये एलर्जी मैनेजेबल होती है, यानी कि उसको आराम से ठीक किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से काली पुतली पे असर आ जाता है और रोशनी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें इस एलर्जी को सीरियसली लेना चाहिए और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम घर पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारी आँख में एलर्जी हो? तो हम जो है ठंडे पानी से आँखों को दिन में एक बार धो सकते हैं या फिर बर्फ़ को तौलिए में लपेट के आँख की सिकाई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर आंखों में कुछ पड़ जाता है या एलर्जी हो जाती है तो बच्चे अक्सर आंखों को मसलने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए?
0: बच्चों को आंखों को मसलने नहीं देना है और उन्हें समझाना है कि आंख में अगर खुजली होती है तो जो प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप है वो आई ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन आंख को मसले नहीं। साफ तौलिए का इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि धूप, मिट्टी, धूल, धुआं, इन सब से हमारी आंखों को बचा के रखें। उसके लिए काले चश्मे का प्रयोग किया जा सकता है जो कि 100% यूवी फिल्टर होना चाहिए ताकि हमारे आंख में किसी तरीके की कोई गंदगी ना जाए। और कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी बाहर निकलें तो कैप से यानी टोपी से और काले चश्मे से यानी कि 100 UV फिल्टर गॉगल से हमारी आंखें सुरक्षित रहेंगी इन गर्मियों में जब भी हम बाहर रहें।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, क्या ये एलर्जी आंखों में बार बार आती है या एक बार आती है? जी,
0: बहुत ज़रूरी बात जो मैं इस एलर्जी के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि ये एलर्जी बार बार आती है। ऐसा नहीं है कि ये एलर्जी एक बार हो जाए, दवाई आप डॉक्टर से जाके ले लें और ये एलर्जी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एलर्जी छोटे बच्चों में, ख़ास तौर से लड़कों में होती है, जो कि हर गर्मियों में या फिर मौसम बदलने पर होती है। जैसे कि अब सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं तो ये एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर गर्मियों से सर्दियाँ होती हैं तब ये एलर्जी आती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और वो 18-20 साल का होता है तो ये एलर्जी अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाती है। तो हो सकता है कि हर गर्मियों में आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़े और ये पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ही ठीक हो। कभी भी एकदम से या एक बारी दवाई लेने से ये ठीक नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, ये एलर्जी की बात आपने बताई है कि बार बार हो सकती है, तो आपको दिखाने के लिए आँख को कब कब आना चाहिए?
0: अच्छा, अब दिखाने कब आना है ये भी बहुत ज़रूरी है। लाली ज़्यादा हो, धुंधलापन हो, खुजली इतनी हो कि बाहर जाने में दिक्कत हो रही हो, रोशनी में आँख ना खुल रही हो, आँखों के चारों तरफ सूजन हो और बार बार ये दिक्कत आ रही है, ड्रॉप डालने से ठीक नहीं हो रही है, तो ज़रूर किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें।
1: डॉक्टर साहब, प्राथमिक उपचार भी तो होता होगा कि आँख में एलर्जी हो जाए तो घर में क्या उपचार कर रहे हैं पहले, आपको दिखाने से पहले? और हाँ, बचाव भी तो होता होगा।
0: तो अब हमें घर पे क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम इसकी करें प्रिवेंशन यानी कि बचाव? सबसे पहले अपने आसपास के जितनी भी सराउंडिंग्स हैं या सब है उसको साफ़ रखें। साफ रखने से धूल, मिट्टी, धुआं, ये सब हमारे आंखों में नहीं जाती हैं। स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, यानी कि बच्चों को मोबाइल टीवी बहुत ज़्यादा ना दें। उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम की भी गाइडलाइंस हैं।
1: जी, वो गाइडलाइंस क्या हैं आँखों के लिए?
0: वो गाइडलाइंस ये हैं कि अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना है। स्क्रीन के आगे बिठा के उसको खाना खिलाना, स्क्रीन के आगे उसको बैठा कर कोई और काम करवाना, या ये कहना कि ये काम करो बेटा तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे, ये सारी आदतें आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो इसलिए 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल टीवी नहीं देना है। 5 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उसको आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल टीवी नहीं देना है। और उसके बाद एडल्ट्स के लिए 4 से 5।
1: जी अच्छा, समझ गए। 4 या 5 घंटे तक देखने की लिमिट हो सकती है एडल्ट के लिए,
0: लेकिन उससे ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना है। और स्क्रीन पे अगर हम देख भी रहे हैं तो हमें 20-20-20 रूल का फॉलो करना है।
1: डॉक्टर साहब, जो बहन भाई आपको सुन रहे हैं वो आँखों की एलर्जी के लिए बचाव भी जानना चाहेंगे, तो बचाव क्या है?
0: तो बचाव के लिए सबसे पहले क्लीन सराउंडिंग्स यानी कि आसपास की सफाई, दूसरा

0: स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। तीसरा, विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट लेना, यानी कि आप जो हैं गाजर है, अनार है, चुकंदर है और फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें, नट्स हैं, पीनट्स है, वॉलनट है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो हमारी आँखों के लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगी, आँखें तंदुरुस्त रहेंगी। खूब अच्छे से नींद लेना ताकि उस दौरान हमारी आँख अपने आप को रिपेयर कर ले, ठीक कर ले, और रेगुलर आई चेकअप करना। इसके अलावा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि खुजली हो तो आसपास से कहीं से भी शॉप से कोई भी दवाई बिना पूछे नहीं लेनी है, क्योंकि अक्सर हम आंखों की एलर्जी में स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स की वजह से ये एलर्जी थोड़े समय के लिए तो कम हो जाती है लेकिन लंबे समय के लिए आँख को नुकसान दे जाती है। इसलिए बच्चों की आँख बहुत नाजुक होती है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और बिना पूछे दवाई नहीं लेनी है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहनों भाइयों, शहनाई का साज अजब है, खुशी और गम दोनों सुनाता है। शादी में बजे तो मन हर्षाए, जुदाई में आंसू बहाता है। इसकी मीठी धुन में जीवन के सब रंग समाए हैं। मिलन की खुशी हो या बिछड़ने का दर्द, हर जज्बा इसमें छुपा हुआ है। क्या

0: और अब रविंद्र कुमार मिश्रा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम जान है तो जहान है समाप्त करने के लिए।
1: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: ये था फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: चांद में।
1: 8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वागथन 2026 में, एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वागथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज, जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नष्ट होगा।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
4: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5,041 करोड़ रुपीज का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
5: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़

0: का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर, न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
4: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल TGT भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का

ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में अब आइए सुनते हैं प्रियंका ग्वाल के गाए कुछ भजन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रियंका ग्वाल के गाए भजन। और अब इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रियंका ग्वाल और कुंदन सिंह के गाए भजन। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे अब पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल।

नमस्कार श्रोता साथियों, आज एक बार फिर हाजिर है आपकी आज की रेडियो मेजबान सरस्वती सिंह लेकर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी के डिजिटल फरमाइशी गीतों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सभी ने सुनना चाहें फिल्म यस बॉस का खूबसूरत गीत, जिसे अपने स्वर से सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने और पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान, राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुहान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन, लालमाता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से फरमाइश करता है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा, श्रीमती फुंदीबाई बागरी, कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश लिख भेजी है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, साथ है मास्टर अल कबीर। अनारकली बाजार जगरों पंजाब से सुनने वाले श्रोता साथी हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्वी चौहान इंदूरकर, बेबी शौर्य, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलतमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से सुनने वाले श्रोता साथी हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, सोनमवली बेलदार और इनके सभी साथीगण, छटिया पोखरा डुमराव से डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन वली कुटारिया, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश लिख भेजी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, गांव लोगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल,

दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। करणवीर हाउस, भूचो, कैनिचिया, भटिंडा, पंजाब से सुनने वाले श्रोता साथी हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए यस बॉस फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

8 जून 2026 सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलिए आकाशवाणी वाकथन 2026 में एक नमन आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को। ये वाकथन बनेगी प्रतीक स्वस्थ जीवन, सामाजिक एकता और श्रोताओं के साथ जुड़े दिल के अटूट रिश्ते का। 90 वर्षों से आकाशवाणी से गूंजती ये आवाज, जन जन के मन की सच्ची परवाज। 8 जून को सुबह 6 बजे आकाशवाणी स्टूडियो से अंबेडकर पार्क रामपुर तक हमें चाहिए आपका साथ आकाशवाणी वाकथन 2026 में। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के पिन पोस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जहां से आप अपनी डिटेल फिलअप करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण हेतु आकाशवाणी कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखिएगा, 8 जून हमारा जुनून।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल, और इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और इंद्रजीत की उगल आवाजों में एक और नगमा। फिल्म का नाम है बेटा और इस फिल्म के गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी और समा अंसारी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, साथ हैं नगमा नाज मंसूरी। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन।

इसी क्रम में दिल्ली से मोरी गेट से सुनने वाले श्रोता साथी हैं कन्हैया लाल, देवता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान नाज अंसारी और शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राजेश जी अंसारी और फातिमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद माधो वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा, पुणे से फरमाइश लिख भेजी है पंकज।

रुदय, आर्य, प्रियंका, चंद्रप्रभा और इनके सभी साथीगण, मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर के हमारे श्रोता साथी हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम। मेरठ कैंट से सुनने वाले श्रोता साथी हैं दिग्दर्शन और कविता। जेल रोड जालंधर से फरमाइश लिख भेजिए अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजनेजा, पूनम गजनेजा, गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से सुनने वाले श्रोता साथी हैं गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। आजाद रोड सनावाद से मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद फारूक खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी आफिया राफिया और मोहम्मद अदनान खत्री। बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश लिख भेजिए ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और इंद्रजीत को फिल्म बेटा में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेटा का ये खूबसूरत गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आप सभी की पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया और इस फिल्म के गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोता साथियों ने। छत्तीसगढ़ चुड़ई लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। जौनपुर से फरमाइश लिख भेजी है चंदा चांदनी, आकाश कुमार और इनके मम्मी पापा। रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जानवी डोमीन। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कबीर रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाशवीर राजपूत। टोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया। शनि चौक खंडवा से पिंकी, मिंकी, शिंकी और रिंकी। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। वीरम गांव सिटी से अजीत मेहरा और सुनीता मेहरा। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा। भिलाईगढ़ से देव डूकर, तुषार और अजय देव डूकर। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, अलमा खान, असलम सैफी, जाहिद अली। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। गांव रायखाना जिला भटिंडा पंजाब से परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानू दीपू, वीरपाल, कुलदीप और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश लिख भेजिए संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और समस्त नामदेव परिवार। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस अएजा, अल्फिया सराफ और इनके सभी साथीगण। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़क, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश मुड़क। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना। इंद्र विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मैंने प्यार क्यों किया है इस फिल्म का खूबसूरत गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

इतना प्यार क्योंकि आप ही आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। गायक कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में एक बार फिर आप सभी ने सुनना चाहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में एक और खूबसूरत नगमा फिल्म चोरी चोरी से। और इस फिल्म के गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। मोल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुनने वाले श्रोता साथी हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदनी रघुवंशी, ललित नारायण भाव खड़से, आराध्या खड़से और इनके परिवार के सभी सदस्य। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल शालनी, ट्वांशी खेड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, चंचल ढोमने, वैष्णवी, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवा शेरे। नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तला जहां नाज, फरह जहां नाज, रिफत जहां, नुजत जहां, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, तबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदी नाज। जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। सरगुजा मैनपाट से रेशमा थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा और वसीम और अकरम थापा। जेल रोड झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, फर्जियलु अंसारी और इनके सभी साथीगण। नैनीताल से फरमाइश लिख भेजी है मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी और इनके सभी साथीगण। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से फरमाइश करता है जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए उदित नारायण और

और श्रोताओं, इसी क्रम में कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में आप सभी ने सुनना चाहा है बाजीगर फिल्म का खूबसूरत गीत कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की युगल आवाजों में। और इस फिल्म के गीत को पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजेश जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख, साथ हैं समस्त राजेश जाधव देशमुख और वायाल परिवार। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और इनके सभी साथीगण। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फोजिया रोशनी, शाइना काजल और शहजाद अली। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय शाहपुरकर, अमित अशोक मधुकर और अमर समुद्रे। वंडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। बेड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, शोएब खान, साइमा खान, मुस्तफा खान, आफिया खान और शाहिद भाई, साथ है राहु भाई। आप सभी श्रोता साथियों की पसंद पर लीजिए सुनिए बाजीगर फिल्म का एक खूबसूरत नगमा। गायक कलाकार हैं सोनाली वाजपेयी और कुमार सानू।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपनी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त सरस्वती सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह जुड़े रहिए आपके अपने परिवार, जी हाँ, आकाशवाणी रामपुर के साथ। नमस्कार।

0: अलविदा फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप

0: मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे, जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60
3: राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
6: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
8: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
6: वहीं 2015 में शुरू की गई

0: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
5: ATF price stabilization fund
6: A self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
5: Because of the stress in the sector, it will significantly mitigate.
4: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha.
5: Odisha mein coastal highway.
6: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradeep, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradeep. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four-laning of the road between Khagaria and Purnia.
4: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Ritobroto Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
7: Ritobroto, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Ritobroto claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Ritobroto and Sandipan Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead.
4: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabonno, approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister

0: My name is Brahmadev Malhaka. I am from Muzaffarnagar district in Bihar. I have been purchasing medicines from here for about a year. The medicines are available at affordable prices. The doctor advised us to buy medicines from Jan Ausadhi and we followed that advice and regularly purchase our medicines from here. If we want to buy the same medicines from outside, they are much more expensive. This government initiative helps solve the problems of the poor people.
1: The Pradhan Mantri Mudra Yojana launched in 2015 has also evolved into a powerful instrument of empowerment. Under the scheme, 40 lakh crore rupees of loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the CTE 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Rutvika Gadde defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Rituprata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviyanagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अलाकवामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलातो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
4: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
3: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मनसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
3: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने ओडिशा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाकये के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाकये को जब से वो इख्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर डी के शिव कुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। ڈاکٹر بی پرمیشور جنہوں نے سدھارمیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے انہیں نائب وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلی کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج صبح مالویا نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا. جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں. 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کارروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا. دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
7: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے. دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم، ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے، آڈیٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسوں، نرسنگ ہومز، کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے. چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی. 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا. شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
8: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے. ٹیکس نظام کو سہل بنایا، بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے. نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے.
9: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا. آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آونٹت ہوگی. اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں.
8: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 43 کروڑ 52 لاکھ ہیلتھ کارڈز جاری کیے گئے جس سے عام لوگوں کو حفظان صحت کے شعبے میں تحفظ فراہم کیا گیا. اس کے علاوہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا اسکیم کے تحت جن اوشدھی کیندروں پر معیاری جینرک دوائیں 50 سے 80% کم قیمتوں پر دستیاب ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر عام دکانوں کے مقابلے دوائیں نہایت ہی کفایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں.
10: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں. سستی دوائی ملتی ہے. ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ جلدی سے دوائی خریدیں.
8: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभालने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकत दारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारतो सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तावुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रुपये की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता व्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से एक किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके

0: में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों का एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, इसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से 4 महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए, यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
0: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम इसको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को और

0: सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही,
1: जी
0: अगर धान की तो क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है, तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उस ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के, या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वास्तविकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्था पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है, जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भाग की बात की, मध्य भाग की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है, तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है
1: जी
0: और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: देवास जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं
0: तो
1: आप
0: उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारे सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या मुख्य अगर सौर बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत की में जो मानसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है, हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है

0: जनरल ट्रेंड अगर देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मानसून सिस्टम है वो अपने आप में एक बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशन है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है, और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है, और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे, और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी प्रकोप भी लाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है, और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है, और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है, और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है, तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के निचार लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
2: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराए नहीं, और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और साथ
1: डबाजी।
2: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी उपाय पहले से बनाए
1: रखे। जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहा है उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं, और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आइए रूपक के अंतर्गत सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष अभिनंदन आकाशवाणी। संकलन रेणु तिवारी, आलेख एवं वाचन असीम सक्सेना का।

आकाशवाणी मात्र एक प्रसारण संस्था नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, संस्कारों और सृजनात्मक अभिव्यक्तियों का एक जीवंत मंच है। कलाकारों के लिए आकाशवाणी एक गुरुकुल की भांति है, जिसने न जाने कितनी प्रतिभाओं को पहचान दी, सम्मान दिया और आत्मविश्वास प्रदान किया।

जब किसी नवोदित कलाकार की आवाज पहली बार आकाशवाणी के स्टूडियो से प्रसारित होती है तो वो क्षण उसके जीवन की अमूल्य धरोहर बन जाता है। आकाशवाणी के इन 90 वर्षों के साक्षी रहे हैं इससे जुड़े अनेक वार्ताकार, कलाकार, विशेषज्ञ और सामान्य जन। अनेक कलाकार जब रेडियो पर अपना नाम उद्घोषित होते सुनते हैं तो ये उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं होता। उस क्षण उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो साधना को मिली है एक नई दिशा और मिला है एक नया आकाश।

मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाइयां आवाज की दुनिया के दोस्तों को। ये सफर जो है बहुत ही सुंदर मेरा आकाशवाणी का सफर आपके साथ साझा करना चाहूंगी। थोड़ा सा बड़ा रोचक सा दोस्ताना सा ये सफर ऐसा है जो हमेशा याद रहने वाला है। एक तो आपकी पसंद का काम हो और फिर उसमें अगर आकाशवाणी जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे सपनों को पंख मिल गए हों। तो पहले हम कॉलेज में या स्कूल्स में डिबेट इत्यादि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहे और यही क्रम आगे बढ़ा तो हम जुड़े वार्ता के क्रम में आकाशवाणी से, और जब इसको हमने थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाया तो हम जुड़ गए युववाणी से। और युववाणी से जुड़ना तो ऐसा हुआ जैसे कि आंखों देखी सपने साकार हो गए। युवा ऊर्जा के साथ जुड़ना, युवा ऊर्जा को दिशा निर्देशन देने का काम मिलना, और उसमें भी हम बिल्कुल पूरी तरह से लग गए। और ये काम ऐसा था जो काम मिलकर एक टीम के साथ होता था। तो युववाणी का सफर चाहे उसमें विभिन्न इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स का प्रेजेंटेशन हो या उसमें मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन हो, लेकिन सबका उद्देश्य रहता था कि सब सारगर्वित हो, उद्देश्य परक हो और सभी कुछ ना कुछ मॉरल मैसेज देते हों। आकाशवाणी का सफर बड़ा यादगार रहा। अगर हम कलियों की बात करें तो आज भी आपको चीकू भैया का नाम याद रहेगा और याद रहेगा ये बात कि बच्चे किस तरह से आकाशवाणी से जुड़ना चाहते हैं। बच्चे क्या अंदर एक खास बात होती है कि बच्चे वार्तालाप करना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं, क्यों कब कहाँ कैसे को जानना चाहते हैं। तो कलियों का जो एक प्लेटफॉर्म है आकाशवाणी रामपुर की जो बात हम करते हैं मुख्य रूप से, तो वहाँ बच्चे जाने के बड़े उत्सुक होते हैं और बड़ा आकर्षण रहता है बच्चों में। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी भारत में बच्चों को ना विरासत में मिलता है। कैसे, पहले तो दादा दादी सुनते हैं रेडियो को, फिर पापा मम्मी सुनते हैं और उत्सुकता बस बच्चे भी वहां बैठना शुरू कर देते हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से सारे बच्चों को विरासत में मिलता है, हमें भी विरासत में मिला। फिर हमने उसको शौक के रूप में लिया और शौक जब आगे बढ़ा तो उसने हमें कई प्रेरणादायक प्लेटफॉर्म प्रदान किए। बात जब रामपुर आकाशवाणी की होती है तो यहाँ पर आवाज का जादू बिखरता है, दिलों को छूने वाली आवाजें। अब हम बात कर सकते हैं रेस्पेक्टेड विनोद आनायाल जी की, श्याम मोहन जी की, असीम सक्सेना जी की, सुरेंद्र राजेश्वरी जी की, चंद्रमोहन सक्सेना जी की, और अगर हम नाम ना लें मनदीप कौर जी का तो बात अधूरी रह जाती है। ये आवाज की दुनिया है। मुझे ध्यान है कि हम लोग एक बार एक प्ले रिकॉर्ड कर रहे थे और उस प्ले में हमें बूंदों की पानी की आवाज लेनी थी, तो हम पानी की बूंद के लिए हम कौन कौन सी आवाजें ले रहे हैं, बारिश की बूंदों की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर के टैप की मोटर के पानी की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम नल के पानी की आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आवाज की दुनिया है, और आवाज की वो नहीं जो चलती फिरती कहीं की भी नहीं, दिल की आवाज, दिल को छूने वाली आवाज, दिल की आवाज जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। तो आकाशवाणी का जो ये सफर है भाई, पारदर्शिता का सफर है, प्रामाणिकता का सफर है, और ये सफर वो सफर है जिस सफर पे सभी लोग साथ चलना चाहते हैं। एक महिला जो किचन में होती है उसके हाथ हैं अचार के मसालों के,

0: लेकिन वो आकाशवाणी से सुनती है खबर कि भाई इस कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आकाश का सीना चीर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बना दिया। तो ये खबर उसको जब आकाशवाणी के माध्यम से मिलती है ना, जो भारत या विश्व के दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ वाईफाई नहीं होते, जहाँ आज के मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, एक्स नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, ट्विटर नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, तो वो महिला जो है वो एकदम से अपने भीतर उस गजब से आत्मविश्वास को समाहित करती है जिससे भविष्य में समाज का निर्माण होता है, संस्कारी समाज का निर्माण होता है। तो आज भी जहां दूर दराज के क्षेत्रों में वाईफाई नहीं है, वहां भी आकाशवाणी अपनी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है।
1: आकाशवाणी से जुड़ी अपनी यादों के साथ जानी मानी खेल हस्ती जनाब फरहत अली खान।
2: अल्लाह जानता है, भगवान जानता है कि दिल पर ऐसा असर हुआ, क्योंकि हम जिस युग में आकाशवाणी से जुड़े थे 1985 से, वो गोल्डन पीरियड था। रेडियो ऐसा सुना जाता था घर घर चौराहे पर ठेले पर कि बस रेडियो ही रेडियो था। और मेरे पीरियड में जो आवाजें थी आकाशवाणी रामपुर से दयाल साहब की थी, अंजलि उनका नाम था, एक वो थी मौलाना, वो मोहम्मद अली मौज थे, बशीर अहमद साहब थे और नए युग के राजेश्वरी जी और असीम सक्सेना जी। इसके साथ में जो कैजुअल अनाउंसर थे वो भी गजब के अनाउंसर थे, जैसे इम्तियाज हाशमी थे, नावेद कैसर शाह थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब हम रेडियो पर सुनते थे, देखा तो नहीं था लेकिन ऐसा एहसास होता था कि हमारे जहनों में ऐसी तस्वीरें बन जाती थी जिसको हमने आज तक नहीं मिटाया। आकाशवाणी रामपुर ने बहुत सी कज़मात अंजाम दिए, उसमें मेन नाम रहा श्रीमती मनदीप कौर जी का भी। मनदीप कौर जी को जितनी रामपुर के बारे में नॉलेज थी, इतनी ही अदबी इल्मी और अहम शख्सियत की भी बहुत बड़ी नॉलेज थी, जानकारी थी। और कभी ऐसा ना हुआ कि कोई भी बंदा रेडियो से बचा। हम लोग जब छोटे छोटे थे, खिलाड़ी थे, तो ऐसे खिलाड़ी वो हमें रेडियो स्टेशन में हम बुलाया करते थे। आज के दौर में असीम सक्सेना जहाँ आकाशवाणी रामपुर में किस्मत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर राजीव सक्सेना भी यहाँ पर आए। उन्होंने रेडियो में एक तब्दीली लाई, एक नयापन लाया। वो कम वक्त के लिए यहाँ रुके, लेकिन यहाँ पर इस वक्त में जो और लोग काम कर रहे हैं वो सब सराहनीय है। हमने रेडियो स्टेशन पर, हमने रेडियो से वो मधुर आवाजें कानों में सुने हैं जिनको भुलाना नामुमकिन है। हमने वो ड्रामे, रेडियो गजल, रेडियो से सिंगिंग, रेडियो से कवाली, रेडियो से खेती किसानी, रेडियो से फोक के म्यूजिक, रेडियो से समाचार आज भी हमारे जहनों में तरोताजा है। जहाँ रेडियो आकाशवाणी रामपुर का नाम आता है, दिल मचल जाता है, जहन बच्चा हो जाता है, युवा हो जाता है। आज हम लोग जो भी हमने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में जो हमने वहाँ पर किस्मत अंजाम दी है, हम एक बात और बताते चले कि मैं खिलाड़ी था तो उस वक्त में जब हम जुड़े थे उस वक्त में हमें 75 रुपए मिलते थे। तो हर तीसरे महीने हमें रेडियो स्टेशन पर खेल से रिलेटेड बुलाया जाता था, वार्ता होती थी और हमने 75 रुपए हमें मिलते थे और 50 रुपए का हमारा हॉकी का शूज आता था। तो हमने रेडियो स्टेशन से जहाँ अपनी विचारों को दूसरे तक पहुँचाया, वहाँ पर हम, मेरा जो प्रोफेशन है, जो मैं हॉकी कोच हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आज मैं अगर हॉकी कोच हूँ तो आकाशवाणी रामपुर की जो 75 रुपए हमें मिलते थे उससे जो जूता मिलता था वो पहन के हम खेलते थे। तो हमारी शख्सियत में जो एक ऐसे खिलाड़ी, एज ए कोच, जो निकार आया उसमें बहुत बड़ा एहसान आकाशवाणी रामपुर का भी है।

0: नए गायकों के लिए आकाशवाणी वो पहला मंच बनी जहां उनके सुरों को श्रोताओं का स्नेह मिला। अनेक कवियों की कविताएं पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक पहुंची। लोक कलाकारों के लिए ये वरदान सिद्ध हुई। गांवों और कस्बों की लोकधुनें, लोकगीत, वहां की लोक संस्कृति आकाशवाणी के माध्यम से ही देश के कोने कोने तक पहुंची। इससे जुड़े कलाकार आज भी गर्व से कहते हैं कि यदि आकाशवाणी न होती तो उनकी कला का दायरा न इतना व्यापक होता, न इतना विस्तृत होता। वरिष्ठ कलाकारों की स्मृतियों में आकाशवाणी के स्टूडियोज आज भी बसे हैं।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, सखावत हुसैन खां का आप सबकी खिदमत में प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्कार। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं और इन 90 सालों के लंबे सफ़र में हमने जो जो उतार चढ़ाव आकाशवाणी के अंदर देखे वो भी सब हमारी नज़रों के सामने हैं। मैं यानी सखावत हुसैन खान आपसे मुखातिब हूँ और मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व है इस बात का कि मैं लगभग 1974-75 से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। उस ज़माने में मैं जम्मू में पढ़ाई कर रहा था और वहाँ आकाशवाणी में युवा वाणी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया था और युवा वाणी वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे आज मैं टॉप रैंक आर्टिस्ट हूँ ऑल इंडिया रेडियो का। मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा गर्व है इस बात का। मुझे खुशी इस बात की है कि आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ही बड़े बड़े फनकारों को हम बहुत आराम से सुनते थे और आज भी सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फनकार जिन्होंने सीखा और अपने फ़न को आगे बढ़ाया तो आकाशवाणी द्वारा उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया कि वो दुनिया के सामने उनका फ़न जाहिर हुआ और तमाम फनकारों को ऊंचाइयों तक ले जाने में भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हाथ रहा। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी आकाशवाणी इसी प्रकार से अपने निष्पक्ष भाव से कलाकारों को इसी तरह से प्रमोट करती रहे और आने वाले वक्त में और भी बहुत से अच्छे कलाकार आकाशवाणी के द्वारा उस मकाम तक पहुँचें जो उनका हक है और आकाशवाणी इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान करती है, बहुत बड़ी मदद करती है। मेरी दिली दुआएं हैं कि आकाशवाणी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और हम फनकारों को उससे फ़ायदा मिलता रहे और बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे फनकार, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स आकाशवाणी के ज़रिए से हम तक पहुंचते रहें। आकाशवाणी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो इस संस्था को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि वो इसी प्रकार इसकी खिदमत करते रहें और ये संस्था आकाशवाणी इसी प्रकार अपने सफ़र पर जारी रहे। मेरी दिली दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्कार।
2: मैं डॉक्टर सरिता कक्कड़ आकाशवाणी से 90 के दशक से लोक गायिका के रूप में अनेकों प्रस्तुति दे चुकी हूँ, जिसमें आकाशवाणी परिवार की ओर से मुझे पूर्ण सहयोग और सम्मान मिला। परिवार ही कहूँगी, जैसे परिवार में सब साथ मिलजुल कर रहते हैं वैसे ही आकाशवाणी मेरा परिवार था, जहाँ सब एक दूसरे का साथ और सहयोग देते थे। जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आकाशवाणी परिवार के साथ बिताए पल को याद करके आज भी मन खुशी से झूम उठता है। जाकिर भाई का हारमोनियम, निसार भाई का तबला, नवीजा का क्लैरिनेट और रामोतार भाई की ढोलक से लोक संगीत सज उठता था। मंचीय प्रस्तुति के लिए बस में जाते समय राजेश्वरी की ठिठोली, असीम भाई की मंद मुस्कान, मनदीप जी का साथ, गंगवार साहब का प्रोत्साहन एवं अपने सभी साथियों के साथ संगीतमय माहौल आज भी मन को गुदगुदा जाता है। उस समय की रठौने मेले की प्रस्तुति, कान्हा का जन्म और शिवजी की बारात जिसकी पुनः प्रसारण की मांग होती थी, चंदूसी का गणेश उत्सव, बदायूं महोत्सव में तो आकाशवाणी रामपुर की छाप ही छोड़ आए थे, मुरादाबाद का जिगर मंच का कार्यक्रम, अदिति उप्पल और नैना करके नृत्य की प्रशंसा गुलाबो देवी तक कर गई, मथुरा की टीम जसपाल भट्टी के साथ दिए गए कार्यक्रम के बीच आकाशवाणी रामपुर भी छा जाता था और दर्शकों की तालियां आज भी कानों में गूंजती हैं। मैं आकाशवाणी के शतकीय वर्ष में प्रवेश करने की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि आकाशवाणी अपने उच्च शिखर पर पहुंचे।

0: कलाकारों की स्मृतियों में है इस स्टूडियो के वो लाल बल्ब, उद्घोषक की आवाज, रिकॉर्डिंग से पहले की हल्की घबराहट और प्रसारण के बाद मिलने वाली आत्मिक संतुष्टि, ये सब उनकी यादों के सबसे सुंदर हिस्से हैं। जब कार्यक्रम बनते नहीं थे बल्कि कलाकार और श्रोता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता भी जन्म लेता था। अनेक साहित्यकारों का, कलाकारों का मानना है कि आकाशवाणी ने भारतीय भाषाओं को, भारतीय साहित्य को नई ऊर्जा प्रदान की। कविता पाठ, कहानी, नाटक और वार्ताओं के माध्यम से साहित्य को घर घर तक पहुंचाने का कार्य जो आकाशवाणी ने किया अद्वितीय है। कलाकारों के लिए ये मंच केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज से संवाद का सेतु भी रहा।
1: मैं अजहर इनायती ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल कामयाब और यादगार सफर के मुकम्मल हो जाने पर रेडियो की पूरी टीम को पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। 90 साल का अरसा एक बड़ा अरसा है। इसमें ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मेयारी और खूबसूरत प्रोग्रामों के साथ जिस तरह हिंदी और उर्दू जबान व अदब की खिदमत की है और अपने सामईन को मुख्तलिफ अंदाज से इंटरटेन किया है, वो काबिले सताइश है। इसकी वजह ये रही है कि इस स्टेशन को हर जमाने में बड़े लायक और बासलाहियत डायरेक्टर्स मिलते रहे जिन्होंने इसके प्रोग्रामों में चार चांद लगाए। मानव जी, जुबैर रिजवी, अदली मौज, शीर आरिफ, मनदीप कौर साहिबा ने इसको अपने खून जिगर से सींच कर एक यादगार रेडियो स्टेशन बना दिया। मेरी उम्र अब 80 साल की हो गई है और मैं इस रेडियो स्टेशन की उम्र से सिर्फ 10 साल छोटा हूँ और 15-20 साल की उम्र से इसके प्रोग्रामों में शरीक हो रहा हूँ। इसलिए ये दुआ करता हूँ कि ये रेडियो स्टेशन अपने मेयारी और खूबसूरत प्रोग्रामों के साथ सेंचुरी बनाए।
0: आप हैं आकाशवाणी रामपुर के वरिष्ठ वार्ताकार डॉक्टर किशोर सुल्ताना।
2: पूर्ण कर रहा आकाशवाणी अपने 90 वर्ष, जन जन में भरा उत्साह, गुंजरित नव वर्ष। बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी जो कि मास मीडिया का एक सशक्त माध्यम है, ये अपनी लंबी यात्रा के 9 दशक पूरे कर रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम हिंदी साहित्य के प्रकृति कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत ने दिया है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के सलाहकार भी रहे। मेरे अनुभव में हमारी सुबह रेडियो की सिग्नेचर ट्यून से हुआ करती थी, क्योंकि मेरे वालिद सुबह रेडियो ऑन कर देते थे उस ट्यून के साथ। जो मेरी अनुभूति जुड़ी है वो ये है कि जैसे हमें आह्वान कर रही हो, चलो उठो, शुभ सोचो और शुभ कर्म करो। आकाशवाणी देश का ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो हर उम्र और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कार्यक्रम करता है, जैसे महिलाओं से जुड़ा क्षेत्र, खेती किसानी, बच्चों का कार्यक्रम, युवा वाणी, साहित्यिक कार्यक्रम, मुशायरा, हवा महल कार्यक्रम, जो रात के प्राइम टाइम जो 15 मिनट का लघु नाटक आता था वो मुझे याद है, बहुत रोचक होता था और हम रोज सुनते थे। आकाशवाणी नामक पत्रिका भी निकलती थी जिसमें प्रसारित नाटक और कहानी इत्यादि प्रकाशित होती थी। उसका एक बहुत बड़ा संग्रह मैंने किया था। मेरी पहली वार्ता यादों के साए शीर्षक से युवा वाणी में आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित हुई थी। बचपन में बच्चों का कार्यक्रम मैं बहुत चाव से सुनती थी, वैसे आज भी सुनती हूँ। मुझे याद है सिंहासन 32 और बेताल 25 की कथाओं को उस प्रोग्राम में सुनने का आनंद हमने उठाया है। मेरी एक सजीव वार्ता अध्यापन के अनुभव खट्टे मीठे आकाशवाणी वाराणसी से 1987 में प्रसारित हुई थी और वहाँ हीरा चड्ढा जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। मेरी सहयोगी प्रोफेसर डॉक्टर दीपा चंद ने उस कार्यक्रम को अपने ट्रांजिस्टर के माध्यम से कॉलेज में छात्राओं को भी लाइव सुनवाया। सभी ने बहुत आनंद लिया क्योंकि उसमें एक छात्रा का इम्तिहान में नकल करते पकड़े जाने पर उसका चिट में चिट का मुंह में रखना और हमारा उसका मुंह में मुंह खोलने की कोशिश में उसके मुंह में उंगली डालकर उसका दांत काट लेना, ये सारे अनुभव बयान किए गए थे। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित अपनी कुछ रोचक वार्ताओं के रोचक शीर्षकों को भी याद करना चाहूंगी, जैसे बहुत पछताए फोन लगवाकर, हमें इस तरह के शोहरों से शिकायत है। इसके अलावा राष्ट्र को अर्पित रक्त की हर एक बूंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, साहित्य में सत्य का वांछित स्वरूप, घर की शोभा घर के बाहर, मेरी नजर में परिवार का आकार, प्रेमचंद के कथा साहित्य में भाषागत विशेषता, भारत देश की वीरांगनाएं इत्यादि, सूची बहुत लंबी है। आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले विविधा कार्यक्रम की बड़ी सुखद यादें हैं, जैसे कि नाम है इसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर मिलता रहा है। इसमें कहानी वार्ता काव्य पाठ परिचर्चा सभी प्रकार के विविध कार्यक्रम होते हैं जो जानकारी में वृद्धि के साथ विभिन्न अभिरुचियों को भी बढ़ावा देते हैं। यहाँ की कुछ मधुर आवाजें जो हित तंत्री को झंकृत करती रही हैं उनकी चर्चा भी करना चाहूंगी, जैसे मनदीप कौर जी की आवाज और प्रोग्राम को कंडक्ट करने का अंदाज, श्री असीम सक्सेना जी, अपर्णा सक्सेना, रेणु तिवारी, रबाब अंजुम, फायजा जुबैर, फरीदुल्ला जी, सुरेंद्र राजेश्वरी आदि अनेक नाम हैं जिनकी आवाज का जादू आकाशवाणी को मुखर बनाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आवाज के ये सभी जादूगर आकाशवाणी के सफर को यादगार बनाते रहें।
0: और ये हैं उद्गार आकाशवाणी रामपुर के टॉप ग्रेड गजल सिंगर जमील अहमद साहब के।
3: कब इसकी खबर थी, इस उम्र में फूलों की ललक और बहेगी, खामोश मोहब्बत की महक और बढ़ेगी, ये बात किसी बात तलक और बढ़ेगी, खामो मोहब्बत की महक और बढ़ेगी।
4: बड़ी खुशी है हमें रामपुर से कि 1965 में ये हमारे यहाँ आकाशवाणी कायम किया गया। बड़ा इसमें बहुत शानदार रोल हमारे नवाब रामपुर रजा अली खान साहब बहादुर का रहा। और ये बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस वक्त जब ये ट्रांसमिशन वहाँ था पनवड़िया पे, तो मैंने वहाँ भी एक रिकॉर्डिंग करी थी, ये शायद किसी ने नहीं की होगी। उसके बाद जब ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टूडियो बना, तो भी पहली रिकॉर्डिंग मैंने करी, मगर लोगों को पता नहीं था, वो और लोग थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपना किरदार और अपनी बातें रखी, मगर ये कि मेरी खिदमात जो है आकाशवाणी रामपुर के लिए हमेशा जारी रही और अभी भी मैं खिदमत के लिए तैयार बैठा रहता हूँ, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे काफी आगे बढ़ाने पढ़ाने में किरदार अदा किया और लोग, अच्छा लोग भी मुझे बहुत चाहते थे। मैं ज्यादातर स्टूडियो में आप क्या रहता था, मगर ये कि वो वक्त के हिसाब से हर चीज चेंज हो तो हो रही है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे रामपुर में आकाशवाणी अभी मौजूद है और बाकायदा अभी प्रोग्राम इसके रेले हो रहे हैं, हम लोगों को चांस मिलता रहता है। कुछ लोग अभी भी इसके सिलसिले में कोशा हैं कि ये जारी रहे और ये कायम रहे। एक बात कहना पड़ेगी, जुबैर साहब भी बहुत शानदार आदमी थे, बल्कि सच्चाई कह रहा हूं कि मनदीप कौर, इन्होंने बहुत आकाशवाणी को संभाला, बहुत खुशी होती है अच्छे लोगों से, सभी लोग अच्छे हैं। जैसे कि मैं एक वो एक नेशनल सॉन्ग गाता हूं ना, यार अब मेरे
3: वतन को तू शाद काम रखना।
4: इसी सूरत से शाद काम मैं चाहता हूँ। आकाशवाणी रामपुर रहे।

0: आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभवों की बात करते हुए अनेक वार्ताकार, अनेक कलाकार भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आकाशवाणी ने उन्हें केवल पहचान ही नहीं दी, बल्कि अनुशासन, भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति की गरिमा भी सिखाई। यहाँ कला को केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक दायित्व के रूप में देखा गया। यही कारण है कि आकाशवाणी से जुड़े जितने भी लोग हैं अपने इस संबंध को नौकरी, कार्यक्रम या अनुबंध से कहीं अधिक आत्मीय मानते हैं।
1: नमस्कार। सभी से दिल से बतियाने का अवसर एक फिर पाकर बहुत आश्वस्ति है मुझको, बड़ा अच्छा लगा आकर। प्रसारण के प्रमाणों की सुनहरी एक निशानी में खड़ा हूं आज फिर मैं रामपुर आकाशवाणी में। आकाशवाणी से जुड़ी यादें मेरे मन में नॉस्टैल्जिया उत्पन्न करती हैं। बचपन से शुरू हुआ आकाशवाणी से जुड़ा संग साथ अब तक न छूट सका है। गांव में था तो प्रातः श्री रामचरित मानस के प्रसारण से लेकर रात विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की एक सुरीली याद मानस पटल पर छिपी हुई है। बरेली कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के दौरान जब कुछ लिखने लिखाने का सिलसिला लोगों ने जाना तो आकाशवाणी को इतिला दी होगी। आकाशवाणी के रामपुर केंद्र ने पहला अवसर काव्य पाठ का दिया। फिर तो अनेक महत्वपूर्ण प्रसारणों में मैं जैसे स्थायी सा सदस्य हो गया। इस नाते आकाशवाणी के प्रति अतीव

0: कितने ही आउटडोर आयोजनों में एक कलाकार और परिवार के सदस्य की तरह रहकर मैंने आकाशवाणी की आनंद यात्रा की है। विशेष समारोहों में अतिथि अभ्यागत वक्ताओं का रस भी पाया है। 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारण करने वाले आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर एज ए कैजुअल अनाउंसर भी जुआ रहा और साहित्य के कितने ही कार्यक्रम मैंने आकाशवाणी के लिए बनाए, पर यहां आने से पहले वाणी पाठ्यक्रम के दौरान जो सीखने को मिला उसमें सिखाने वाले अनुभवी शिक्षकों में आकाशवाणी रामपुर के कई वरिष्ठ नाम हैं। अपने उन सभी गुरुजन के प्रति मैं आज विशेष तौर पर आदर और आभार ज्ञापित करता हूं। एक बात और साझा करना चाहूंगा, अपनी हिंदी जबान के व्यवस्थित उच्चारण में आकाशवाणी के योगदान को छोड़ना बेईमानी होगी, उसे जोड़ना ही होगा, और अगर उसे नहीं जोड़ता हूं तो कहीं अधूरापन मेरे मन में रहेगा। मेरे प्राध्यापकीय जीवन में भाषा के शास्त्रीय स्वरूप के साथ साथ उच्चरित भाषा का, या ये कहें कि उच्चरित भाषा को फ्री फ्लोइंग बनाने को जो अवसर मुझे मिला वो आकाशवाणी की देन है। आज शतकीय पारी की ओर अग्रसर आकाशवाणी परिवार की परंपरा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आत्मिक अभिनंदन करता हूं, और आकाशवाणी से जुड़े हुए अपने उन सभी श्रोताओं को विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञ हूं, जिन्होंने किसी समय मुझे ट्रांसमिशन बूथ में बैठे हुए अपने कानों की आंखों से देखा है। आज विशेष तौर पर आप सभी का अभिनंदन। ईश्वर से प्रार्थना कि आकाशवाणी की इस सुनहरी परंपरा को, इस सुरीली परंपरा को ऐसे ही बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं डॉक्टर माधुरी रस्तोगी, पूर्व प्राचार्य राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बोल रही हूँ। नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत में आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसे आकाशवाणी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। समाज को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने वाला भारत का सबसे विश्वसनीय ये जन प्रसारण माध्यम है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य पर आधारित ये संस्था समाज को विभिन्न तरीकों से समृद्ध करती है। सटीक समाचार, सांस्कृतिक संरक्षण जैसे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और साहित्यिक नाटकों का प्रसारण कर संस्कृति को जीवित रखने का काम कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना, जितनी भी आकाशवाणी की उपलब्धियों की प्रशंसा की जाए कम है। जहाँ तक मेरी आकाशवाणी से जुड़ने का प्रश्न आता है, मुझे बहुत पीछे जाना होगा। मैं बचपन से ही आकाशवाणी के कलियां प्रोग्राम में जाती थी, फिर पढ़ाई के चलते ये पीछे छूटता चला गया, फिर वार्ता आदि के लिए जाती रही। मुझे बचपन से नृत्य, नाटक आदि का शौक था। रेडियो पर नाटकों में प्रतिभागिता की, वो शौक आज भी जीवित है। रेडियो से कभी कभी मेरे द्वारा अभिनीत नाटक प्रसारित होते रहते हैं। एक बार मैं रेडियो की कार्यक्रम निदेशक श्रीमती मनदीप कौर जी से अपनी नृत्य शिक्षा के बारे में बात कर रही थी, तभी नफीस साहब, जो कि रेडियो की जानी मानी हस्ती थे, डायरेक्टर, राइटर, कलाकार, वो बहुत कुछ थे, मेरी बातें सुन रहे थे। तुरंत मुझे स्टूडियो ले गए और नृत्य के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करी। टुकड़े, परन आदि मैंने बोलकर सुनाए। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने नाटक के सीरियल में डाली, जो कि रामपुर की संस्कृति से संबंधित था। दिल ढूंढता है प्रोग्राम अत्यंत सुंदर और रोचक प्रोग्राम है। इसमें समय समय पर मैंने अपने लेख भेजे हैं, जिन्हें असीम जी ने अपनी मखमली आवाज में प्रस्तुत किया है। बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी यादें हैं जिन्हें थोड़े से समय में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। पुनः आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपको और हम सभी को बधाई।

0: उस समय तक ज्वाला प्रसाद जी उनके टाइम में बहुत नाटक हुए, हर चीज के मुंह में नाटक मिल जाया करता था। समय समय आगे बढ़े तो बीआई ग्रेड का ऑडिशन हुआ तो उसमें सिलेक्ट हो गए। बीआई ग्रेड के नाटक किए, उर्दू के नाटक किए, फिर मैं यहाँ से बॉम्बे चला गया था, लेकिन नाटकों से जुड़ा रहा आकाशवाणी के। जब भी नाटक के लिए कॉल आई मैं बॉम्बे से यहाँ आता था कॉल नाटक करने के लिए। जितना भी मिलता नहीं था उससे ज्यादा खर्च करके आता था, इतना शौक था। और बॉम्बे में मुझे आकाशवाणी की स्पीकिंग जो थी वेरिएशन डायलॉग की वो बहुत काम आए मेरे। उसके बाद ए ग्रेड का ऑडिशन हुआ, उसमें सिलेक्ट हो गए। अब मैं मुंबई से मुरादाबाद आ गया हूँ, समय समय पर नाटक मिलते रहते हैं। हम लोग श्री राम कुमार सक्सेना जी के तत्वाधान में रंगमंच का नाटक आकाशवाणी का अखिल भारतीय वो हुआ था नाट्य कम्पिटिशन, उसमें नाटक लेकर गए थे सिंहासन खाली है। ऐसे एक बार कम्पिटिशन हुआ गोरखपुर में आकाशवाणी का, तो आकाशवाणी रामपुर से हम नाटक लेके गए थे बापू की हत्या हजारवीं बार। रंगमंच में भी बहुत नाटक किए थे आकाशवाणी रामपुर की तरफ से, और यात्रा चल रही है, बड़ा अच्छे अनुभव रहे हैं। 90 वर्ष में 42-43 साल का हमारा भी सहयोग है, बड़ा आनंद आया आकाशवाणी रामपुर काम करके। और इंतजार रहता है कब बुलावा आएगा, कब बुलावा आएगा, कब हम रामपुर पहुंचे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई है।
1: मैं कलाकार हूं, मेरी पूंजी बस मेरे स्वर और भाव हैं। आकाशवाणी ने वह मंच दिया है।

0: समय बदला, तकनीक बदली, संचार के अनेक माध्यम आए, लेकिन कलाकारों के मन में आकाशवाणी के प्रति आज भी स्नेह वैसे के वैसा ही है। उनके लिए आकाशवाणी वो माँ है जिसने उनकी प्रतिभा को गोद में खिलाया, वो गुरु है, वो उनकी आवाज का पहला घर है जिसने उनकी अभिव्यक्ति को निखारा, वो दोस्त है जिसने हर कदम पर उनका उत्साह बढ़ाया। आज जब आकाशवाणी अपने गौरवशाली सफर के 9 दशक पूरे कर चुकी है, तब असंख्य कलाकारों के मन से एक ही स्वर निकलता है, हम जो भी हैं, हमारी पहचान में आकाशवाणी का एक महत्वपूर्ण अंश है।
1: मैं सर्वेश कश्यप, जनपद संभल से, आप सबको बताना चाहूंगी कि जैसे आकाशवाणी का नाम मेरे कानों में गूंजता है, न जाने मुझे अजीब सी हलचल, एक प्यार भरी कशिश, मीठी सी चुभन क्यों होती है। जब से दुनियादारी में आई हो संभाला, जहाँ मेरा भौतिक शरीर था वहाँ मेरे सगस्व के संबंधी रिश्ते नाते थे। एक दुनिया मेरी आकाशवाणी रामपुर की थी, उससे ना जाने मुझे क्यों इतना लगाव, क्यों इतना जुड़ाव रहा, मैं क्यों भाव विभोर होती रही, क्यों मेरी भावनाएं उधर आकर्षित होकर जुड़ती रही। मित्रों, मेरा जन्म 70 के दशक का है और जैसे ही मेरी उम्र 8-9 वर्ष की हुई, मुझे दुनियादारी का, अपने जीवन का ज्ञान हुआ, समझ हुई। मैंने आकाशवाणी की साहित्य, संस्कृति और कला सूचनाओं की ऐसी अविरल, मधुर, सफल, सार्थक धारा प्रवाहित हुई, जो मन इस आकाशवाणी रूपी गंगा में भीगा, बस डूबता ही रहा। कभी लगाव कम नहीं हुआ, आकर्षण कम नहीं हुआ, नित नूतन उमंग के साथ, भावनात्मक रूप से मजबूती के साथ जुड़ा रहा। मैं अपनी बात करूं, आज जो भी कुछ मैं हूं, आकाशवाणी रामपुर के विधा के कार्यक्रम से ज्ञान वर्धन करके मैंने अपने जीवन को दिशा दशा दी। जहां मेरा जन्म हुआ, ग्रामीण परिवेश और एक लड़की के प्रति इतनी समझ सोच कि लिखना पढ़ना सीख जाए, लेकिन मुझे आकाशवाणी रामपुर की परिस्थितियों ने ऐसी

0: शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, मेरे अंदर कूट कूट के भाई, शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा का वो हथियार होता है जो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता है, चला सकता है। मैंने आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम से दिल लगी की, उनसे बहुत कुछ सीखा। अपने जीवन की विपरीत धाराओं में तैरकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। जीवन की हर चुनौती से लड़ना सीखा, जीवन को चलाना सीखा, कड़ी मेहनत करनी सीखी। कड़ी मेहनत करने का गुण मैंने आकाशवाणी द्वारा जो भी ज्ञान वर्धक प्रत्येक विधा के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे उनको आत्मसात करके से प्रेरणा लेकर शक्ति संजोकर मैं एक स्वावलंबी जीवन जीने में सफल हुई। जीवन में अनेक अनेक चुनौतियां आई। मात्र 8-9 साल की उम्र में मेरी जन्म देने वाली माता का देहांत हो जाता है। 30-35 साल की उम्र में मेरे पति रोड एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय परिवारों में ऐसी महिलाओं का जीवन तरह का होता है, समाज का परिवार का नजरिया क्या होता है, और फिर अपने जीवन को अपने तरीके से जीना आसान नहीं होता। एक दुनिया मेरी जहाँ मेरा भौतिक शरीर रहता था और एक दुनिया मेरी आकाशवाणी की थी जहाँ मेरी आत्मा को ज्ञान का भोजन मिलता था। जीवन के प्रत्येक पक्ष पर चिंतन मनन करने की इच्छा शक्ति प्रबल होती थी। सोचने समझने की विस्तृत समझ बनती थी। बस एक के बाद एक, एक के बाद एक सफलताएं मिली। 15 वर्ष का गैप मेरी शिक्षा में आया जो मेरे जीवन का प्रारंभिक दौर था। मैंने आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुनते हुए कभी हिम्मत नहीं हारी और एक सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को मजबूत किया और लगातार आकाशवाणी रामपुर में रमी रही, किताबें पढ़ती रही। कभी आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम से लगाव कम नहीं हुआ। वहीं से अपनी सूझबूझ समझ बनाकर किताबें पढ़ने से मुख नहीं मोड़ा। आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष होने पर मेरा मन उन सभी एक अच्छे इंसान, योग्य व्यक्तित्व जिसमें एक समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता थी वो लेकर भी आए। आज श्रद्धा सुमन जो आकाशवाणी रामपुर के परिवार के उच्च कोटि के प्रस्तुतकर्ता दुनिया में है या हम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, विनोद दयाल जी, सिरिल जैन जी, मनमोहन सक्सेना जी, मनदीप कौर जी, असीम सक्सेना जी, सुरेंद्र राजेश्वरी जी, शिवा सुधांशु नंदन जी और भी अनेक अनेक नाम जो श्रोतागण थे उन्हें भी याद करने से मेरा मन नहीं रुक सकता। सुधा अवस्थी जी, मुकेश गंगवार जी, अंजुम भाई, कल्लो मिस्त्री, इकराम अली प्रेमी, गजला परवीन कुरैशी, भी न जाने कितने नाम आज भी मानस पटल पर उनके यादगार, उनकी अभिव्यक्तियाँ थिरकती हैं, याद आती हैं, भूल नहीं पाते हैं। जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। जहाँ भी हैं, जो भी हैं, खुश रहें, मस्त रहें।
1: मैं पूनम जैन आकाशवाणी केंद्र प्रसार भारती के 90 वर्ष पूरे करने पर बहुत ही बहुत आनंदित हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी रामपुर से मेरा ऐसा गहरा रिश्ता है क्योंकि जिंदगी के 40 वर्षों से मैं आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी हूँ। 30 साल मैंने कैजुअल कंपेयर के रूप में कार्य किया और उसके बाद से वार्ताकार, भेंट वार्ताकार, नाटककार के तौर पर मेरा जुड़ाव आकाशवाणी से आज भी है। जब मैं कंपेयर के तौर पर कार्यरत रही तब तो वो प्रोग्राम हमने किए जैसे किसान भाइयों का कार्यक्रम था, खेती किसानी आंचल कार्यक्रम जो ग्रामीण बहनों के लिए होता था और जो आंचलिक भाषा में होता था और उसको करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और उस वक्त बिंदिया कार्यक्रम होता था जो शहरी बहनों का कार्यक्रम था और जिस कार्यक्रम का नाम आज बदलकर नारी जगत हो गया है उसको भी प्रस्तुत करते थे हम। एक खास बात ये थी कि हमने कभी कभी सीधे एयर पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें हमें बहुत प्रसन्नता होती थी। और मैं उस समय के आकाशवाणी से जुड़ी हूँ जब हम रिकॉर्डिंग टेप वाली किया करते थे। आज तो वक्त काफी बदल गया है लेकिन बीता वक्त बहुत सुंदर था। आज उस वक्त को याद हम करते हैं तो हमें इतनी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब तो भाई नए नए तरीके, नई नई चीजें आ गई हैं। मैं आकाशवाणी परिवार का हिस्सा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आकाशवाणी भविष्य में भी ऐसे ही सुदृढ़ सशक्त बना रहे, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।

सच है। आकाशवाणी और इससे जुड़े कलाकारों का, वार्ताकारों का, साहित्यकारों का जो रिश्ता है वो केवल प्रसारण और प्रस्तुति का नहीं है, ये रिश्ता है संवेदनाओं का, ये रिश्ता है गहरे विश्वास का, और समय के साथ और भी मजबूत हुआ है ये संबंध। कलाकारों के हृदय में आकाशवाणी आज भी उसी आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के साथ विराजमान है जैसे किसी साधक के मन में अपने प्रथम गुरु का स्थान होता है। यही आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे सुंदर पहचान है। तभी तो सब कहते हैं अभिनंदन आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष रूपक अभिनंदन आकाशवाणी, संकलन रेणु तिवारी का एवं आलेख व वाचन असीम सक्सेना का। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राजहट फिल्म का भी अभी गीत सुन रहे थे। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए सुरैया और मोहम्मद रफी को फिल्म दास्तां में।

इसी क्रम में कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में एक बार फिर सुनवाते हैं आपको गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चोर पुलिस से।

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत, कार्यक्रम था फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा।